सुप्रभात। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। आज दिन शनिवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की तिथि 16, तदनुसार 6 जून सन 2026। इस समय प्रातः के ठीक 5:58 हो रहे हैं और अब आरंभ होती है हमारी आज की ये प्रातःकालीन सभा। हम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं।

0: आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है। सुबह के 6 बजने को हैं। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से बस कुछ ही पलों में।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव बहुत मजबूत है। वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद देश ने वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर दर्ज की है। दमन में 2,970 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की शुरुआत करने के बाद कल प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने गुजरात के सूरत में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
2: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है। इकोनॉमी भी, इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
1: श्री मोदी ने बताया कि भारत की कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात की है। अर्थव्यवस्था ने वित्त वर्ष 2025-26 में भी अपनी मजबूत गति बनाए रखी है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 2024-25

के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने का अनुमान है, जबकि 2024-25 के लिए इसका संशोधित अनुमान 299 लाख करोड़ रुपए से अधिक था। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों एफपीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के तहत सामान्य मार्ग से निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह के निवेश सीमाओं का पालन नहीं करना होगा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वर्ष 2026 में अब तक कुल 1076 भारतीय नागरिकों को अमेरिका से भारत वापस भेजा जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि वर्ष 2025 में अमेरिका से 3567 भारतीय नागरिकों को वापस भेजा गया था। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच प्रवासन और आवागमन को लेकर बातचीत जारी है। श्री जायसवाल ने बताया कि अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों को वापस भेजने के संबंध में एक द्विपक्षीय व्यवस्था अपनाई गई है। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली के लिए आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध दर्ज किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। ये चुनाव कल होने वाले हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के परिणाम स्वरूप गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और श्री सुगियोनो कल नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि जून 2026 तक देश भर में 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं। संतुलित खाद के इस्तेमाल का यह अभियान एक देशव्यापी जन आंदोलन बन गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। CBSE ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि छात्र अब रविवार मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। एशिया कप अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में आज भारत का सामना जापान से होगा। जापान के काका मिघारा में खेले गए सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: कृषक मित्रों जोहार, खेती की बातें कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, आज बातें करेंगे फसलों में खरपतवार नियंत्रण के बारे में। जी हाँ मित्रों, किसान की जो पैदावार है वो 20% से 40% तक कम हो जाती है खरपतवार के कारण। धान, मक्का, गेहूं, सब्जी, जो भी फसल आप बोते हैं उसके साथ खरपतवार भी उग आती है और ये खरपतवार मिट्टी का पानी, खाद और धूप सब छीन लेती है। नतीजा आपकी फसल कमजोर और पैदावार कम हो जाती है। तो आइए जानते हैं कि खरपतवार नियंत्रण के कौन कौन से आसान तरीके हैं। किसान भाई बहनों, इलाज से बचाव कई गुना बेहतर होता है। तो पहला है रोकथाम, पहला वार खरपतवार पर वार, यानी साफ बीज बोए, खेत की सफाई करें और फसल चक्र को अपनाएं। खरपतवार वाले बीज खेत में मत लाएं, बोने से पहले बीज को छान लें, बुआई से पहले खेत की गहरी जुताई कर दें। ऐसा करने से खरपतवार के बीज जमीन के नीचे दब जाएंगे और उग नहीं पाएंगे। हर साल एक ही फसल मत बोए, फसल चक्र के नियमों का पालन करें, जैसे कि धान के बाद दलहन बोए, इससे खरपतवार का जो चक्र है वो टूट जाता है। दूसरा है निराई गुड़ाई, देसी तरीका सबसे बढ़िया, पुराना है पर असरदार है। फसल बोने के 20 से 25 दिन बाद जब खरपतवार छोटे हों तभी निराई कर दें। दो बार निराई गुड़ाई कर देंगे तो 70% खरपतवार जो है वो खत्म हो जाएगी। खरपतवार को खुरपी से जड़ समेत उखाड़ें, ऊपर से काटेंगे तो फिर उगाएगी। निराई के बाद पौधे की जड़ों में मिट्टी चढ़ा दें, इससे मिट्टी चढ़ाना कहते हैं, इससे पौधा मजबूत होगा। तीसरा है मल्चिंग, धूप बंद यानी खरपतवार बंद। सब्जी या बागवानी करते हैं तो ये तरीका अपनाएं। पौधे के बीच पुआल, सूखी पत्ती या काला पॉलिथीन बिछा दें। धूप खरपतवार तक नहीं पहुंचेगी तो वो उगेगी ही नहीं, साथ में मिट्टी की नमी भी बचेगी। चौथा है रासायनिक नियंत्रण, यानी सही दवा सही समय। जब खरपतवार बहुत ज्यादा हो जाए तो खरपतवार नाशी दवा का इस्तेमाल करना चाहिए, पर तीन बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। पहला है सही दवा चुने, दूसरा सही समय और तीसरा सुरक्षा। धान के लिए बूटा क्लोर, गेहूं के लिए 2,4-D, मक्का के लिए एट्राजीन जो है ये दवा काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है, तो इन्हीं का ही प्रयोग करना चाहिए। दूसरा, बुआई के 3 से 5 दिन के अंदर प्री इमर्जेंस दवा छिड़कनी चाहिए, या फिर फसल प्लस खरपतवार दोनों छोटे हों तो 15-20 दिन की अवस्था में पोस्ट इमर्जेंस दवा जो है वो आप छिड़क सकते हैं। छिड़काव करते समय दस्ताने, मास्क, पूरे कपड़े पहने और हवा के रुख के साथ छिड़कें। एक ही दवा बार बार मत डालें, खरपतवार भी इम्यून हो जाएगी, दवा को बदलते रहना चाहिए। खरपतवार को कभी भी छोटा समझने की भूल नहीं करनी चाहिए और ना ही छोटा समझकर इसे छोड़ देना चाहिए, नहीं तो आपकी जो मेहनत है वो इसे छोटी कर देगी। समय पर नियंत्रण करेंगे तो खाद कम लगेगी, पानी कम लगेगा और पैदावार ज्यादा होगी। तो किसान भाई बहनों, आज खेती की बातें कार्यक्रम के अंतर्गत बस इतना ही। आज हम बातें कर रहे थे फसल चक्र में खरपतवार नियंत्रण को लेकर के। आप सभी का दिन मंगलमय हो, शुभ हो, रखिए अपना पूरा पूरा ख्याल। नमस्कार, जोहार।
1: दैनिक कार्यक्रम खेती की बातें श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे और आज इस कार्यक्रम में आपने जाना फसलों में खरपतवार नियंत्रण पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है चिंतन। श्रोताओं, दुनिया चाहे जो कहे, लेकिन सबसे जरूरी होता है खुद के प्रति ईमानदार होना। अगर आप खुद को जानते हैं, अपनी कमजोरियों और अपनी ताकतों को पहचानते हैं और सच्चे दिल से मेहनत करते हैं तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। हम अक्सर दूसरों की अपेक्षाओं में उलझ जाते हैं, पर असली शांति तब मिलती है जब हम खुद को स्वीकार करते हैं। इसलिए श्रोताओं, खुद से बात कीजिए, खुद को समय दीजिए और खुद के लिए मेहनत कीजिए। आपका सबसे बड़ा प्रतियोगी आप खुद हैं। हर दिन खुद को हराइए और अगले दिन एक बेहतर इंसान बनकर उभरिए। यही हम सब के लिए सच्ची सफलता है। ये था आज का चिंतन। FM के 102.4 MHz पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र, और अब प्रस्तुत करते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम वंदना में आप सभी का स्वागत है। आइए श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अपनी मातृभूमि को समर्पित इस देश गान के साथ।

संवेद स्वरों में अभी आपने सुना ये देशगान एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है और श्रोताओं आप सुन रही हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। और अब आइए कार्यक्रम में आगे सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में माँ भगवती के भजन।

भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना श्रोताओं भी आप सुन रहे थे और आज इस कार्यक्रम में हमने सुने माता रानी के भजन, आवाज थी लता मंगेशकर की। इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है। सुबह के 6:50 हो रहे हैं। प्रस्तुत है रामचरित मानस।

शुक्र चैत्र का महीना, शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, दोपहर का समय भगवान का अभिजित मुहूर्त था, जब ब्रह्मलोक से ब्रह्मा समेत सभी देवता विमान सजाकर अवधपुरी के आकाश पर छा गए।

रामचरितमानस अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 7 बजने को है। समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से बस थोड़ी ही देर में।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव बहुत मजबूत है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की दर से बढ़ी है। दमण में कल 2,970 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने गुजरात के सूरत में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर आगे बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
1: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है। इकोनॉमी भी, इकोलॉजी भी, सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
0: श्री मोदी ने बताया कि भारत की कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 50 गीगावाट अकेले गुजरात की है। वित्त वर्ष 2025-26 में भी देश की अर्थव्यवस्था की मजबूत गति बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 2024-25 के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने की संभावना है, जबकि 2024-25 के लिए इसका संशोधित अनुमान 299 लाख करोड़ रुपए से अधिक था। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह की निवेश सीमाओं से छूट दी गई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि 2026 में अब तक 1076 भारतीय नागरिकों को अमरीका से भारत वापस भेजा जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 2025 में अमेरिका से 3,567 भारतीय नागरिक वापस भेजे गए थे। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच प्रवासन और आवागमन को लेकर बातचीत जारी है। श्री जायसवाल ने बताया कि अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को वापस भेजने के संबंध में एक द्विपक्षीय व्यवस्था अपनाई गई है। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली का आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना का कड़ा विरोध किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। ये चुनाव कल होने वाले हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग है। इंडोनेशिया की विदेश मंत्री सुगियोनो 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और श्री सुगियोनो कल नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में अब तक 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं। संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया यह अभियान अब जन आंदोलन का रूप ले रहा है। मंत्रालय के अनुसार अभियान के अंतर्गत अब तक 17,800 से अधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनसे लगभग 7 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत में 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 के संयुक्त उत्पादन का प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच के दौरान उन्होंने कहा कि रूस SU-57 कार्यक्रम में भारत की भागीदारी का इच्छुक है। श्री पुतिन ने एकीकृत वायु रक्षा प्रणालियों और अन्य रक्षा उपकरणों के क्षेत्र में भी भारत के साथ सहयोग की इच्छा जताई है। एशिया कप अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में आज भारत का सामना जापान से होगा। जापान के काका मिगाहारा में कल सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। भारत की अंडर 18 लड़कियों की टीम सेमीफाइनल में चीन से हार गई थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार श्रोताओं भी आप सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर और आप है हमारी प्रातःकालीन सभा के प्रसारणों के साथ।

श्रोताओं, स्वच्छता ईश्वर भक्ति के समान है। महात्मा गांधी इस पंक्ति का अर्थ केवल बाहरी साफ सफाई से नहीं, बल्कि हमारे विचारों, हमारे आचरण और हमारे चारों ओर फैले पर्यावरण की शुद्धता से भी है। श्रोताओं, हम रह रहे हैं अभी 21वीं शताब्दी में, और 21वीं सदी में तकनीकी प्रगति और औद्योगिकीकरण ने मानव जीवन को सुगम तो बना दिया है, लेकिन इसके साथ ही एक बहुत बड़ी चुनौती भी हम सबके सामने खड़ी कर दी है, और वो है हमारे एनवायरनमेंट को लेके, हमारे पर्यावरण को लेके। हमें ही हमारे पर्यावरण को स्वच्छ और उसे संरक्षित रखना है। श्रोताओं, स्वच्छता बनाए रखना और पर्यावरण की रक्षा करना किसी एक इंसान, किसी एक संस्था या सिर्फ सरकार या प्रशासन का काम नहीं है, ये तो हम सबकी सामूहिक और व्यक्तिगत जिम्मेदारी है ना। यदि हम आज सचेत नहीं हुए श्रोताओं, तो आने वाली पीढ़ियों को एक बीमार और खोखली धरती विरासत में मिलेगी, जो हमें बिल्कुल नहीं करना है। इसलिए स्वच्छता कोई एक दिन का या फिर एक आध घंटे का कोई कार्यक्रम नहीं है, बल्कि ये हमारी जीवन का एक दैनिक रूटीन है, जिसे हमें हमेशा हमेशा अपने जीवन में शामिल रखना है, और सबको स्वच्छता के प्रति हमें जागरूक रखना है। आप प्लास्टिक की बोतलों से अगर पानी पी रहे हैं, तो उसे ढंग से डिस्पोज करना है। कम से कम कोशिश करनी है कि आप प्लास्टिक के थैलों का प्रयोग करें, और ख़ास करके प्लास्टिक के थैलों में या प्लास्टिक में कचरा फेंक कर उसे डस्टबिन में ना डालें। मवेशी उन्हीं कचड़ों में से खाते हैं, और फिर प्लास्टिक उनके गले में या उनके पेट में जाकर फंस जाता है। श्रोताओं, स्वच्छता को बनाए रखना हम सभी मनुष्यों की प्राथमिकता होनी चाहिए,

0: श्रोताओं, एक स्वच्छ समाज स्वास्थ्य पर होने वाली भारी खर्च को भी बचाता है। डेंगू, मलेरिया, हैजा या टाइफाइड जैसी बीमारियां गंदगी के कारण ही तो फैलती हैं। हमारा देश भारत जो सबसे ज्यादा टूरिज्म के लिए जाना जाता है, कई देश से विदेशों से हमारे यहाँ लोग आते हैं, पर्यटक आते हैं, और उन्हें हमारा भारत सुंदर और स्वच्छ दिखाना ये हमारी भी जिम्मेदारी है। स्वच्छ भारत अभियान ने इस दिशा में देश की सोच को बदलने का एक बड़ा काम किया है, लेकिन इसे पूर्ण सफल बनाना हमारी भी जिम्मेदारी है। ये जन भागीदारी पर निर्भर करता है। श्रोताओं, पर्यावरण संरक्षण हर एक कक्षा में, हर क्लास में बच्चों को पढ़ाया जाता है। कुछ समय तक हम किसी न किसी दिन को या दिवस को पर्यावरण को लेकर के मनाते हैं, लेकिन ये किसी एक दिन के लिए या 24 घंटे के लिए सीमित नहीं है, क्योंकि आज वैश्विक तापमान बेतरतीब तरीके से बढ़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग भी चरम पर है। इससे क्या हो रहा है कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं और समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है। ये हमारे लिए एक अलार्मिंग टाइम है, जब हमें सब कुछ समझते हुए और अपने पर्यावरण को, अपनी धरती को, अपनी पृथ्वी को बचाना है, कम से कम वायु प्रदूषण करना है। जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वनों की कटाई, ये सब ऐसी बातें हैं श्रोताओं, जो हमें हर दिन समझना और इस पे विचार करना अब जरूरी हो गया है, क्योंकि पर्यावरण को बचाने के लिए हमें हर दिन अपनी आदतों में बदलाव लाना होगा। कम से कम हर दिन हम पेड़ को काटे ना और एक पेड़ हमेशा लगाते रहें। श्रोताओं, पेड़ को ना धरती का फेफड़ा कहा गया है, हमारे लिए भी, क्योंकि अगर हमें प्रॉपर ऑक्सीजन मिल रहा है, उचित मात्रा में हमें फल फूल मिल रहे हैं, छाया मिल रही है, पक्षियों के लिए घर मिल रहा है, जानवरों के लिए रहने का आवास मिल रहा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ घने जंगल और पेड़ों की वजह से ही है। तो उन्हें बचाना तो हमारी प्राथमिकता होनी ही चाहिए, और साथ ही जल, वर्षा के जल का संचयन करना चाहिए। ब्रश करते समय, हाथ धोते समय, बर्तन धोने समय, ये छोटी छोटी आदतों में अगर हम बदलाव लाएं तो हम कितना ही पानी बचा लेंगे। आवश्यकता न होने पर अपने रूम के पंखे, लाइट और एसी को बंद कर दें। पारंपरिक ऊर्जा जैसे कोयला, पेट्रोलियम के स्थान पर हम सोलर एनर्जी या सौर ऊर्जा का प्रयोग कर सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, प्लास्टिक को तो हमें ना ही कह देना चाहिए। प्लास्टिक हम सब के लिए बेहद हानिकारक है। अगर आप बाजार जाते हैं तो आप पुराने कपड़ों को फाड़कर और उन्हें काटकर आप कपड़ों के थैले बना सकते हैं, जूट के थैले बना सकते हैं, और ये रिसाइकिल होते रहता है श्रोताओं। आप जब चाहें इसे धो लें और फिर से इसे आप उपयोग कर सकते हैं। इससे हमारे पैसे भी बचते हैं और पर्यावरण की सफाई तो होती ही है। तो बस इन सब छोटी छोटी बातों का अगर हम ख्याल रखें तो हम अपने पर्यावरण, अपनी पृथ्वी, अपनी धरा को, अपनी माँ को हम बचा सकते हैं और अपने आने वाली पीढ़ी को एक खूबसूरत पृथ्वी दे सकते हैं। श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र FM के 102.4 MHz पर, और अब प्रस्तुत करते हैं हमारा कार्यक्रम जरा सुनिए।
1: जरा सुनिए,
2: जरा सुनिए,
1: जरा सुनिए,

0: समस्या है तो समाधान भी, जहाँ चाह वहाँ राह, बात बन जाएगी।
1: जरा सुनिए,
2: सुप्रभात, नमस्कार। कार्यक्रम जरा सुनिए में आप सभी का स्वागत है। श्रोताओं, हर बार की तरह इस बार भी हम आपके समक्ष आए हैं एक अलग विषय के साथ, और वो विषय हम सभी से जुड़ा हुआ है, और वो विषय है स्वच्छता से। जी हाँ श्रोताओं, स्वच्छता, ऐसा कहा जाता है स्वच्छ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है, और जब मन स्वस्थ होता है तो हम अपने काम को बखूबी अंदाज में निभा पाते हैं, और वो हमारे समाज के लिए एक अच्छी बात भी है। और श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में इसी विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है एक खास मेहमान, तो आइए श्रोताओं उनकी मुलाकात आप सभी से करवाते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं स्मिता पारिक जी, जो शहर की जानी मानी एक बिजनेस वुमेन है। इसके अलावा वो राज स्मिता चैरिटेबल ट्रस्ट की प्रेसिडेंट भी हैं। और श्रोताओं, आपको बता दें, यह ट्रस्ट जमशेदपुर और आसपास के क्षेत्रों में स्वच्छता से संबंधित कार्यों को अंजाम देता है। तो आइए श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और स्वागत करते हैं सबसे पहले अपने आज के मेहमान का। नमस्कार महोदया, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है।
3: नमस्ते
2: स्मिता जी, सबसे पहले हम बातचीत करेंगे कि अक्सर हम बातें करते हैं कि यहाँ सफाई नहीं है, वहाँ सफाई नहीं है, रोड के किनारे कचरा गिरा हुआ है, ठीक ठाक तरीके से सरकार काम नहीं कर रही है। तो क्या साफ सफाई केवल सरकार की ही जिम्मेदारी है या फिर हम सबों की भी जिम्मेदारी बनती है?
3: नहीं, केवल सरकार की जिम्मेदारी शहर को साफ रखने की नहीं है, हम नागरिकों की भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमारी आदतें, हमारे छोटे मोटे प्रयास बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है, जो हम अपने शहर को स्वच्छ बना सके।
2: जी, जैसा कि आपने कहा कि एक छोटा प्रयास भी बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है, तो एक आम नागरिक को क्या क्या करना चाहिए?
3: बहुत आसान बातें हैं, अपने घर और आसपास में सफाई रखे, कचरा डस्टबिन में डाले, गीला कचरा और सूखा कचरा दोनों अलग अलग बिन्स में जमा करें, और प्लास्टिक का बहुत कम उपयोग करें। प्लास्टिक ऐसी चीज है जो कभी नाश नहीं होती है, और वो नाश नहीं होती है तो इसके चलते हमारे शहर की गंदगी को बरकरार रखने में प्लास्टिक का बहुत बड़ा रोल है। तो इस प्लास्टिक का आपको एकदम ही उपयोग बंद करना चाहिए, सार्वजनिक जगहों पर गंदगी नहीं फैलानी चाहिए।
2: जी, जैसा कि आपने कहा कि हमें सार्वजनिक जगहों पर गंदगी ना फैलाएं, लेकिन कई बार अक्सर हम यह भी देखते हैं कि लोग सड़कों पर जहां तहां थूकते हैं या फिर जो पान गुटखा खाते हैं, अक्सर उनके छींटे आपको कई जगह दीवारों पर या फिर सड़कों पर नजर आते हैं, तो लोगों के इस बर्ताव का क्या असर पड़ता है?
3: ये बुरी आदतें हैं, जो पान गुटखा खाना और रोड के ऊपर थूकना, ये बहुत बुरी आदतें हैं। इससे सिर्फ गंदगी नहीं बढ़ती है परंतु बीमारियां भी फैलती है। हम इस आदतों को तुरंत बंद करना चाहिए और अपने सेल्फ अनुशासन को बनाए रखना चाहिए, और इसके लिए दूसरों को भी जागरूक करना चाहिए।
2: जी, चलिए अब बातें करते हैं खाने पीने की। जैसा कि अक्सर कहा जाता है कि जमशेदपुर शहर में लोग खाने पीने के शौकीन रहते हैं, अगर हम बात करें स्ट्रीट फूड वेंडर्स की, तो लोग अक्सर किसी न किसी आपको फूड स्टॉल पर खाते पीते दिख जाएंगे, तो क्या स्ट्रीट फूड वेंडर्स की भी कुछ जिम्मेदारियां होनी चाहिए? आपका क्या सोचना है इस बारे में?
3: मैं स्ट्रीट फूड वेंडर को ये बोलूंगी, क्योंकि मैं भी एक रेस्टोरेंट चलाती हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि अगर मेरी रेस्टोरेंट, मेरी जगह सफाईदार होगी, मेरा खाना बनेगा सफाई से, मेरे वेटर्स वगैरह सफाईदार होंगे, तो वो ग्राहकों को आकर्षित करता है। इसी तरह आप भी अपने कोई भी सामान बेचते हो तो खाना को ढक के रखना चाहिए, साफ पानी का इस्तेमाल करना चाहिए, बर्तन भी सफाईदार होना चाहिए, और खास करके कचरा वो डस्टबिन में रखना चाहिए, और अपनी खुद की सफाई वो रखना बहुत जरूरी है। जिस हाथों से आप खाना बनाते हो उस हाथों से आप पैसा न ले, आप हाथ धो के, हाथ साफ करके ही पैसा लेना चाहिए। तो ये छोटे छोटे बदलाव जो अगर आप करोगे तो आप अपना बिजनेस भी ज्यादा अच्छी तरह से कर पाओगे।
2: जी, जैसे कि बातें हो गई स्ट्रीट फूड वेंडर्स की, तो अगर दूसरी तरफ हम देखें तो कई जगह सड़कों पर या फिर कई जगह दुकानों में फल सब्जी विक्रेता भी काम करते हैं या फिर उनकी भी दुकानें लगती हैं, और उनके द्वारा जो चीजें प्रयोग या फिर जो वस्तुएं प्रयोग में लाई जाती हैं वो एक या दो दिन बाद खराब होने वाली भी होती हैं। तो फिर फल और सब्जी विक्रेताओं के लिए भी आप क्या कहना चाहेंगी कि ताकि वो भी स्वच्छता रखने में अपनी भूमिका निभाएं?
3: जी, इनके लिए एक छोटा सा संदेश है। अपने फल और सब्जी को बहुत आकर्षक तरीके से उनको रखना चाहिए, जो कि लोग आकर्षित होके अपने पास आए, और वो अपनी आजू बाजू की जगह है उसमें स्वच्छता बनाए रखना चाहिए। जैसे कि छिलका या कोई भी ऐसी चीजें बगल में ही रखनी नहीं चाहिए, और साफ सुथरे ताजे फल बेचे और आसपास में सफाई रखे, तो स्वच्छता ही स्वास्थ्य की पहचान है।
2: जी बिल्कुल सही बात कही आपने कि स्वच्छता ही स्वास्थ्य की पहचान है। अब ये सारी बातें हो गई हम सब नागरिकों की, अगर हम बात सरकार की करें तो सरकार की भूमिका स्वच्छता रखने में कितनी महत्वपूर्ण है?
3: जी, सरकार की भूमिका बहुत ज्यादा है, और मैं तो वैसा बोलूंगी कि कई जगह पर हम लोग ऐसे देख भी रहे हैं कि कचरा कई दिनों से उठता नहीं है। एक प्रोसेस होना चाहिए जिस प्रोसेस से शहर का साफ सुफी हो जाए, कचरे का निबंधन करना चाहिए, कचरे की सफाई और कचरा उठाओ वो सब एकदम रेगुलरली एक प्रोसेस की तरह होना चाहिए, नहीं कि कहीं जगह पर आप बहुत बड़ा ढेर देख लिया, किसी ने कंप्लेन किया और आप जाके वहाँ सफाई करते हो, वैसा नहीं होना चाहिए। सफाई कर्मचारी की निगरानी और नियमों का पालन कराना वो एक बहुत अनुशासन की बात है, जो सरकार की तरफ से अगर नागरिकों के ऊपर में ये नियमों का पालन और जुर्माना जो करके जागरूकता का अभियान चलाए, तो मैं नहीं समझती हूँ कि आज हम लोग बाहर देश में जाते हैं तो वहाँ नागरिक ऑटोमेटिकली इतने अनुशासित होते हैं कि कोई भी चीजें आजू बाजू फेंकते नहीं है। क्यों? वैसा अनुशासन हमारे देश में नहीं हो सकता है, हो सकता है, तो इसमें थोड़ा सा सरकार का भी रोल आता है।
2: जी, जैसे कि हम सभी नागरिकों का भी जिम्मेदारी है तो सरकार की भी अपनी एक भूमिका है, और हम दोनों को अपनी भूमिका का निर्वहन भलीभांति करना चाहिए। अब हम बातें करते हैं त्योहारों की, क्योंकि हमारा भारत देश त्योहारों का देश भी कहा जाता है, जहां अक्सर हर एक दो महीने के अंतराल पर या फिर एक ही महीने में कई सारे त्योहार पड़ते हैं। अलग अलग धर्म संप्रदाय की बात की जाए या फिर अलग अलग प्रदेशों की बात की जाए, तो हमारा भारत देश त्योहारों का देश बना हुआ है। त्योहार मनाने के बाद जो हमें गंदगी का अंबार कई जगह देखने को मिलता है, तो उस बारे में आप लोगों को क्या कहना चाहेंगी या फिर लोगों को क्या करना चाहिए ताकि हम त्योहार को भली भांति मनाए भी और पर्यावरण को स्वच्छ रखने में अपनी भूमिका भी निभाएं?
3: जी, आपने बहुत सही कहा कि त्योहारों के समय एक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। हम त्योहार को घर पे तो मनाते हैं, परंतु त्योहार सड़कों के ऊपर भी मनाते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि सड़कों पर जाके कोई भी त्योहार का, या जैसे एग्जांपल है पूजा, दुर्गा पूजा, तो पूजा के समय में बहुत अधिक त्योहारों का आदमी लोग का आना जाना रहता है, और इस समय में सरकार की तरफ से विशेष सफाई अभियान भी होना जरूरी है, और साथ साथ नागरिकों का सेल्फ अनुशासन होना बहुत जरूरी है। और त्योहारों के समय में हम अगर अपने को अनुशासित रखें तो हम मना पाएंगे स्वच्छ त्योहार और सुरक्षित शहर।
2: बिल्कुल, हम मना पाएंगे स्वच्छ त्योहार और सुरक्षित शहर। और अंत में हमारे शहर वासियों के लिए एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में क्या कहना चाहेंगी?
3: मैं तो सभी से यह कहूंगी कि मैं संकल्प लेती हूँ कि मैं कचरा इधर उधर नहीं फैलाऊंगी, डस्टबिन का उपयोग करूंगी, और गीले और सूखे कचरे को अलग अलग रखेंगे, और दूसरे को भी प्रेरित करेंगे कि आप भी ये सब अनुशासित बनके ये सारी चारों चीजों को आप हमेशा जिम्मेदार बनके आप जिम्मेदारी अपनी निभाइए। तो स्वस्थ शहर, स्वस्थ जीवन, ये हम सबकी ही जिम्मेदारी है।
2: आपने बिल्कुल ठीक कहा कि स्वच्छ शहर और स्वस्थ जीवन ये हम सभी की जिम्मेदारी है। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे स्वच्छ शहर और स्वस्थ जीवन ये हम सभी की जिम्मेदारी है, इसी विषय पर खास बातचीत। और आज के इस कार्यक्रम में इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद थीं स्मिता पारिक जी, जो शहर की जानी मानी एक बिजनेस वीमेन है। श्रोताओं, आपको बता दें कि यह कार्यक्रम स्वच्छता हम सभी की जिम्मेदारी है रोटरी क्लब ऑफ जमशेदपुर स्टील सिटी की एक पहल ग्रीन डायलॉग के अंतर्गत आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया है। उम्मीद करते हैं श्रोताओं आप

0: सभी को आज का कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा और आप सभी स्वच्छता के प्रति जागरूक होते हुए अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करने की कोशिश अवश्य करेंगे, क्योंकि जहां स्वच्छता है वहीं स्वास्थ्य है। श्रोताओं, कार्यक्रम जरा सुनिए कि आज का सफर बस यहीं तक, मिलते हैं अगले अंक में। तब तक मुझे यानी विवेक आदित्य को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: जरा सुनिए,
2: जरा सुनिए,
1: जरा सुनिए।
2: समस्या है तो समाधान भी, जहाँ चाह वहाँ राह, बात बन जाएगी।
1: जरा सुनिए।

प्रस्तुत करते हैं लोकगीतों का कार्यक्रम। लोकगीतों के कार्यक्रम में आज हमने शामिल किए हैं मैथिली लोकगीत, कलाकार अनुराधा मित्रा और साथी

लोकगीतों के कार्यक्रम में श्रोताओं भी आप सुन रहे थे मैथिली लोकगीत, कलाकार थी अनुराधा मित्रा और साथी। इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है। प्रस्तुत करते हैं बांग्ला गीतों का कार्यक्रम सुरांजलि। कार्यक्रम सुरांजलि में आज हमने शामिल किए हैं आधुनिक गान। कलाकार हैं धनंजय भट्टाचार्य।

0: बांग्ला गीतों का कार्यक्रम सुरांजलि श्रोताओं भी आप सुन रहे थे और आज इस कार्यक्रम में हमने शामिल किए थे आधुनिक गान कलाकार थे धनंजय भट्टाचार्य। इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है। प्रस्तुत करते हैं स्वास्थ्य चर्चा का कार्यक्रम। स्वास्थ्य चर्चा में आज चर्चा का विषय है त्वचा की एलर्जी। इसके क्या कारण हैं और इसके क्या उपाय हैं, इस विषय पर हमें जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर आर कुमार और इनसे बातचीत कर रहे हैं हमारे सहयोगी राजेश कुमार।
1: श्रोताओं, स्वास्थ्य चर्चा के अंतर्गत आज हम बातें करेंगे त्वचा में एलर्जी से संबंधित। तो ये त्वचा में एलर्जी है क्या और किन कारणों से ये होता है, इन बातों पर प्रकाश डालने के लिए आज हमारे साथ हैं त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आर कुमार। डॉक्टर साहब, हमारे इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: डॉक्टर साहब, त्वचा में एलर्जी ये क्या है?
2: देखिए, त्वचा में एलर्जी का वजह जरूर होता है, अपने आप किसी को ये एलर्जी होती नहीं है। कारण बहुत हो सकते हैं। पेशेंट आकर बोलता है, सर मैंने कल रात प्रॉन खाया था, उसके बाद से शरीर पे लाल लाल दाने आ गए हैं। कोई कहता है कि बैंगन खाने की वजह से मुझे हो गया। तो ये खुशनसीब पेशेंट है जो खुद आकर बताते हैं कि मैंने खाया तो हुआ। इसके अलावा कभी कभी ऐसा भी हमने देखा है कि कुछ पेशेंट नया शर्ट पैंट खरीद कर लाया, उसे पहना और शुरू हो गई खुजली। तो ये भी वजह बनता है कि नए कपड़े से होता हुआ हमने देखा है। एलर्जी का हजारों कारण है, बट सबसे बड़ी बात है कि इस कंडीशन में इसे हम इमरजेंसी मानते हैं, क्योंकि जब ये आता है शरीर में, कोई एक जगह नहीं रहता, पूरा शरीर को इन्वॉल्व कर लेता है। तो ऐसे कंडीशन में बेहतर रहता है कि हम जितना जल्दी हो नियरेस्ट स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाएं और ज्यादा तकलीफ होने पे खुद घरेलू इलाज ना करके जल्द से जल्द डॉक्टर से मिले।
1: एलर्जी के लक्षण किस तरह से दिखते हैं? अलग अलग लक्षण होते हैं, तो क्या क्या ऐसा दिखता है त्वचा?

0: जिससे पता चले कि एलर्जी के कारण ऐसा हो रहा है?
1: सिंपल से बचपन से हम लोग देखते आ रहे हैं कि जब भी एलर्जी हमारे शरीर पे होता है तो लाल दाने उठते हैं। वो लाल दाने को जब हम खुजली करते हैं वो तेजी से और भी शरीर के दूसरे पार्ट में भी इन्वॉल्व हो जाता है। कोई कोई पेशेंट कहता है सर मेरा होंठ फूल जाता है। कुछ कंप्लेन करते हैं कि जब खुजली होती है तो स्टार्ट तो कहीं एक से होता है बट बहुत तेजी से पूरे शरीर को इन्वॉल्व करता है। तो ऐसे कंडीशन को बचाना बहुत आसान है।
0: अगर मान लीजिए किसी के शरीर पे चकते उठाए हैं या फिर इचिंग हो रहा है, तो घरेलू उपाय तुरंत वो क्या करे डॉक्टर के पास जाने के पहले?
1: जी, चकत्ते उठने को जो है ना हम लोग इंग्लिश में अटिकेरिया बोलते हैं। एक 99% एक तरह का एलर्जी है।
0: अच्छा,
1: ऐसे कंडीशन में मैं तो यही चाहूंगा कि जिस तरह का आपके घर में कैलामाइन लोशन पड़ा हुआ है या कोई भी बॉडी लोशन है वो सूथिंग एजेंट के रूप में काम करता है, जिसको लगाने से आपको पल भर के लिए तो आराम मिलेगा बट उसका इलाज के लिए आपको नियरेस्ट डॉक्टर से मिलना ही पड़ेगा।
0: कोई ऐसा चीज जिसके कारण से ज्यादातर लोगों को एलर्जी होने की संभावना रहती है?
1: ऐसा कुछ नहीं है बट हमारे पूर्वजों से लेके दादा नानी ने जो चीज बताया है जैसे कि खट्टा नहीं खाना है, बैगन नहीं खाना है, मछली नहीं खाना है, ये सब कुछ कॉमन चीजें हैं जिसकी वजह से लोगों को एलर्जी होता है। हाँ सही बात है, अगर आपको एलर्जी नहीं है तो ये सब खाएं। अगर आपको इनमें से किसी भी चीज से एलर्जी है तो कृपया ऐसे ना खाएं।
0: तो एक डॉक्टर होने के नाते आप हमारे श्रोताओं को क्या सलाह देना चाहेंगे जिससे कि इस तरह की एलर्जी अगर उनके शरीर में कभी हो तो वो सचेत हो सके?
1: सही है, ये ऐसे केस में हम तो यही कहेंगे कि घरेलू नुस्खा तब तक कारगर है जब आप उसे इलाज करा के ठीक हो गए। बट अगर वे बार बार हो रहा है तो इसके लिए आप खुद से कुछ घरेलू उपचार ना करके किसी भी पैथ में किसी भी डॉक्टर से जितना जल्दी हो जल्द से जल्द मिले। कभी कभी ऐसा हमने देखा है नारियल कपूर तेल को मिलाकर एक पेशेंट ठीक हुआ, तो ये जरूरी नहीं है कि वो कल दूसरा पेशेंट भी एलर्जी उसे ठीक कर ले। एलोवेरा बहुत कॉमन है, सब लोगों को लगता है एलोवेरा जेल ठंडा रखेगा शरीर को, लगा देते हैं। मेरे पास तो ऐसे भी पेशेंट आते हैं जो एलोवेरा एलर्जी के केस में लगाए और उससे और भी ज्यादा हो गया। तो ये जरूरी है कि आप नियरेस्ट किसी डॉक्टर को मिलने।
0: क्या कुछ खतरा हो सकता है अगर शरीर में त्वचा की एलर्जी है तो?
1: जरूर, इसे हम मेडिकल इमरजेंसी भी मानते हैं। अर्टिकेरिया जिसको हम लोग भी बात ही कर रहे थे
0: जी,
1: एलर्जी है, साथ में एक एंजियोडीमा बोलते हैं, ये दोनों साथ ही चलता है। कभी कभी हमने ऐसे भी पेशेंट को देखा है जिसको सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, पूरा होंठ फूल जाता है, पूरा शरीर फूल जाता है। तो एलर्जी को आसान ना समझे, जब तक आपको तकलीफ ना हो तब तक तो ठीक है, मगर तकलीफ होने पर जितना जल्दी हो डॉक्टर से मिले।
0: तो श्रोताओं आपने सुना कि त्वचा की एलर्जी यदि आपको है तो बेहतर ही होगा कि तुरंत आप किसी त्वचा रोग विशेषज्ञ से मिले ताकि आपकी जो एलर्जी है वह पूरी तरह से ठीक हो सके। डॉक्टर साहब आपने काफी उपयोगी और महत्वपूर्ण जानकारियां दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

स्वास्थ्य चर्चा के आज के अंक में श्रोताओं आपने जाना त्वचा की एलर्जी और इसके कारण एवं उपाय पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। जानकारी दे रहे थे डॉक्टर आर कुमार।

0: मन की बात प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
1: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
0: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें, मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
1: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।
2: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
3: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
4: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
5: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
6: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
7: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
6: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
7: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
6: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
7: 8700001-4242।
8: श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र। हम आपको याद दिला दें, आज सुबह 9:10 पर आप सुनेंगे प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। इसका प्रसारण होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। समय याद रखें श्रोताओं, सुबह 9:10 से। 9:30 पर हम लेकर हाजिर होंगे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं शहनाई वादन राग तोड़ी में। कलाकार होंगे अली अहमद हुसैन और साथी। 10:10 पर होगा विश्व दर्पण समाचार का प्रसारण और 10:20 पर आनंद लीजिएगा फिल्मी गीतों के कार्यक्रम फिल्म संगीत का। दिन में 11:05 पर होगा नमस्कार जमशेदपुर और 12:05 पर सुनने का कार्यक्रम भावगीत या शीर्षक गीत। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है। सुबह के 8 बजने को है। अगला प्रसारण होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात। 8:15 पर होगा मॉर्निंग न्यूज का प्रसारण और 8:30 पर सुनिएगा प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से।

0: बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था विशेष रूप से मजबूत बनी हुई है। रिजर्व बैंक ने निवेश के लिए विदेशी निवेशकों को नियमों में छूट दी। कृषि मंत्रालय ने कहा, संतुलित उर्वरक उपयोग और सतत कृषि के लिए 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान में शामिल हुए। भारत ने जम्मू कश्मीर मामले में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग करने के लिए पाकिस्तान की निंदा की। मौसम विभाग ने 9 जून तक केरल के उत्तरी जिलों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद नॉर्वे शतरंज खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। उन्होंने कहा कि देश ने वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की मजबूत वृद्धि दर्ज की है। श्री मोदी ने दमण में कल लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
3: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
2: प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल देते हुए कहा कि विश्व हरित भविष्य की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
3: ये जो वैश्विक संकट चल रहा है ये दिखाता है कि

0: कृषि के मामले में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है और बीते 12 वर्षों में देश ने जो कैपेसिटी तैयार की है उसका कितना बड़ा महत्व है। 12 वर्ष पहले भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन नाम मात्र का था, आज हम दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक हैं।
1: इससे पहले श्री मोदी ने सूरत में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 250 गीगावाट में गुजरात का योगदान 50 गीगावाट है। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह की निवेश सीमाओं से छूट दी गई है। एक रिपोर्ट।
2: नई व्यवस्था के तहत जनरल रूट से निवेश करने वाले FPI को अधिक लचीलापन मिलेगा क्योंकि कुछ निवेश संबंधी प्रतिबंध हटाए गए हैं। रिजर्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों और राज्य विकास ऋणों में निवेश के लिए लागू जनरल और लॉन्ग टर्म श्रेणियों को मिलाकर एक एकीकृत निवेश सीमा भी निर्धारित की है। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही के लिए केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश सीमा 4,62,490 करोड़ और दूसरी छमाही के लिए 4,77,006 करोड़ तय की गई है। राज्य विकास ऋणों के लिए ये सीमा पहली छमाही में 1,53,043 करोड़ और दूसरी छमाही में 1,64,242 करोड़ निर्धारित की गई है। अंकिता आप्टे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: वित्त वर्ष 2025-26 में भी देश की अर्थव्यवस्था की मजबूत गति बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 2024-25 के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने की संभावना है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में अब तक 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया ये अभियान अब जन आंदोलन का रूप ले रहा है।
3: मंत्रालय के अनुसार अभियान के अंतर्गत अब तक 17,800 से अधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनसे लगभग 7 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। इसके अलावा 3,700 से अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 1.5 लाख से अधिक प्रतिभागियों को उर्वरक उपयोग, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और वैज्ञानिक खेती की जानकारी दी गई है। मंत्रालय ने ये भी बताया कि किसानों को जैविक और वैकल्पिक पोषक तत्वों के उपयोग की जानकारी देने के लिए 8,850 से अधिक व्यावहारिक प्रदर्शन भी आयोजित किए गए हैं। अभियान का उद्देश्य मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना, रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करना और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देना है। अक्षत की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ वार्ता करेंगे। बैठक में व्यापार, निवेश, ऊर्जा और लोगों के बीच आपसी संपर्क सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। 3 दिन की भारत यात्रा पर कल श्री खनाल ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ये यात्रा भारत और नेपाल के विशेष साझेदारी संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने में सहायक होगी।
4: With Nepal, we have an expansive agenda.
5: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपनी इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
4: Partnership that we have with Nepal.
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
6: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
7: जिंदगी परीक्षा के लिए नहीं है, हमारे जीवन को बनाने के लिए शिक्षा एक माध्यम है।
6: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से लगातार चल रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत ने चेतावनी दी है कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश

0: ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान के खोखले बयान और झूठे दावे इस मूलभूत वास्तविकता को नहीं बदल सकते।
1: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। यह पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
0: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि 2026 में अब तक 1076 भारतीय नागरिकों को अमरीका से भारत वापस भेजा जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 2025 में अमरीका से 3567 भारतीय नागरिक वापस भेजे गए थे। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच प्रवासन और आवागमन को लेकर बातचीत जारी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत में पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 के संयुक्त उत्पादन का प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच के दौरान उन्होंने कहा कि रूस SU-57 कार्यक्रम में भारत की भागीदारी का इच्छुक है। श्री पुतिन ने एकीकृत वायु रक्षा प्रणालियों और अन्य रक्षा उपकरणों के क्षेत्र में भी भारत के साथ सहयोग की इच्छा जताई है। भारतीय शांतिदूत मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने प्रतिष्ठित 2025 संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार से सम्मानित किया है। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में भारतीय बटालियन के साथ सेवारत मेजर बराक को संयुक्त राष्ट्र शांतिदूतों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर सम्मानित किया गया। अमरीका की सेना ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरान के तटीय निगरानी रडार ठिकानों पर हमला किया है। अमरीका ने कहा है कि क्षेत्रीय समुद्री यातायात को निशाना बनाने वाले ईरान के 4 ड्रोन मार गिराए जाने के बाद ये कार्रवाई की गई। इससे अमरीका और ईरान के बीच रुकी हुई शांति वार्ताओं पर और दबाव बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
2: ये हमला ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिका और ईरान के बीच कूटनीतिक बातचीत रुकी हुई है। ईरान विदेशों में अपनी अरबों डॉलर की परिसंपत्तियों पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग कर रहा है। ईरान के अधिकारी किसी भी अंतरिम समझौते की प्रगति को इन प्रतिबंधों से जोड़ रहे हैं। इस बीच लेबनान में हिजबुल्ला ने अमेरिका की मध्यस्थता वाले इसराइल और लेबनान सरकार द्वारा स्वीकार किए युद्ध विराम प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। हिजबुल्ला के अनुसार किसी भी समझौते में दक्षिणी लेबनान से इसराइल की सेना की वापसी की बात शामिल होनी चाहिए। हिजबुल्ला ने ब्यूफोर्ट किले के पास इसराइल की सेना पर हमले किए हैं। इस किले को इसराइल की सेना ने हालिया हमले के बाद अपने अधिकार में ले लिया था। ईरान ने हिजबुल्ला के लिए अपने समर्थन की बात दोहराई है। समाचार कक्ष से विनोद की रिपोर्ट के साथ मैं राजेश कुमार मीणा।
0: केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून के तीव्र होने के साथ ही मौसम विभाग ने राज्य के उत्तरी जिलों में 9 जून तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड जिलों के लिए आज रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि मलप्पुरम, कोझिकोड और वायनाड में कल भी रेड अलर्ट रहेगा। अन्य 6 जिलों के लिए आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद ने ओस्लो में नॉर्वे शतरंज खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। प्रज्ञानानंद ने अंतिम दौर में जर्मनी की विंसेंट क्रीमर को हराया। ये खिताब जीतने वाले वो पहले भारतीय बन गए हैं। नॉर्वे शतरंज में प्रज्ञानानंद ने विश्व के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराया था। भारत और अफगानिस्तान के बीच आज से शुरू हो रहा क्रिकेट टेस्ट मैच न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा। इससे पहले 2018 में अफगानिस्तान ने भारत के साथ पहला टेस्ट मैच खेला था। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में आज भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। गोवा के मडगांव में मैच शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: भारत की आर्थिक वृद्धि में बढ़त की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, संकट के बीच भारत की जीडीपी में उछाल, चौथी तिमाही में 7.8% रही। पत्र के अनुसार मजबूत मांग और उत्पादन के कारण रफ्तार तेज रही। नवभारत टाइम्स के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, ये 140 करोड़ भारतीयों की मेहनत और आर्थिक सुधारों का नतीजा है। पत्र के अनुसार विदेशी पूंजी के लिए टैक्स फ्री राहत तैयार, आरबीआई ने बिना सीमा विदेशी निवेश का दायरा बढ़ाया। देशबंधु के अनुसार लोन महंगे नहीं होंगे और ईएमआई भी नहीं बढ़ेगी। दैनिक भास्कर ने ऐतिहासिक शीर्षक से लिखा है, एआई का ग्लोबल हब बनेंगे हम। ऑस्ट्रेलियाई कंपनी देश में 3,00,000 करोड़ रुपए निवेश करेगी। 5 गीगावाट क्षमता का डेटा सेंटर बनाएगी एयर ट्रंक। जनसत्ता ने अध्ययन शीर्षक से लिखा है, अमेरिका के 96 यूनिकॉर्न में भारतीय मूल के उद्यमियों का योगदान। इनमें कृत्रिम मेधा आधारित सर्च इंजन परप्लेक्सिटी भी शामिल। पत्र के अनुसार नव उद्यमों में 59% की स्थापना प्रवासी उद्यमियों ने की। वीर अर्जुन ने अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से लिखा है, मेरे मोदी अच्छे मित्र हैं, व्यापार समझौता हो जाएगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, व्यापार समझौता का पहला चरण जुलाई तक संभव। दैनिक जागरण लिखता है, भारत संघ SU-57 बनाने को रूस तैयार। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की 5वीं पीढ़ी का अत्याधुनिक लड़ाकू विमान देने की पेशकश। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड पर पंजाब केसरी की सुर्खी है, लापरवाह अफसरों पर सीधे FIR। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियों को और प्रभावी बनाने का ऐतिहासिक फैसला किया गया। जनसत्ता ने अनदेखी की आग शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि कोई हादसा एक मामूली कोताही का नतीजा हो सकता है, लेकिन अगर वो गलती बनी रही तो उन्हें आपराधिक लापरवाही से कम नहीं माना जा सकता।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था विशेष रूप से मजबूत बनी हुई है। रिजर्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश के लिए विदेशी निवेशकों को नियमों में छूट दी। कृषि मंत्रालय ने कहा, संतुलित उर्वरक उपयोग और सतत कृषि के लिए 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान में शामिल हुए। भारत ने जम्मू कश्मीर मामले में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग करने के लिए पाकिस्तान की निंदा की। और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञान आनंद नॉर्वे शतरंज खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi asserts Indian economy remains exceptionally strong despite global economic crisis. Reserve Bank of India eases regulatory norms for foreign portfolio investors in government securities to attract investment. More than 9.42 lakh farmers to join Khet Bachao Abhiyan for balanced fertilizer use and sustainable farming. India slams Pakistan for abusing its temporary membership of UN Security Council to peddle false narratives about Jammu and Kashmir. IMD forecasts extremely heavy rainfall in northern districts of Kerala until June 9th. And Indian Grandmaster R. Pragyanan scripts history, becomes first Indian to win Norway chess title. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has asserted that the foundation of the Indian economy remains exceptionally strong, with the nation recording a robust 7.7% growth in the fiscal year 2025-26 despite a global economic crisis. Addressing a large gathering after launching a series of developmental projects worth around 2,970 crore rupees in Daman last evening, the Prime Minister noted that India continues to be among the fastest growing economies in the world. He assured the citizens that the country will forge ahead with its reform express while prioritizing massive infrastructure development and welfare schemes for the poor.
5: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
4: Earlier, Mr. Modi launched various infrastructure projects worth over 18,000 crore rupees in Surat. Addressing the gathering, the Prime Minister pointed out that out of India's total renewable energy capacity of 250 gigawatts, Gujarat alone contributes 50 gigawatts, accounting for a crucial fifth of the nation's green energy share. He added that the state is poised to play a massive role in shifting from solar energy to green hydrogen and green ammonia, which is essential for achieving energy self-reliance.
5: दुनिया अब हरित युग की तरफ, ग्रीन फ्यूचर की तरफ बहुत ही सावधान हो चुकी है। भारत भी ग्रीन ग्रोथ पर बहुत अधिक काम कर रहा है और इसमें भी गुजरात राज्य है जिसने इस शताब्दी के प्रारंभ में ही सरकार में क्लाइमेट चेंज का अलग डिपार्टमेंट बनाया था और गुजरात के चारणका गांव में भारत का पहला सोलर पार्क भी बनाया गया था.
4: स्पीकिंग ऑन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सूरत, द प्राइम मिनिस्टर प्रेज द सिटीज स्पिरिट एंड इट्स ट्रांजिशन इनटू अ ग्रीन सिटी. He lauded Surat's circular water economy model and the waste to wealth initiative, which has turned into a mass movement over the last 12 years. The Reserve Bank of India has simplified the rules governing investments by foreign portfolio investors or FPIs in government securities. The revised framework is aimed at making investments easier and reducing compliance requirements for foreign investors. More from our Mumbai correspondent.
6: Under the revised framework, FPIs investing through the general route will get greater flexibility as certain investment restrictions have been removed. The RBI has also merged the existing general and long-term investment categories into a single limit for government securities and state government securities. For financial year 26-27, the investment limit for central government securities has been fixed at 4,62,490 crore for the first half of the year and 4,77,006 crore for the second half. For state government securities, the corresponding limits have been set at 1,53,043 crore and 1,64,242 crore respectively. The revised directions have come into effect immediately. Ankita Apte, Akashvani News, Mumbai.
4: India's economy has maintained a strong momentum in 2025-26 with real gross domestic product or GDP estimated to grow by 7.7% in comparison to 7.1% in 2024-25. The Ministry of Statistics and Programme Implementation yesterday released the provisional estimates of annual GDP for the financial year 2025-26 and quarterly estimates of January to March this year. It said the primary sector has observed 3.2% growth rate, mainly driven by the performance of agriculture and fishery sectors. The Ministry of Agriculture and Farmers Welfare said that more than 9.42 lakh farmers across the country have joined the Khet Bachao Abhiyan as of June, transforming the campaign for balanced fertilizer use into a nationwide mass movement. The campaign, launched by the Union Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, aims to promote balanced fertilizer application, conserve soil fertility, and encourage sustainable farming practices. A report.
7: The Agriculture Ministry informed that over 17,800 awareness programs have been organized so far under the campaign, reaching nearly 6.98 lakh farmers. In addition, around 3,700 training programs have been conducted, providing information on balanced fertilizer use, soil health management, and scientific farming techniques to more than 1.57 lakh participants. The ministry said that over 8,850 field demonstrations have also been organized to provide practical exposure to farmers on the use of organic and alternative nutrient sources, as well as integrated nutrient management techniques. These demonstrations are aimed at improving long-term soil productivity and reducing excessive dependence on chemical fertilizers. With Akshit and Rohan's report, Jigyasa Pandey for Akashwani News, Delhi.
4: Central Board of Secondary Education or CBSE has extended the last date for submission of applications for verification of marks and re-evaluation till 7th of June. In a social media post, the board said students can now submit their applications till Sunday midnight. CBSE said that the decision has been taken in the interest of students to provide them with additional time to complete the application process. The earlier deadline for submission of applications was 6th of this month. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. India has said that Pakistan is abusing its temporary membership of the UN Security Council to peddle false narratives about Jammu and Kashmir, and it should be mindful of its responsibilities. India's permanent representative P. Harish said that empty rhetoric and hollow claims by Pakistan would not change this fundamental reality that Jammu and Kashmir was, is and will always remain an integral and inalienable part of India.
8: I'd like to remind Pakistan that being a member of the UN Security Council is a huge responsibility. It's not a forum for peddling biased and

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि भारतीय भविष्य
1: और अब समाचार विस्तार से। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन आज अपने दो दिवसीय दौरे पर झारखंड आ रहे हैं। उनके आगमन को लेकर प्रदेश भाजपा कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। अपने प्रवास के दौरान वे रांची में प्रदेश कोर कमेटी, सांसदों और विधायकों के साथ संगठनात्मक बैठकों में भाग लेकर आगामी कार्यक्रमों की समीक्षा करेंगे। झामुमो द्वारा राज्यसभा की दोनों सीटों पर प्रत्याशी उतारने के बाद रांची में कांग्रेस विधायक दल की अहम बैठक हुई। प्रदेश प्रभारी के राजू की मौजूदगी में विधायकों ने आपसी एकजुटता का संकल्प लिया। विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने कहा कि संगठन को गठबंधन को मजबूत रखने के लिए जल्द ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर मतभेद दूर किए जाएंगे।
2: सीएलपी की बैठक, विधायक दल की बैठक हुई है और पहले हमने अपने पार्टी द्वारा चयनित उम्मीदवार का स्वागत किया है और थोड़ी बहुत बात जो गठबंधन में दूरी दिख रही है, हम सबों ने यह निर्णय लिया है कि गठबंधन दल के नेता माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत जी हैं, हम सब प्रयास कर रहे हैं उनसे समय लेकर के यह जो आपस की दूरी बढ़ी है, यह दूरी भारतीय जनता पार्टी को ऊर्जा देगा। हम सबको इस दूरी को पाटना चाहिए।
1: इससे पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा था कि पार्टी ने कांग्रेस के साथ हमेशा एक तरफा प्यार निभाया है। उन्होंने दोनों राज्यसभा सीटों पर झामुमो का हक जताते हुए स्पष्ट किया कि पार्टी अपने रुख से पीछे नहीं हटेगी।
3: इस बार के दोनों जो सीट है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा का ही उम्मीदवार को मिलना चाहिए, क्योंकि 24 के बाद हम लगातार गठबंधन धर्म निभा रहे। कांग्रेस के विधायकों की संख्या कम थी लेकिन हमने चार मंत्री बना के रखा, आज भी यथास्थित, लेकिन बिहार में हमें उचित तो छोड़िए प्रतिनिधित्व यही नहीं मिला।
1: रांची में भाजपा विधायक दल की बैठक में राज्यसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई। मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल ने कहा कि पार्टी एक सीट पर चुनाव लड़ेगी, इसके लिए प्रत्याशी जल्द घोषित होगा। महागठबंधन में सीट बंटवारे के विवाद के बीच भाजपा ने आंकड़ों की कमजोरी के बावजूद अपनी जीत का दावा किया है
4: कि भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा के चुनाव में जो निर्णय हुआ है कि प्रत्याशी दे रही है, केंद्रीय नेतृत्व को तय करना है और मुझे लगता है कि आज देर रात या कल सुबह तक प्रत्याशी की घोषणा हो जाएगी। हमारे प्रत्याशी घोषणा होते साथ माननीय सभी विधायक भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के एक साथ नॉमिनेशन में उसमें हम लोग करेंगे।
1: झारखंड सरकार ने मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए नई इनाम योजना की अधिसूचना जारी की है। इसके तहत नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार और उत्पादन की सूचना देने वाले आम लोगों को पुरस्कृत किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य युवा पीढ़ी को इसके दुष्परिणामों से बचाना और समाज में नशीले पदार्थों की मांग को कम करना है। रांची में नशे के खिलाफ दो दिवसीय विशेष मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो CIP और रिनपास के विशेषज्ञों ने युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया। विशेषज्ञों ने कहा कि तनाव और सामाजिक समस्याओं के कारण युवा भटक रहे हैं, लेकिन सही काउंसलिंग और उपचार से नशा मुक्ति संभव है। रांची जिला पुलिस ने प्रतिबंधित संगठन PLFI के दो उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। इन उग्रवादियों ने नगड़ी क्षेत्र के एक कारोबारी से वर्चुअल कॉल के जरिए 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी। ASP अजय आर्यन के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने तुपोदाना क्षेत्र से दोनों को धर दबोचा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य डॉ. आशा लकड़ा ने गुमला में 3 जिलों के जनजातीय मामलों की सुनवाई की। उन्होंने गुमला, लोहरदगा और सिमडेगा से जुड़े भूमि विवाद और शिक्षा जैसे 16 मामलों की समीक्षा की। बैठक के बाद डॉ. लकड़ा ने बताया कि अधिकारियों को जनजातीय अधिकारों के संरक्षण के लिए त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
5: अनुसूचित जनजाति आयोग के द्वारा गुमला जिला का लगभग 16 के गुमला, लोहरदगा और सिमडेगा जिला मिलाकर के लगभग 16 केसों का सुनवाई की है और उसमें खास रूप से अगर देखा जाए तो प्राय केस जमीन से रिलेटेड थे, एजुकेशन से थे और जाति के माध्यम से थे। ऐसे अगर देखा जाए तो जमीन से रिलेटेड थे।
1: रांची में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को लेकर आज और कल सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर लगेंगे। इस सिलसिले में रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने राजनीतिक दलों के साथ बैठक की। उन्होंने मतदाता सूची की शुद्धता के लिए राजनीतिक दलों से सक्रिय भागीदारी और बीएलओ से समन्वय का आग्रह किया। गिरिडीह में विशेष गहन पुनरीक्षण मतदाता सूची अभियान को लेकर जिला प्रशासन और राजनीतिक दल सक्रिय हो गए हैं। जिला उप निर्वाचन अधिकारी धीरेन्द्र कुमार ने पीरटांड में बीएलओ के साथ बैठक कर मैपिंग में तेजी लाने के निर्देश दिए।
6: ब्लॉक में बीएलओ एवं सुपरवाइजर बैठक किया। इस बैठक के दौरान कुछ खामियां पाई गई, साथ ही मैपिंग भी यहां पे कमी है। बहुत सारे ब्लॉक ऐसे हैं जहां 70% कम मैपिंग हुई है। उसको हम हिदायत दिए हैं कि अभिलंब जो आप मैपिंग को बढ़ाएं, साथ ही एलडी केसी बहुत ज्यादा मिल रहा है। उस संदर्भ में डॉक्यूमेंट कलेक्शन की भी लोगों को बात कही है और बीएलओ इसमें त्वरित रूप से काम करने का निर्देश।
1: वहीं भाजपा और झामुमो कार्यकर्ता भी मतदाताओं की मैपिंग के लिए अभियान चलाएंगे। विश्व पर्यावरण दिवस पर रांची में पर्यावरण संरक्षण की धूम रही। झारखंड जैगुआर ने टेंडर ग्राम में आईजी अनूप बिरथरे की अगुवाई में विशेष वृक्षारोपण अभियान चलाया। वहीं राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद की ओर से आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं और जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को पर्यावरण दूत बनने का सामूहिक संकल्प दिलाया गया। मौसम। देश में मॉनसून के आगमन के बाद झारखंड में भी मौसम का मिजाज बदल रहा है। मौसम विभाग ने आज और कल रांची तथा आसपास के इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई है। कुछ क्षेत्रों में तेज हवा और वज्रपात की भी आशंका है जो मॉनसून के आगे बढ़ने के अनुकूल है। जापान में अंडर 18 एशिया कप हॉकी के सेमीफाइनल में भारतीय पुरुष टीम ने पाकिस्तान को 5-3 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। मैच में झारखंड के आशीष तनीपूर्ति ने अंतिम क्वार्टर में शानदार हैट्रिक लगाकर भारत को जीत दिलाई। वहीं महिला टीम पेनाल्टी शूटआउट में चीन से हारकर बाहर हो गई। अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने राज्य में राज्यसभा चुनाव में उत्पन्न सीट विवाद की खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, राज्यसभा चुनाव में रार, झामुमो बोला एक तरफा प्यार कब तक, दोनों सीटों पर ठोका दावा। प्रभात खबर के शब्द हैं, नहीं रुक रहा प्रिंस खान की धमकियों का सिलसिला, रांची में दो बड़े कारोबारियों के बाद अब चंद्रगुप्त परियोजना के अधिकारी से मांगी रंगदारी। हिंदुस्तान ने लिखा है, बोकारो के नीलकंठ विश्व बैंक में भारत के ईडी बने। दैनिक जागरण लिखता है, बाइक खरीदवाने की जिद में युवक चढ़ा टावर पर, 4 राज्यों की बिजली रही ठप। और अब अंत में मुख्य समाचार। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज से 2 दिवसीय झारखंड दौरे पर। रांची में प्रदेश कोर कमेटी, सांसदों और विधायकों के साथ संगठनात्मक तैयारियों की करेंगे समीक्षा। राज्य में मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध व्यापार की सूचना देने वालों को मिलेगा इनाम। रांची में आज और कल सभी मतदान केंद्रों पर लगेंगे विशेष मतदाता शिविर। उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने राजनीतिक दलों से मांगा सहयोग। देश में मॉनसून के दस्तक देते ही झारखंड में बदला मौसम। रांची समेत कई इलाकों में आज और कल भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट। और जापान में अंडर 18 एशिया कप हॉकी के फाइनल में पहुंची भारतीय पुरुष टीम। झारखंड के आशीष तनीपूर्ति की शानदार हैट्रिक से सेमीफाइनल में पाकिस्तान को 5-3 से रौंदा। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
7: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है। वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।

0: माथे को पूछा, सबको पूछता ही रहता था। और उसके बगल में एक सज्जन बैठे थे, वो सारा देख रहे थे। बाद में खड़ा हुआ, खड़ा होकर के किसी को पूछने लगा, तो वो सज्जन खड़े होकर के उसके पास आए। उसने कहा, देखो भाई, तुमको जहाँ जाना है ना, उसका रास्ता इस तरफ से जाता है। तो उस राहगीर ने उसको पूछा, भाई साहब, आप इतनी देर से मेरे बगल में बैठे हो, मैं इतने लोगों को रास्ता पूछ रहा हूँ, कोई मुझे बता नहीं रहा है, आपको पता था तो आप क्यों नहीं बताते थे? बोले, मुझे भरोसा नहीं था कि तुम सचमुच में चल करके जाना चाहते हो या नहीं चाहते हो, या ऐसे ही जानकारी के लिए पूछते रहते हो। लेकिन जब तुम खड़े हो गए तो मेरा मन कर गया, हाँ, अब तो इस आदमी को जाना है, पक्का लगता है। तब जाकर के मुझे लगा कि मुझे आपको रास्ता दिखाना चाहिए। मेरे देशवासियों, जब तक हम चलने का संकल्प नहीं करते, हम खुद खड़े नहीं होते, तब रास्ते दिखाने वाले भी नहीं मिलेंगे, हमें उंगली पकड़ कर चलाने वाले नहीं मिलेंगे। चलने की शुरुआत हमें करनी पड़ेगी। और मुझे विश्वास है कि 125 करोड़ देशवासी जरूर चलने के लिए सामर्थ्यवान है, चलते रहेंगे। संदेश से पूर्वक
1: आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रादेशिक समाचार श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 8:45 हो रहे हैं। फिल्म संगीत हम लेकर हाजिर होते हैं बस कुछ ही पलों में।
2: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो, असली ओजी कौन है? बॉस, रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो, क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी, 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

0: श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर और आप हैं हमारी प्रातःकालीन सभा के प्रसारणों के साथ। प्रस्तुत करते हैं फिल्म संगीत। श्रोताओं, आज है 6 जून और आज ही के दिन 6 जून 1929 को जन्म हुआ था महान अभिनेता सुनील दत्त का। इनका जन्म आज के दिन ही पंजाब के झेलम जिले के खुर्द गांव में हुआ था और इनका असली नाम था बलराज दत्त। आज इनकी जयंती पर हम इन्हें याद करते हैं। श्रोताओं, जब सुनील दत्त महज 5 वर्ष के थे तब इनके पिता का निधन हो गया और इसके बाद 1947 में विभाजन हुआ जिससे उनके हंसते खेलते बचपन को लगभग खो सा गया। इनके एक दोस्त के पिता ने इनके परिवार की जान बचाई और इसके बाद ये भारत आ गए। मुंबई आने के बाद का सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। इन्होंने बेस्ट बस डिपो में क्लर्क की नौकरी की और साथ ही जय हिंद कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की। अपनी मखमली आवाज और गजब की संवाद अदायगी के कारण इन्हें रेडियो सलोन में आरजे की नौकरी मिल गई जहां वे फिल्म सितारों का इंटरव्यू लिया करते थे। इसी दौरान उन पर नजर पड़ी निर्देशक रमेश सहगल की और उन्होंने बलराज दत्त को नाम दिया सुनील दत्त। श्रोताओं, सुनील दत्त ने अपने करियर की शुरुआत की 1955 में फिल्म रेलवे प्लेटफॉर्म से, लेकिन उनके करियर और भारतीय सिनेमा का इतिहास बदलने वाली फिल्म आई थी सन 1957 में महबूब खान की मदर इंडिया। आइए श्रोताओं, आपको सुनवाते हैं फिल्म पड़ोसन का ये बेहद खूबसूरत सा गाना जिसमें सुनील दत्त का नाम तो भोला है ही, लेकिन इनकी इस भोली अदायगी ने हमारे दिलों में आज तक इनकी जगह बनाई हुई है।
1: अरे ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला

किशोर कुमार की आवाज़ और राजेंद्र कृष्ण की बोल। संगीतबद्ध क्या है आर डी बर्मन साहब ने। फिल्म पड़ोसन का ये गाना श्रोताओं भी आपने सुना। मदर इंडिया फिल्म भारतीय सिनेमा के लिए एक मील का पत्थर साबित हुई थी और इस फिल्म में सुनील दत्त ने बिरजू का किरदार निभाया था, जो एक विद्रोही, डाकू और एक एंटी हीरो था। समाज के अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले एक गुस्से से भरे बेटे के किरदार को उन्होंने इस जीवंतता से निभाया कि वो भारतीय सिनेमा के इतिहास का सबसे आइकॉनिक किरदार बन गया। इसी फिल्म के सेट पर एक भयानक आग लगी थी, जिसमें सुनील दत्त ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए अभिनेत्री नरगिस को बचाया था, जो बाद में इनकी जीवन संगिनी भी बनी थी। श्रोताओं, सुनील दत्त सिर्फ कैमरे के सामने अभिनय नहीं करते थे, वे सिनेमा को एक नई दिशा देना चाहते थे। सन 1964 में उन्होंने एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम था यादें। ये पूरी दुनिया के सिनेमा में एक अनोखा प्रयोग था। पूरी फिल्म में सिर्फ एक ही अभिनेता था, खुद सुनील दत्त साहब। इस फिल्म का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया गया है। और अब आइए आपको सुनवाते हैं फिल्म मिलन का ये गाना। ये बेहद खूबसूरत सा गाना जो हम शायद हर सावन के महीने में तो जरूर सुनते हैं। आवाजें हैं लता मंगेशकर और मुकेश की, बोल लिखे हैं आनंद बख्शी साहब ने और धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने।

0: शोर।
1: शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।

फिल्म मिलन का ये गाना जो तो अभी आपने सुना लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में, बोल लिखे हैं आनंद बख्शी साहब ने और धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। श्रोताओं, 25 मई सन 2005 को इस महान अभिनेता, समाज सेवक और राजनेता ने दुनिया को अलविदा कह दिया। सुनील दत्त आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन भारतीय सिनेमा में इनका योगदान, एक अकेले अभिनेता के दम पर फिल्म बनाने का उनका हौसला

हौसला और सरहद पार जाकर देश के जवानों का हौसला बढ़ाने वाली उनकी इंसानियत उन्हें हमेशा अमर रखेगी। आज इनके जन्मदिन पर भारतीय सिनेमा के इस मदर इंडिया के लाडले और असली हीरो को हमारा शत शत नमन। कार्यक्रम फिल्म संगीत अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर और आप है हमारी प्रातःकालीन सभा के प्रसारणों के साथ। सुबह के 9 बजने को है, अगला प्रसारण होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। आप सुनेंगे समाचार और 9:10 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही आप सुनेंगे प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। समय याद रखें श्रोताओं, सुबह 9:10 से। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है। सुबह के 9 बजने को है, समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे बस कुछ

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। उन्होंने कहा कि देश ने वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की मजबूत वृद्धि दर्ज की है। श्री मोदी ने दमण में कल लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
1: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
0: प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल देते हुए कहा कि विश्व हरित भविष्य की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य निवेश करने वाली विदेशी निवेशकों को अब कई तरह की निवेश सीमाओं से छूट दी गई है। वित्त वर्ष 2025-26 में भी देश की अर्थव्यवस्था की मजबूत गति बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 2024-25 के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने की संभावना है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ वार्ता करेंगे। बैठक में व्यापार, निवेश, ऊर्जा और लोगों के बीच आपसी संपर्क सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। 3 दिन की भारत यात्रा पर कल श्री खनाल ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज बिम्स्टेक दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि बिम्स्टेक बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में साझा समृद्धि संपर्क और सुगमता को बढ़ावा देने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत एकजुटता और आपसी सहयोग की भावना के साथ बिम्स्टेक सदस्य देशों के साथ सहयोग और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में अब तक 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं। संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया यह अभियान अब जन आंदोलन का रूप ले चुका है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत ने चेतावनी दी है कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए। भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वत नीली ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान के खोखले बयान और झूठे दावे इस मूलभूत वास्तविकता को नहीं बदल सकते। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली का चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना का कड़ा विरोध किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। ये चुनाव कल होने वाले हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। पद्म पुरस्कार 2027 के नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन अगले महीने की 31 तारीख तक राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर भेजे जा सकते हैं। गृह मंत्रालय ने बताया कि पद्म पुरस्कारों के लिए आवेदन और अनुशंसाएं भेजने की प्रक्रिया 15 मार्च तक शुरू की गई है। केरल में दक्षिण पश्चिम मानसून के तीव्र होने के साथ ही मौसम विभाग ने राज्य के उत्तरी जिलों में 9 जून तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मलप्पुरम, कोईकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड जिलों के लिए आज रेड अलर्ट जारी किया गया है। भारत और अफगानिस्तान के बीच आज से शुरू हो रहा क्रिकेट टेस्ट मैच मल्लनपुरम नई चंडीगढ़ में महाराज यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में आज भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। गोवा के मड़गांव में ये मैच शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार श्रोताओं भी आप सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है।
3: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

अंतराल के बाद श्रोताओं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। श्रोताओं आज जब सुबह सोकर जैसे ही नींद खुली तो खिड़की से बाहर देखा आसमान का वो नीला रंग थोड़ा धुंधला सा लगा। पेड़ों के पत्तों पर वो हरी रंगत की जगह थोड़ी धूल देखने को मिली और तभी दिल ने एक सवाल पूछा, जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं क्या वो हमें जिंदगी दे रही है या धीरे धीरे हमारी जिंदगी हमसे ले रही है। श्रोताओं आज का ये दिन या आज का ये शो किसी फिल्मी गपशप के लिए नहीं है, बल्कि आज हम बात करेंगे उस दोस्त की जो चुपचाप हमारा हर बोझ सहता है, हमारी धरती माँ, हमारा पर्यावरण। पर्यावरण हमारे लिए कितना जरूरी है इसका जवाब इस गाने की इन खूबसूरत लाइनों में छिपा है। आइए सुनते हैं पहले ये गाना, उसके बाद आगे की बात करेंगे।

फिल्म रोजा का ये गाना श्रोताओं भी आपने सुना, जिसमें हमने पर्यावरण पर और पर्यावरण की खूबसूरती पर बात की। इस पर और विशेष रूप से हम बात करेंगे अभी आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के साथ। आप सुनेंगे कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ थोड़ी ही देर में।

0: आकाशवाणी के साथ।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। इसके अंतर्गत सुनिए उत्तर प्रदेश में मनोरमा नदी की सफाई के लिए प्रयासरत आकाश गुप्ता के साथ विशेष बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रहे हैं अमित कुमार सिंह।
2: बस्ती के आकाश गुप्ता आज मेरे साथ हैं। इन्होंने अपने 7 साथियों के साथ जो कर दिखाया उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने मन की बात में इनके नाम और इनके कार्यों की चर्चा करके आज इनको पूरे विश्व के पटल पे स्थापित किया, जिसकी प्रशंसा बस्ती ही नहीं पूरे देश में की जा रही है। आकाश गुप्ता जी जो बस्ती जनपद के लजघटा गाँव के निवासी है और ये छात्र है, इनके साथ जितने भी लोग उस अभियान में लगे हुए हैं सभी किसी न किसी विद्यालय में 8वीं, 9वीं, 10वीं और 11वीं के छात्र हैं। आकाश गुप्ता जी आपका स्वागत है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: मनोरमा नदी सफाई अभियान को कब आपने शुरू किया और कहां से प्रेरणा मिली आपको?
3: हमने अपनी मनोरमा नदी की सफाई का अभियान 67 दिन पहले शुरू किया। जब हमने ये शुरू किया तो हमारी नदी इतनी गंदी थी कि उसमें कचड़ा और उसके बाद ढेर सारी पूजा की सामग्रियां उसमें पड़ी हुई। किसी के यहाँ पे कार्यक्रम होता था तो वे लोग आकर अपना जो भी बाद का सामान होता था उसमें लाके नदी में फेंक देते थे, जिस वजह से हमारी नदी का स्थिति ऐसा हो गया था कि उसमें कोई भी जानवर पानी पीता नहीं था क्योंकि उसकी हालात ही ऐसी थी और कोई भी आदमी उस वहां पर नहाता भी नहीं था। तो हमने सोचा कि आज से 10 साल पहले जब हमारी नदी इतनी साफ थी, जहां पर सब लोग नहाते थे, जानवर पानी पीते थे, आखिर आज के टाइम पे वो हाल क्यों नहीं। तो हम लोगों ने सोचा कि अगर ये हमारी नदी है तो इसे साफ करने का कर्तव्य भी हमारा है। तो हम लोगों ने 6 से 7 लोगों की टीम बनाई और अपनी नदी सफाई का अभियान शुरू किया। पहले दिन हमें नहीं लगा था कि हम लोग इस नदी को इतना आगे साफ कर पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे हम लोगों ने अपनी नदी का अभियान का सफाई जारी रखा और आज हमारी नदी कुछ ऐसी दिखने लगी है जहां पर जानवर आकर इसमें पानी भी पीते हैं और यहां पर लोग आकर नहाते भी हैं और हमारी बहुत प्रशंसाएं भी करते हैं।
2: आकाश जी, यह अभियान शुरू करने से पहले बहुत सारे लोगों ने कहा होगा कि इतने गंदी नदी है, आप कैसे इसको साफ करोगे, या आपका मनोबल भी एक बार कमजोर हुआ होगा कि मैं जो है कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। भाई ऐसी प्रेरणा आपको आई कहां से और गांव के लोगों का क्या सहयोग और सपोर्ट रहा आपके साथ?
3: जब हम लोगों ने ये कार्य स्टार्ट किया था तो हमारे गांव के जो लोग थे उन्होंने कहा ये साफ तुम लोग नहीं कर पाएगे क्योंकि ये नदी बहुत गंदी है, इसको साफ करने के लिए सरकार को ही आगे आना पड़ेगा। लेकिन हमने कहा नहीं, हम लोग थोड़ा थोड़ा ही साफ करेंगे लेकिन हर एक दिन काम करेंगे। और हम लोगों ने नहीं सोचा था कि इतना हम लोग नदी अपना साफ कर लेंगे और लोगों का भी सपोर्ट नहीं रहता था क्योंकि गांव का कोई भी हमें सपोर्ट करने नहीं आता था, कोई भी नहीं कहने आता था कि हम भी तुम्हारे साथ काम करेंगे और तुम्हारी मदद करके नदी की सफाई को आगे जारी रखेंगे।
2: आप जब उस समय नदी की स्थिति या उसकी हालात देखे तो कैसा लगा?
3: पहले के टाइम पे नदी की स्थिति बहुत ही खराब थी, तो हम लोग आते थे बरगद के पेड़ के नीचे बैठते थे हम सभी लोग, तो हम सोचते थे कि अगर हमारी नदी इतनी गंदी, हम लोग अगर यहाँ बैठते हैं, यहाँ बदबू आ रही है, तो इसको साफ करके हम लोग यहाँ पर सुकून से बैठेंगे। तो हम लोगों ने इसकी सफाई का काम शुरू किया और इसको साफ किया।
2: करीब 2 महीने चले इस अभियान में, सबसे बड़ी चुनौती आपको क्या मिली?
3: सबसे बड़ी चुनौती ये रही हमारी नदी में कि हम लोगों ने इसको साफ पूरा किया, 30 से 40 दिन तक हमने इसको लगातार साफ किया, लेकिन फिर 10 दिनों के अंदर इसके अंदर काइया जमा होने लगी और वो काइया धीरे धीरे सड़ने लगी और जिससे बहुत ज्यादा समस्या हमें होने लगी। फिर उसको साफ किया हम लोगों ने और उसके बाद बहुत सारे लोग ऐसे थे कि आकर वो पूजा की सामग्रियां वापस में डाल रहे थे। उसके बाद इसके अंदर से बहुत सारी कांच की बोतल्स और वो भी टूटे फूटे हालात में मिले। बहुत सारे हमारे टीम मेंबर्स का हाथ कट गया, पैर कट गया और यही सब प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जैसे कि लोग आते हैं, कचरा फेंक जाते हैं, उसके बाद सहयोग भी नहीं करते, उसको साफ भी नहीं करते।
2: इस अभियान में गाँव के लोग और भी लोगों का क्या सहयोग रहा?
3: गाँव के लोग आते थे, हमें कहते थे कि हाँ तुम अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन अभी तक कोई भी गाँव वाला हमारे साथ नदी में नहीं। अब आप सोच सकते हैं कहने की बात अलग होती है, करने की बात अलग होती है। अगर आप हमारे साथ में चलकर नदी की सफाई करते हैं तब तो हम मानेंगे आप हमारे साथ जुड़े हुए, क्योंकि हम साथी लोग जब से शुरू किए हैं तब से अभी तक काम कर रहे हैं।
2: क्या इस अभियान में जनप्रतिनिधियों और प्रशासन का कोई सहयोग आपके साथ रहा?
3: हमने एक वीडियो बनाई थी योगी जी को लेकर कि हम लोग अपनी मनोरमा नदी की सफाई का काम कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों ने इसको शेयर किया जिस वजह से हमारी एक दिन में वीडियोस 1 करोड़ लोगों ने देख लिया और योगी जी ने उसको वीडियो देखा भी। और योगी जी से पहले मोदी जी ने मन की बात में हमारी जिक्र किया कि मैं और मेरे 7 लोगों की टीम ने मिलकर अपनी मनोरमा नदी की सफाई का पहल किया है।
2: सफाई अभियान के बाद अब तक मनोरमा नदी को आप देखते हैं तो क्या लगता है?
3: सफाई के बाद मनोरमा नदी हमारी इतनी साफ लगती है कि ये तो एक जैसे लगता है कि चमत्कार टाइप का, लेकिन ये चमत्कार नहीं, ये हमारी 67 से 68 दिनों की मेहनत है जो कि हमने लगातार की है।
2: आपको अभी क्या लगता है इसमें और कुछ करने की जरूरत है?
3: जी, अभी हमारा काम तो जारी रहेगा जब तक कि हम लोग अपनी मनोरमा नदी का पूरा गांव का हिस्सा जब तक साफ नहीं कर लेते, तब तक तो हमारा काम जारी रहेगा, उसके आगे भी सोचेंगे, लेकिन हम चाहेंगे इसमें हमारी सरकार भी मदद करे, क्योंकि हम कुछ युवाओं के बस का ये पूरा नदी साफ करना नहीं है।
2: जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मन की बात में आपका नाम लिए तो आपको कैसा महसूस हुआ?
3: हम लोग उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के छोटे से गांव लजघटा में रहते हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने वैश्विक पटल पे हम लोगों की बात की, हमारे नाम का जिक्र किया, हमारी टीम का जिक्र किया, तो ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि हमारी सफाई का अभियान भी अब लोग देख रहे हैं।
2: इसमें प्रधानमंत्री जी द्वारा सराहना मिलने के बाद आप पर, आपकी टीम पर क्या प्रभाव पड़ा? ऐसा भी आपको लगता है कि ये जिम्मेदारियां और बढ़ गई?
3: हाँ, जिम्मेदारियां अब बढ़ती हुई दिख रही हैं, क्योंकि अब जो हम लोग सफाई का काम करते थे 2 से 3 घंटा, अब हम लोगों ने ट्राई किया कि उसको और बढ़ाने का, और हम लोग अब धीरे धीरे और नदी को और आगे बढ़ते हुए साफ कर रहे हैं, और लक्ष्य तो यही है कि जितना हो सके हम लोग नदी को साफ रखें, जिससे कि जानवरों को और आम आदमी को परेशानी ना हो।
2: आज देश में पर्यावरण संरक्षण और पुनर्जीवन को लेकर काम करने वाले युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं?
3: हम यही कहना चाहेंगे जो भी नेचर ने हमें दिया है वैसे ही हमको उसको संतुलित रखना है, कि चाहे वो नदी हो, चाहे तालाब हो, चाहे नहर हो, चाहे झरना हो, आप लोग उसको ऐसे सुरक्षित रखिए कि उसमें गंदगी ना फैले, ताकि आने वाली पीढ़ियों को हमारे तकलीफ ना हो।
2: आकाश जी, आपने जिस तरह से साबित किया कि बदलाव के लिए बड़े पद या बड़े संसाधनों की आवश्यकता नहीं बल्कि इरादों की जरूरत है, वह वास्तव में प्रेरणादायक है। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी यह कहानी अपने गांव, शहर, पर्यावरण के लिए कुछ सकारात्मक करने की प्रेरणा देगी।
3: अगर आपको कोई भी काम करना है तो उसके लिए आपको बड़ी मशीन या फिर कोई बड़े यंत्र की जरूरत नहीं है, आप अपने हाथों से पहले ट्राई कीजिए उसको साफ करने का। जब आप अपने हाथों से साफ करेंगे थोड़ा बहुत हिस्सा साफ होगा, फिर आपका मन करेगा कुछ और ट्राई किया जाए, धीरे धीरे आप लोग और आगे सफाई करें। जब हमने स्टार्ट किया था तो हमारे पास सिर्फ हाथ और पैर थे, हम लोगों ने उसी से स्टार्ट किया है। उसके बाद हम लोगों ने ट्राई किया उसमें नाव बनाने का, जिसमें हम लोग थोड़ा नाव बना भी गए थे लेकिन बीच में टूट गया। ऐसे ऐसे हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को ट्राई किया, तब जाके हमारी नदी इतनी साफ हो पाई, क्योंकि आप लोग जब किसी चीज को स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे उसकी आगे की रास्ताएं खुलते जाएंगे।
2: क्या ये आपको उपकरण से, जिसकी चर्चा मन की बात में मोदी जी ने किया, ये युवा जो है पर्यावरण या जल संरक्षण को लेकर के जागरूक है, इनके पास फावड़ा और जाल और ये ग्लव्स लेकर के ये नदी के सफाई अभियान को कर, क्या इस सफाई अभियान में आपको किसी ने कोई किसी तरह का सहयोग किया उसमें?
3: हम लोग जब वीडियो डालते गए उसके बाद लोगों ने इतना सपोर्ट किया, हमने उसमें अपना QR डाला जिसमें लोगों ने काफी सपोर्ट दिया, जिससे हम लोगों ने बूट्स मंगाए, ग्लव्स मंगाए और बहुत सारी चीजों को मंगाए, और बहुत सारे लोग हमारे एड्रेस पे कुछ सामान भी भेज देते हैं जिससे हमारी मदद हो जाती है, तो ऐसे ही हमारा काम चलता रहा।
2: आपने कहा कि जब से हमने इस अभियान को शुरू किया तब से हम लोगों ने यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक के माध्यम से बहुत सारे लोगों को जोड़ा, और इस अभियान को और सफल बनाने के लिए, नदी के सफाई के लिए हमने बहुत सारे लोगों को प्रेरित किया और हमसे बहुत सारे लोग जुड़े। कितने लोग इससे प्रेरित हुए?
3: जब हमने स्टार्ट किया था तो हमारे तो 0 फॉलोअर थे, लेकिन अभी के टाइम पे अगर बात की जाए तो हमारे इंस्टाग्राम पे 63,000 फॉलोअर हो चुके हैं, फेसबुक पे 50,000 से ज्यादा फॉलोअर हो चुके हैं, और यूट्यूब पे 10,000 से ज्यादा फॉलोअर हो चुके हैं। तो ऐसे लोगों का सपोर्ट हमारे साथ रहा, लोगों ने हमें काफी ज्यादा सपोर्ट किया, जिससे हम लोग आज इतना ज्यादा सफल हो पाए।
2: आप जिस तरह यह कार्य करके साबित किए बदलाव के लिए बड़े इरादों की जरूरत है, वह वास्तव में प्रेरणादायक है। आकाश जी, इसके बाद आपका क्या मिशन होगा?
3: अभी जैसे गर्मी का मौसम चल रहा है तो हम लोग नदी की सफाई का काम कर रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में बरसात का मौसम आने वाला है तो नदी का पानी काफी ज्यादा रहेगा, जिसके अंदर हल्के उसको सफाई नहीं की जा सकेगी, तो हम लोग कोशिश करेंगे नदी के किनारे का जितना भी फील्ड है उसको हम लोग वृक्षारोपण करेंगे, जितना हो सके पीपल, बरगद, पाकड़, जामुन, ये सब पेड़ बैठाएंगे।
2: इंस्टाग्राम और फेसबुक के तहत लोगों को जोड़ करके क्या लगता है आपको कि क्या इससे लोग आपसे जुड़ रहे हैं, क्या इससे आगे और भी आपको काम करने के लिए और भी लोगों का साथ मिलेगा?
3: निश्चित सी बात है, सब लोगों का सपोर्ट मिलेगा, और जब तक ये नदी सफाई नहीं होगी पूरी तब तक ये काम चलता रहेगा। उसके बाद यहाँ पर वृक्षारोपण भी होगा, हमारी नदी का अभी घाट भी बनना है, हमारी नदी पर अभी जहाँ बरगद का पेड़ है वहाँ चबूतरा भी बनना है, और जब तक ये बन नहीं जाएगा तब तक ये कार्य चलता रहेगा। जब हमने इसको पहले दिन से स्टार्ट किया था तब से लेकर अभी तक हमें काफी ज्यादा लोग जाने लगे हैं, जैसे कि अभी विधायक जी ने कल परसों में आकर हमारे साथ मिलकर नदी की सफाई किया, जिसके लिए हम बहुत ज्यादा खुश हैं, क्योंकि अब ये अभियान जो है हमारा बहुत आगे तक जाने वाला है और साफ सफाई का काम तो चलता रहेगा।
2: समाज में कुछ नया करने का आपने एक प्रयास किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे उत्तर प्रदेश में मनोरमा नदी की सफाई के लिए प्रयासरत आकाश गुप्ता के साथ विशेष बातचीत। संवाद का संचालन कर रहे थे अमित कुमार सिंह। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं, पता है podcast.airnews@gmail.com।
0: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। श्रोताओं, आपने सुना प्रकृति को संभालना, उसको संवारना और उनकी रक्षा करना, ये हम सभी का दायित्व है। और श्रोताओं, जरा सोचिए, अगर यही वादियां, ये खुला आसमान सिर्फ तस्वीरों तक या गानों तक ही सीमित रह जाए तो हमें कैसा लगेगा। श्रोताओं, पर्यावरण जो शब्द है वो दरअसल दो शब्दों से मिलकर बना है, परि और आवरण, यानी वो घेरा, वो सुरक्षा कवच जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए है। हम अक्सर सोचते हैं कि पर्यावरण को बचाना या तो किसी एनजीओ का काम है, किसी संस्था का काम है, प्रशासन का काम है, सरकार का काम है या कोई बड़ा एक्टिविस्ट, ये उनका काम है। लेकिन सच तो ये है श्रोताओं कि जब तक इस धरती पर हमारा वजूद है तब तक पर्यावरण ही हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी है। ये हमारे लिए क्यों जरूरी है, आइए इसे सीधे दिल से समझते हैं। हमारी हर सांस, जितनी दफा हम इंसान या जानवर या पक्षी या पेड़ पौधे सांस लेते हैं, हम इसके कर्जदार हैं। एक इंसान दिन भर में लगभग 11,000 लीटर हवा सांस के रूप में लेता है। हमें ऑक्सीजन देने वाले ये पेड़ कोई हमसे इसकी कीमत नहीं मांगते, पर हम बदले में इन्हें क्या दे रहे हैं, कुल्हाड़ी की मार। श्रोताओं, हमें समझना होगा कि अब वो समय आ गया है जब हमें प्रकृति को सिर्फ ड्राइंग के जरिए या फिर फ्रेम में चिपका करके अपने घरों में नहीं लगाना है, बल्कि असल जिंदगी में पर्यावरण में उतरकर पर्यावरण की सफाई करनी है।

फिल्म मिशन कश्मीर का ये गाना उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में आपने सुना। समीर के बोल हैं और धुन बनाई है सान नूरानी ने। श्रोताओं, हमारा शरीर खुद 60% पानी से बना है। आज हमारी नदियां, हमारे तालाब प्लास्टिक और रसायनों से दम तोड़ रहे हैं। हम पानी की बोतलें तो खरीद सकते हैं, लेकिन सूखी हुई नदियों में वापस से पानी नहीं खरीद सकते। और मिट्टी, जिस मिट्टी को हम अपने जूतों से साफ करते हैं, वही मिट्टी हमारा पेट भरती है। अगर हम इसमें प्लास्टिक और जहर घोलते रहेंगे तो हमारी थाली में आने वाला निवाला कभी अमृत नहीं बन पाएगा।

श्रोताओं, हमारे शहरों का तापमान आज लगभग 45 से 47 डिग्री को पार कर रहा है। सर्दियां छोटी होती जा रही हैं और बरसात का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। कभी सूखा पड़ता है तो कभी अचानक बाढ़ आ जाती है। वैज्ञानिक इसे क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, लेकिन अगर सीधे शब्दों में कहें तो ये प्रकृति का हमसे बदला नहीं है, ये प्रकृति की सिसकी है और उसकी चीख है। श्रोताओं, जब हम एक छोटा सा प्लास्टिक का कप सड़क पर फेंकते हैं तो हमें लगता है अरे मेरे एक कप फेंकने से क्या ही हो जाएगा। लेकिन श्रोताओं, जब एक देश और इस देश के करोड़ों लोग यही सोचने लगेंगे तो हमारे समंदर प्लास्टिक के द्वीप बन सकते हैं। हवा में एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना खराब हो चुका है कि छोटे छोटे बच्चों को बचपन से ही सांस की बीमारियां हो रही हैं। क्या हम अपने आने वाली पीढ़ी को विरासत में सिर्फ बैंक बैलेंस, गाड़ियां और एक डिब्बा बंद ऑक्सीजन सिलेंडर देकर जाना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। तो श्रोताओं, अभी मायूस होने की जरूरत नहीं है। कहते हैं कि सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते, और वक्त वक्त तो अब भी हमारे पास है, हमारे साथ है। बदलाव हमेशा किसी आंदोलन से नहीं बल्कि हमारे अपने घर से, हमारी अपनी आदतों से शुरू होता है। आज चलिए संकल्प लेते हैं कि किसी भी तरह से, आपकी वजह से या किसी की भी वजह से, सड़क पर हम कचरा नहीं फेंकेंगे, अपने घर अपने वातावरण को साफ रखेंगे। बेशक कचरा आप जमा करिए और उसे कचड़े वाले को, जब कचड़ा वाला गाड़ी या कचड़े वाली गाड़ियां आपके पास आती हैं तो आप उन्हें दे दीजिए, वो कायदे से उन कचड़ों को सही तरीके से डिस्पोज करेंगे। सड़क पर कचड़ा फेंक कर, प्लास्टिक की थैलियां इधर उधर फेंक कर हम पर्यावरण और जानवरों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो हमें नहीं करना है। अपने जीवन के हर खास मौके पर, चाहे आपका जन्मदिन हो, शादी की सालगिरह हो या बच्चों की कामयाबी, कम से कम एक पौधा जरूर लगाएं और उसे एक बच्चे की तरह पाल कर बड़ा करें। कचड़े का सही निपटारा करें। गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग डस्टबिन में डालें। ये छोटी छोटी कोशिशें श्रोताओं, हमारे पर्यावरण को हमारा अमूल्य धरोहर वापस बना सकती हैं। कार्यक्रम सुरंजना अब संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर, और आप हैं हमारी प्रातःकालीन सभा के प्रसारणों के साथ।

0: मन की बात प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
1: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
0: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें, मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
1: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
3: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
2: और अब तो आप घर दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
3: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
2: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
3: 8700001-4242।
4: FM के 102.4 MHz पर श्रोताओं आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र। प्रस्तुत करते हैं शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं शहनाई वादन राग तोड़ी में। कलाकार हैं अली अहमद हुसैन और साथी।

0: शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत श्रोताओं भी आप सुन रहे थे अली अहमद हुसैन और साथियों के साथ शहनाई वादन राग तोड़ी में कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। इस समय सुबह के 10 बजने को है। आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित समाचार हिंदी और अंग्रेजी में आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। उन्होंने कहा कि देश वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की मजबूत वृद्धि दर्ज की है। श्री मोदी ने दमन में कल लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
2: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल देते हुए कहा कि विश्व हरित भविष्य की ओर अग्रसर हो रहा है। उन्होंने कहा कि भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। रिजर्व बैंक ने विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य निवेश करने वाले विदेशी नागरिकों को अब कई तरह की निवेश सीमाओं से छूट दी गई है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में अब तक 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं। संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया ये अभियान अब जन आंदोलन का रूप ले चुका है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ वार्ता करेंगे। बैठक में व्यापार, निवेश, ऊर्जा और लोगों के बीच आपसी संपर्क सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। श्री खनाल ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। वे 3 दिन की भारत यात्रा पर हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि यह यात्रा भारत और नेपाल के बीच विशेष साझेदारी संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने में सहायक होगी। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज बिम्स्टेक दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने कहा कि बिम्स्टेक बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में साझा समृद्धि, संपर्क और सुगमता को बढ़ावा देने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत एकजुटता और आपसी सहयोग की भावना के साथ बिम्स्टेक सदस्य देशों के साथ सहयोग को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान के खोखले बयान और झूठे दावे इस मूलभूत वास्तविकता को नहीं बदल सकते।
3: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। ये पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
1: मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में कई दशकों बाद दुर्लभ जंगली बिल्ली कैराकल दिखाई दी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इसे वन्य जीव संरक्षण की दिशा में बड़ी उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट चीता के अंतर्गत कूनो राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव संरक्षण का एक सफल मॉडल बनकर उभरा है और कैराकल की वापसी इसी का प्रमाण है। खेलों में भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद ने ओस्लो में नॉर्वे शतरंज खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। प्रज्ञानानंद ने अंतिम दौर में जर्मनी के विंसेंट कीमर को हराया। ये खिताब जीतने वाले वे पहले भारतीय बन गए हैं। केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून के तेज होने के साथ ही मौसम विभाग ने राज्य के उत्तरी जिलों में 9 जून तक तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashwani, the news read by Tanvi Khurana. Prime Minister Narendra Modi has asserted that the foundation of the Indian economy remains exceptionally strong, with the nation recording a robust 7.7% growth in the fiscal year 2025-26 despite a global economic crisis. Addressing a large gathering after launching a series of developmental projects worth around 2,970 crore rupees in Daman last evening, the Prime Minister noted that India continues to be among the fastest growing economies in the world.
2: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
4: Earlier, Mr. Modi launched various infrastructure projects worth over 18,000 crore rupees in Surat. Addressing the gathering, the Prime Minister pointed out that out of India's total renewable energy capacity of 250 gigawatts, Gujarat alone contributes 50 gigawatts, accounting for a crucial fifth of the nation's green energy share. The Reserve Bank of India has simplified the rules governing investments by foreign portfolio investors or FPIs in government securities. The revised framework is aimed at making investments easier and reducing compliance requirements for foreign investors. Under the revised framework, FPIs investing through the general route will get greater flexibility as certain investment restrictions have been removed. The RBI has also merged the existing general and long-term investment categories into a single limit for government securities and state government securities. The revised directions have come into effect immediately. The Ministry of Agriculture and Farmers Welfare said that more than 9.42 lakh farmers across the country have joined the Khet Bachao Abhiyan as of June, transforming the campaign for balanced fertilizer use into a nationwide mass movement. The campaign launched by the Union Ministry of Agriculture and Farmers Welfare aims to promote balanced fertilizer application, conserve soil fertility, and encourage sustainable farming practices. Central Board of Secondary Education, CBSE, has extended the last date for submission of applications for verification of marks and re-evaluation till 7th of June. In a social media post, the board said students can now submit their applications till Sunday midnight. CBSE said that the decision has been taken in the interest of students to provide them with additional time to complete the application process. The earlier deadline for submission of applications was 6th of this month. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar will hold talks with Nepal Foreign Affairs Minister Shishir Khanal in New Delhi today. The Foreign Affairs Ministry of Nepal had said that during the meeting, both sides will discuss matters of mutual interest with a view of enhancing cooperation across key areas including trade, investment, connectivity, energy and people-to-people ties. Mr. Khanal is currently on a three-day visit to India. India has said that Pakistan is abusing its temporary membership of the UN Security Council, UNSC, to peddle false narratives about Jammu and Kashmir, and it should be mindful of its responsibilities. India's permanent representative, P. Harish, said that empty rhetoric and hollow claims by Pakistan would not change this fundamental reality that Jammu and Kashmir was, is, and will always remain an integral and inalienable part of India.

0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता। भारत ने जम्मू कश्मीर मामले में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग करने के लिए पाकिस्तान की कड़ी निंदा की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की के साथ प्रत्यक्ष वार्ता का प्रस्ताव ठुकराया। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद नॉर्वे शतरंज खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने और अंडर 18 एशिया कप हॉकी के फाइनल में आज भारत का सामना मेजबान जापान से। भारत ने कहा, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ वार्ता करेंगे। बैठक में व्यापार, निवेश, आवागमन, ऊर्जा और लोगों के बीच आपसी संपर्क सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। श्री शिशिर खनाल 3 दिन की भारत यात्रा पर हैं। उन्होंने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत नेपाल द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने पर चर्चा की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ये यात्रा भारत और नेपाल के विशेष साझेदारी संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने में सहायक होगी।
1: With Nepal, we have an expansive agenda.
2: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपनी इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
1: Partnership that we have with Nepal.
0: भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर मामले में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत ने चेतावनी दी है कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए। भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वत नेनी ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान के खोखले बयान और झूठे दावे इस मूलभूत वास्तविकता को नहीं बदल सकते।
3: I'd like to remind Pakistan that being a member of the...
4: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूँ कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। यह पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
3: Claims by Pakistan would not change this fundamental reality.
0: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि 2026 में अब तक 1076 भारतीय नागरिकों को अमेरिका से भारत वापस भेजा जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 2025 में अमेरिका से 3567 भारतीय नागरिक वापस भेजे गए थे। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच प्रवासन और आवागमन को लेकर बातचीत जारी है। श्री जायसवाल ने बताया कि अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों को वापस भेजने के संबंध में एक द्विपक्षीय व्यवस्था अपनाई गई है। भारत इन लोगों की राष्ट्रीयता की पुष्टि के लिए बांग्लादेश से सहयोग लेता रहा है और उसके बाद ही वापस भेजने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाती है। उन्होंने बताया कि इनमें से कई अनुरोध अभी बांग्लादेश के पास लंबित हैं। श्री जायसवाल ने कहा कि रूस और भारत के बीच लंबे समय से चले आ रहे रक्षा संबंध मजबूत हैं। भारत और अमरीका के बीच व्यापार समझौते पर श्री जायसवाल ने कहा कि बातचीत सकारात्मक और रचनात्मक रही।
1: The negotiating team which came from
2: बातचीत करने वाली टीम यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के कार्यालय से आई थी। इसमें अमेरिकी पक्ष के मुख्य वार्ताकार भी शामिल थे। ये बातचीत इस महीने की 1 और 4 तारीख के बीच हुई। ये चर्चा सकारात्मक और रचनात्मक रही है और दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया।
1: ट्रेड अग्रीमेंट फॉरवर्ड।
0: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की के साथ प्रत्यक्ष वार्ता का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। उन्होंने कहा कि फिलहाल ऐसी बैठक का कोई औचित्य नहीं है। श्री पुतिन ने ये टिप्पणी कल सेंट पीटर्सबर्ग में रूस के प्रमुख आर्थिक मंच के दौरान कही। एक दिन पहले श्री जेलेंस्की ने युद्ध समाप्त करने के लिए खुले पत्र के माध्यम से प्रत्यक्ष वार्ता का आह्वान किया था। श्री पुतिन ने कहा कि जेलेंस्की का पत्र उन्हें गंभीर नहीं लगा। इसके जवाब में जेलेंस्की ने कहा कि पुतिन द्वारा उनके प्रस्ताव को अस्वीकार करने से पता चलता है कि रूस की युद्ध समाप्त करने की इच्छा नहीं है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत में पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 के संयुक्त उत्पादन का प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच के दौरान उन्होंने कहा कि रूस SU-57 कार्यक्रम में भारत की भागीदारी का इच्छुक है। श्री पुतिन ने एकीकृत वायु रक्षा प्रणालियों और अन्य रक्षा उपकरणों के क्षेत्र में भी भारत के साथ सहयोग की इच्छा व्यक्त की है। भारत वर्तमान में स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली सुदर्शन चक्र विकसित कर रहा है। इसमें रूस से प्राप्त S-400 मिसाइल प्रणाली महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इस बीच श्री पुतिन ने सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि वैश्विक सॉफ्टवेयर बाजार में भारत की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी है। अमरीका की सेना ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरान के तटीय निगरानी रडार ठिकानों पर हमला किया है। अमरीका के अनुसार क्षेत्रीय समुद्री यातायात को निशाना बनाने वाले ईरान के 4 ड्रोन मार गिराए जाने के बाद ये कार्रवाई की गई। अमरीकी सेना ने गोरुक और केश्म द्वीप स्थित रडार केंद्रों को निशाना बनाया। इससे अमरीका और ईरान के बीच रुकु ही शांति वार्ताओं पर और दबाव बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
5: ये हमला ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिका और ईरान के बीच कूटनीतिक बातचीत रुकी हुई है। ईरान विदेशों में अपनी अरबों डॉलर की परिसंपत्तियों पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग कर रहा है। ईरान के अधिकारी किसी भी अंतरिम समझौते की प्रगति को इन प्रतिबंधों से जोड़ रहे हैं। इस बीच लेबनान में हिजबुल्लाह ने अमेरिका की मध्यस्थता वाले इसराइल और लेबनान सरकार द्वारा स्वीकार किए युद्ध विराम प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। हिजबुल्लाह के अनुसार किसी भी समझौते में दक्षिणी लेबनान से इसराइल की सेना की वापसी की बात शामिल होनी चाहिए। हिजबुल्ला ने ब्यूफोर्ट किले के पास इजराइल की सेना पर हमले किए हैं। इस किले को इजराइल की सेना ने हालिया हमले के बाद अपने अधिकार में ले लिया था। ईरान ने हिजबुल्ला के लिए अपने समर्थन की बात दोहराई है। समाचार कक्ष से विनोद की रिपोर्ट के साथ मैं राजेश कुमार मीणा।
0: अमेरिका ने ब्रिटेन, डेनमार्क और कुवैत को लगभग $3 अरब के संभावित सैन्य उपकरणों की बिक्री को मंजूरी दे दी है। अमरीकी विदेश विभाग ने ये जानकारी दी है। सबसे बड़ा रक्षा सौदा कुवैत के साथ किया गया है। इसके अंतर्गत कुवैत को लगभग $1.98 अरब की लागत से ड्रोन रोधी प्रणालियां और संबंधित उपकरण खरीदने की अनुमति दी गई है। वहीं डेनमार्क को लगभग $84.20 करोड़ की लागत से 200 लंबी दूरी की हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलें और संबंधित उपकरण खरीदने की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा ब्रिटेन को लगभग $16 करोड़ की लागत से बड़े विमानों की सुरक्षा के लिए इंफ्रारेड प्रतिरोधक प्रणाली और संबंधित उपकरण खरीदने की अनुमति दी गई है। भारतीय शांतिदूत मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार से सम्मानित किया है। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में भारतीय बटालियन के साथ सेवारत मेजर बराक को संयुक्त राष्ट्र शांति दूतों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर सम्मानित किया गया। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद ने ओस्लो में नॉर्वे शतरंज खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। प्रज्ञानानंद ने अंतिम दौर में जर्मनी की विसेंट कीमर को हराया। ये खिताब जीतने वाले वो पहले भारतीय बन गए हैं। प्रज्ञानानंद ने 18 अंक के साथ खिताब अपने नाम किया। भारत आज पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में मेजबान जापान से खेलेगा। जापान के काका मिगाहारा में ये मुकाबला भारतीय समय के अनुसार दोपहर बाद 3:30 बजे से शुरू होगा। इससे पहले कल भारत ने सेमीफाइनल में पाकिस्तान को 5-3 से और जापान ने मलेशिया को 8-3 से हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल

के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता। भारत ने जम्मू कश्मीर मामले में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग करने के लिए पाकिस्तान की कड़ी निंदा की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की के साथ प्रत्यक्ष वार्ता का प्रस्ताव ठुकराया। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद नॉर्वे शतरंज खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने। और अंडर 18 एशिया कप हॉकी के फाइनल में आज भारत का सामना मेजबान जापान से। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से विश्व दर्पण समाचार श्रोताओं भी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 10:20 हो रहे हैं। फिल्मी गीतों का सफर हम शुरू करेंगे इस छोटे से अंतराल के बाद।

0: मन की बात प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
1: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
0: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें, मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
1: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।
2: अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्मी गीतों के आज के सफर में श्रोताओं आपके साथ है आपके रेडियो साथी दीपिका। नमस्कार।

फिल्म पंगा का ये गाना श्रोताओं अभी आपने सुना सनी हिंदुस्तानी और शंकर महादेवन की आवाज़ों में। गीत को लिखा है जावेद अख्तर साहब ने और धुन बनाई है शंकर एहसान और लोय ने। आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से श्रोताओं आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत।

फिल्म गुड न्यूज़ का ये गाना श्रोताओं भी आपने सुना बी प्राक और फरहद भिवंडी वाला की आवाज़ों में। इस बोल को लिखा है रश्मि विराग ने और धुन बनाई है तनिष्क बागची ने। आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत।

0: पुलिस?
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों? लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1 लाख दो, बच जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

अमित त्रिवेदी की आवाज, जयदीप साहनी के बोल और संगीत बद के अमित त्रिवेदी ने। फिल्म था अंधाधुन। आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से श्रोता आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत, और अगला गाना लिया है हमने फिल्म बाजार से।

फिल्म बाजार का ये गाना श्रोताओं भी आपने सुना, राहत फतेह अली खान और प्रतिभा सिंह बघेल की आवाजों में। जमील अहमद के बोल हैं और संगीत बद किया है सुहेल सेन ने। अगला गाना हमने लिया है फिल्म डंकी से।

फिल्म डंकी का ये गाना श्रोताओं भी आपने सुना अरिजीत सिंह की आवाज में। स्वनंद किरकिरे और आईपी सिंह के लिखे हुए इस गीत को संगीतबद्ध किया है प्रीतम ने। और अब अगला गाना हमने लिया है फिल्म रेड 2 से। आवाज है जुबीन नौटियाल की, मनोज मुंतशिर का लिखा हुआ ये गीत है और संगीतबद्ध किया है रोचक कोहली ने।

फिल्म एनिमल का ये गाना श्रोताओं अभी आपने सुना अरिजीत सिंह की आवाज में। सिद्धार्थ और गरिमा ने इस गीत को कलमबद्ध किया है और धुन बनाई है श्रेयस पुराणिक ने। और श्रोताओं, इसी गीत के साथ हमारा आज का ये कार्यक्रम फिल्म संगीत अब संपन्न होता है। दीजिए अपनी रेडियो दोस्त दीपिका को अनुमति। नमस्कार।

0: सुनो ना,
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे?
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
0: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।

जलवायु और लिंग, यह यूनेस्को का संदेश है। जलवायु परिवर्तन का असर सब पर एक जैसा नहीं होता। गांव की महिलाएं जो खेती में काम करती हैं, इससे ज्यादा प्रभावित होती हैं। अक्सर उनकी बात सुनी ही नहीं जाती और मुश्किलें बढ़ जाती हैं। आपदा के वक्त जैसे बाढ़ या सूखे में कैंप्स या आश्रय में उनके साथ यौन हिंसा का खतरा भी होता है। लेकिन इन्हीं महिलाओं के पास एक ऐसा ज्ञान भी होता है जो जलवायु संकट से लड़ने में मदद कर सकता है। बस जरूरत है उन्हें योजनाओं और फैसलों में शामिल करने की। क्या आप जानते हैं, दुनिया भर में हर 3 में से लगभग 1 महिला के अपने जीवन काल में शारीरिक या यौन हिंसा का अनुभव किया है।

0: यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है। दिन के 11 बजने को है। समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से बस थोड़ी ही देर में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। उन्होंने कहा कि देश ने वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की मजबूत वृद्धि दर्ज की है। श्री मोदी ने दमण में कल लगभग 2,970 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का शुभारम्भ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा में कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
2: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
1: प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल देते हुए कहा कि विश्व हरित भविष्य की ओर अग्रसर हो रहा है। रिजर्व बैंक ने विदेशी निवेशकों से सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह की निवेश सीमाओं से छूट दी गई है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ वार्ता करेंगे। बैठक में व्यापार, निवेश, ऊर्जा और लोगों के बीच आपसी संपर्क सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। श्री खनाल ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। वे 3 दिन की भारत यात्रा पर हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि यात्रा भारत और नेपाल के विशेष साझेदारी संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने में सहायक होगी। भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार तथा निवेश मंच का आयोजन आज मध्य प्रदेश के इंदौर में किया जा रहा है। इसमें 15 लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन देशों के राजदूत और राजनयिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। उद्योग जगत के अग्रणी और बड़े निवेशक भी आयोजन का हिस्सा होंगे। इसका मुख्य उद्देश्य भारत और इन देशों के बीच व्यापार तथा निवेश के नए अवसर खोलना है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम के दौरान विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के लिए सत्र आयोजित होंगे। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए।
3: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। यह पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
1: आंध्र प्रदेश में जनसेना पार्टी के अध्यक्ष पवन कल्याण ने आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए लिंगमनेनी रमेश को पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान में ये घोषणा की गई। लिंगमनेनी रमेश आज अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में कई दशकों बाद दुर्लभ जंगली बिल्ली कैराकल दिखाई रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इसे वन्यजीव संरक्षण की दिशा में बड़ी उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट चीता के अंतर्गत कूनो राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव संरक्षण का एक सफल मॉडल बनकर उभरा है और कैराकल की वापसी इसी का प्रमाण है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में अब तक 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं। संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया यह अभियान अब जन आंदोलन का रूप ले रहा है। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने ओस्लो में नॉर्वे शतरंज खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। ये खिताब जीतने वाले वो पहले भारतीय बन गए हैं। भारत आज पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में मेजबान जापान के साथ खेलेगा। ये मुकाबला जापान के काकामिगारा में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज केरलम और माहे में तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। उत्तर पूर्वी भारत, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में कुछ हिस्सों में भी आज मूसलाधार बारिश की आशंका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: लिसनर्स, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। 11:05 हो रहे हैं श्रोताओं, समय है कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर का।

Tapeblood. नमस्कार, जमशेदपुर के आज के इस अंक में आप सभी श्रोताओं का बेहद स्वागत और आपकी रेडियो दोस्त रिंकी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, जिंदगी में हमारा मन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण भाग निभाता है। मन और शरीर एक दूसरे से बिल्कुल ही अविभाज्य हैं और आशावादी सोच केवल सुखद और अनुभव नहीं बल्कि स्वास्थ्य का एक सशक्त आधार भी है। वैज्ञानिक शोधों के अनुसार भी दोस्तों ये बातें कही जाती हैं कि जिन लोगों में पॉजिटिव थिंकिंग आशावादी सोच अधिक होता है उनमें रक्तचाप नियंत्रित रहता है, हृदय रोग का जोखिम घटता है और वे स्वस्थ जीवन शैली अपनाने में अधिक सक्षम होते हैं। साथ ही तनाव हार्मोन को कम करने में भी उनका नजरिया सहायक सिद्ध होता है। उपनिषदों ने भी ये माना कि मनुष्य के बंधन और मुक्ति दोनों स्रोत मन से ही हैं। भय, निराशा और चिंता ये मन को धीरे धीरे कमजोर करते हैं और साथ ही शरीर को भी बीमार करते हैं, क्योंकि शरीर मन का अनुसरण करता है और इसके विपरीत आशा और संतुलन से परिपूर्ण जो मन होता है ना, वो शरीर के लिए एक अदृश्य ढाल की तरह काम करता है। शांत और संतुलित जो चित्त होता है वो समस्त दुखों के विसर्जन की शक्ति में निहित होता है। आशावादी जो सोच होती है दोस्तों, वो कोई जन्मजात नहीं होती। इसका अभ्यास धीरे धीरे अपनी जिंदगी में हमें करना चाहिए, क्योंकि सोच हमारी है। हमें उसे कैसे और किस तरीके से पॉजिटिव रखना है ये सिर्फ हम ही कोशिश कर सकते हैं। और इसी सोच के साथ, इसी बात के साथ करते हैं आज के नमस्कार जमशेदपुर कार्यक्रम का शुरुआत इस गीत के साथ।

उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में। दोस्तों अभी आप सुन रहे थे मन फिल्म का ये गीत। श्रोताओं, आज है 6 जून। अगर आज के दिन के इतिहास के पन्नों को जरा हम पलटते हैं तो कुछ ऐसी तारीखें दिल की धड़कन बनकर गूंजती हैं, जो हमारे रोम रोम में एक अजीब सा जुनून पैदा करती हैं। आज ही के दिन भारतीय इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया, आज से ठीक कई सदियों पहले सन 1674 में रायगढ़ के किले में जय भवानी और जय शिवाजी के नारों के से आसमान गूंज उठा। ये वही ऐतिहासिक दिन है जब छत्रपति शिवाजी महाराज का विधिवत राज्याभिषेक हुआ था और वे मराठा साम्राज्य के पहले छत्रपति बने थे। ये सोचने वाली बात है कि राज्याभिषेक तो राजाओं का होता रहा है, इसमें अनोखा क्या है? अनोखा ये है कि ये सिर्फ एक राजा का गद्दी पर बैठना नहीं था, बल्कि सदियों की गुलामी के बाद एक आम इंसान के मन में स्वराज यानी खुद के राजा की उम्मीद का जगना था। शिवाजी महाराज ने सिखाया कि शासन वही अच्छा जिसमें जनता सुखी हो, न कि राजा का खजाना भरा हो।

आज के समय में भी जब लोग और हमारे युवा बड़ी बड़ी मैनेजमेंट गुरुओं की मोटी मोटी किताबें पढ़ा करते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं आज भी शिवाजी महाराज के स्वराज मैनेजमेंट को ज़रूर एक बार पढ़ना चाहिए। उन्होंने बिना किसी भेदभाव के हर वर्ग के व्यक्ति को

सेना में जगह दी। उनका नौसेना बनाना, जंगलों और किलों का सही इस्तेमाल करना और हमारे और आज के समय में भी हमारे सुरक्षा बलों के लिए एक मिसाल है। और इस बात का ध्यान हमें जरूर रखना चाहिए कि शिवाजी महाराज का चरित्र हमें स्त्रियों का सम्मान करना, अपनी संस्कृति पर गर्व करना सिखाता है। आज के समाज को उनको इसी स्वाभिमान और कूटनीति की सख्त जरूरत है, ताकि हम अपनी जड़ों को कभी भूले नहीं।

शंकर महादेवन की आवाज में अभी आप सुन रहे थे मणिकर्णिका फिल्म का ये गीत। श्रोताओं, इतिहास का चक्का जब थोड़ा आगे घूमता है तो वह हमेशा सिर्फ खुशियों के गीत गाता रहे ये जरूरी नहीं, कुछ

देखें, हमें रुककर सोचने समझने और अपनों को याद कर आंसू पोछने के लिए भी मजबूर करती हैं। इसी 6 जून की तारीख का एक और सिरा सिख इतिहास के बेहद संवेदनशील और दर्दनाक अध्याय से भी जुड़ा हुआ है। सन 1984 में अमृतसर के पवित्र स्वर्ण मंदिर परिसर में हुआ ऑपरेशन ब्लू स्टार आज ही के दिन 6 जून को समाप्त हुआ था। सिख समुदाय इस दिन को घल्लूघारा दिवस या बलिदान दिवस के रूप में भी याद करता है। घल्लूघारा का अर्थ होता है सामूहिक संहार या एक बड़ा संकट। आज के इस दिन को याद करना का मकसद ये कतई नहीं कि पुराने घाव को हरा करें, बल्कि ये है कि उस दर्द से सीख लेकर समाज में शांति भाईचारे को हम मजबूत करें। इतिहास में जो भी कुछ हुआ उसने देश और समाज पर कहीं ना कहीं एक गहरा असर जरूर छोड़ा है।

श्रोताओं, आज के समाज में इस दिन को याद कर समझने की एक बहुत बड़ी ज़रूरत ये है कि हम शांति की कीमत को समझें। ये दिन हमें याद दिलाता है कि हिंसा कभी किसी समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सकती। ध्यान देने वाली बात ये भी है कि विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य कैसे बनाया जाए। समाज के ताने बाने को टूटने से बचाना कहीं ना कहीं इंसानियत के हाथ में भी है। आज हमें एक दूसरे की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करने और समाज में सद्भाव बनाए रखने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है।

श्रोताओं, इतिहास के इन गहरे और गंभीर पन्नों से निकलकर अब जरा बात वर्तमान की ऐसी समस्या की जिससे कोई नहीं बच पाया। हम बात कर रहे हैं उन छोटे छोटे बिन बुलाए मेहमानों की जो हमारे घरों में बिना किराया दिए रहते हैं, जैसे मच्छर, मक्खियाँ, चूहे और दीमक। आज 6 जून है और आज विश्व कीट दिवस यानी वर्ल्ड पेस्ट डे भी मनाया जाता है, और इनसे अपनी सेहत और फसलों को बचाने की जागरूकता फैलाने के लिए ये दिन मनाया जाता है। कीट नियंत्रण यानी पेस्ट कंट्रोल का हमारे समाज पर सीधा असर पड़ता है। अगर ये छोटे जीव हद से ज़्यादा बढ़ जाएं तो प्लेग, मलेरिया, डेंगू और ना जाने कौन कौन सी बीमारियां फैला सकते हैं। साथ ही साथ ये किसानों की कड़ी मेहनत से उगाई गई फसलों को भी चट कर जाते हैं। सोचने वाली बात यह है कि कीटों को खत्म करने के चक्कर में हम अंधाधुंध केमिकल और कीटनाशकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह हमारे पर्यावरण और खुद हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत खतरनाक है। आज की ज़रूरत इस बात से है कि हम जैविक और सुरक्षित तरीकों को अपनाएं, अपने आसपास सफाई रखें ताकि ये पनप ही ना पाएं।

जसलीन और अमित त्रिवेदी की आवाज़ में श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे डियर जिंदगी फिल्म का ये गीत। नमस्कार जमशेदपुर, कार्यक्रम आगे भी जारी रहेगा बस इस छोटे से अंतराल के बाद।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी। और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: मन की बात, प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
2: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी, संसद मार्ग, नई दिल्ली, अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा, मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
1: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें। मन की बात आकाशवाणी, संसद मार्ग, नई दिल्ली, 110001।
2: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर, अपनी रेडियो दोस्त रिंकी के साथ आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से FM के 102.4 MHz पर। श्रोताओं, अब बात भारतीय फिल्म जगत की। भारतीय सिनेमा और देश के इतिहास का एक ऐसा पन्ना जो न केवल कलाकार के जन्म का गवाह है, बल्कि एक इंसान की ऐसी शख्सियत जिसे हम दत्त साहब के नाम से जानते हैं। हम बात कर रहे हैं सुनील दत्त की। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने पर्दे पर जितने दिल जीते, उससे कहीं ज्यादा मोहब्बतें उन्होंने असल जिंदगी में इंसानों और इंसानियतों से बटोरी हैं। आज उनकी जन्मदिन पर हम उनके बारे में कुछ बातचीत करते हैं। श्रोताओं, उनका जन्म 6 जून 1929 को झेलम में हुआ था। बलराज दत्त से सुनील दत्त बनने का ये सफर इतना आसान नहीं था। विभाजन का दर्द सीने में छुपाए एक वक्त उन्होंने मुंबई के बस रूट तय करने वाली नौकरी भी की, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उनकी पहली फिल्म मदर इंडिया बड़े पर्दे पर कदम रखा और इतिहास रच दिया, और इसी फिल्म के सेट पर एक छोटे से हादसे ने उन्हें उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा नरगिस दी। उन्होंने न केवल नरगिस जी की जान बचाई, बल्कि जीवन भर उन्हें अपना हमसफर भी बनाया। सुनील दत्त सिर्फ कैमरे के सामने नायक नहीं थे। जब देश पर मुश्किल आई या जब समाज को उनकी जरूरत पड़ी, वे हमेशा सबसे आगे खड़े रहे। चाहे वह कैंसर पीड़ितों के लिए नरगिस दत्त फाउंडेशन की शुरुआत करना हो या देश में शांति के लिए मुंबई के अमृतसर तक पैदल यात्रा करना,

सुनील दत्त राजनीति में आकर भी हमेशा अमन और भाईचारे की बात की, खेल मंत्री के रूप में युवाओं को प्रेरित किया और हर रूप में हर तरह से कोशिश की कि वो इंसानियत के काम आ सके। और ये शख्सियत 2005 में हमसे जुदा हो गया, लेकिन उनकी यादें, उनकी फिल्में और उनके नेक काम आज भी हमारे बीच जिंदा हैं। आज उनके जन्मदिन पर हम उन्हें नम आंखों से लेकिन मुस्कुराते हुए याद करते हैं।

लता मंगेशकर तलत महमूद की आवाज में अभी आप सुन रहे थे छाया फिल्म का ये गीत। दोस्तों, इन गर्मियों में भी खुद को हाइड्रेट रखना बहुत जरूरी है और एक्सरसाइज भी करना जरूरी है।

जरूरी है। लोग कई बार गर्मियों में एक्सरसाइज के दौरान पसीना आने को वेट लॉस समझ लेते हैं, लेकिन ये गलती नहीं करनी है। कई बार पानी की कमी या ज़्यादा पसीना आने से डिहाइड्रेशन हो सकता है। ऐसे में ये ज़रूरी है कि डिहाइड्रेशन में कमज़ोरी, चक्कर, थकान जैसी समस्याओं को नज़रअंदाज ना करें, सही मात्रा में पानी पिए। ज़्यादा पसीना आना ये ज़रूरी नहीं कि फैट लॉस हो रहा है। ऐसे में इलेक्ट्रोलाइट्स भी कई बार शरीर से निकलते हैं, तो ज़रूरी से पानी युक्त जो सब्जियां होती हैं या जो सैलड्स होते हैं उन्हें अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करें। वॉक, जॉगिंग जैसे हल्की एक्सरसाइज करें और साथ ही साथ गर्मियों में वाटर एक्सरसाइज जैसे स्विमिंग बहुत फ़ायदा करती है। इन गर्मियों में खुद का ख्याल ज़रूर रखें, तभी हमारा शरीर भी हमसे कहेगा कि सब बढ़िया है।

सुखविंदर सिंह की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे सुई धागा फिल्म का ये गीत। और श्रोताओं, इसी गीत के साथ आज का हमारा नमस्कार जमशेदपुर का ये सफ़र यहीं तक। दीजिए अपने रेडियो दोस्त रिंकी को इजाज़त।

लिसनर्स, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। 12 बजने को हैं श्रोताओं, अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। श्री मोदी ने दमण में कल लगभग 2,970 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा

0: हमें कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
1: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
0: प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल देते हुए कहा कि विश्व हरित भविष्य की ओर अग्रसर हो रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ वार्ता करेंगे। बैठक में व्यापार, निवेश, ऊर्जा और लोगों के बीच आपसी संपर्क सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। श्री खनाल ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। वे 3 दिन की भारत यात्रा पर हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि यात्रा भारत और नेपाल के विशेष साझेदारी संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने में सहायक होगी। भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार तथा निवेश मंच का आयोजन आज मध्य प्रदेश के इंदौर में किया जा रहा है। इसमें 15 लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन देशों के राजदूत और राजनयिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। उद्योग जगत के अग्रणी और बड़े निवेशक भी आयोजन में हिस्सा लेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य भारत और इन देशों के बीच व्यापार तथा निवेश के नए अवसर खोजना है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम के दौरान विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के लिए सत्र आयोजित होंगे। आंध्र प्रदेश में जनसेना पार्टी के अध्यक्ष पवन कल्याण ने आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए लिंगमनेनी रमेश को पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी के आधिकारिक बयान में यह घोषणा की गई। लिंगमनेनी रमेश आज अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए।
2: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। यह पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
0: भारत अमेरिका सेना ने अधिकारियों की वार्ता का 29वां चरण हवाई में आयोजित किया गया। इसकी सह अध्यक्षता सेना प्रमुख रणनीति लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई और अमेरिकी सेना के उप कमान जनरल लेफ्टिनेंट जनरल जोएल वेवन ने की। चर्चा में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को मजबूत करने, अंतर संचालनीयता बढ़ाने, पेशेवर आदान प्रदान का विस्तार करने और साझा सुरक्षा हितों के समर्थन में सैन्य सहयोग को सुदृढ़ करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। दोनों देशों ने सहभागिता के बढ़ते दायरे की सराहना की और भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। मॉरिशस ने पिछले 21 दिनों में कांगो, युगांडा या दक्षिण सूडान की यात्रा करने वाले या वहां से गुजरने वाले विदेशी नागरिकों के प्रवेश पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है। ये कदम इबोला वायरस के प्रकोप को देखते हुए उठाया गया है। स्थानीय नागरिकों और व्यवसाय करने वाले या छात्र परमिट धारक विदेशी नागरिकों को देश में प्रवेश की अनुमति होगी। हालांकि यदि उन्होंने पिछले 3 हफ्तों में इन देशों में से किसी का भी दौरा किया है तो उन्हें 21 दिन के लिए क्वारंटीन में रहना होगा। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच न्यू चंडीगढ़ के मुल्तानपुर में खेला जा रहा है। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। भोजनावकाश तक भारत ने 1 विकेट के नुकसान पर 96 रन बना लिए हैं। भारत की ओर से राजस्थान के ऑलराउंडर मानव सुथार टेस्ट क्रिकेट में पहली बार खेल रहे हैं। भारत आज पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में मेजबान जापान से खेलेगा। ये मुकाबला जापान के काकामिगाहारा में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

श्रोताओं, अभी आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र FM के 102.4 MHz पर। 12:05 हुए हैं श्रोताओं। अगला कार्यक्रम आप सुनेंगे भावगीत।

भावगीत के आज के संगीतमय सफर में आप सभी श्रोताओं का बेहद स्वागत और आपकी रेडियो दोस्त रिंकी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, जिंदगी भी कितनी अजीब है। हम सब किसी न किसी सफर पर हैं। कोई मंजिल की तलाश में भाग रहा है तो कोई रास्ते के नजारों में खोया हुआ है। पर सच तो ये है कि जिंदगी कोई मंजिल नहीं बल्कि खुद में एक खूबसूरत सफर है। इस सफर में कभी रास्ते सीधे मिलते हैं तो कभी मोड़ इतने तीखे होते हैं कि संभलने का मौका नहीं मिलता। और इसी सफर के नाम एक कुछ ऐसी बातें जो हम सब ने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी बहुत करीब से महसूस की है। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में तुम भी, निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें बदलती कहां हैं, तुम्हारी शख्सियत खुद को बदल सके तो चलो।

दोस्तों, ज़िंदगी के इस रास्ते पर चलते चलते जब हम थकने लगते हैं तो कोई ना कोई हमसफ़र, कोई दोस्त, कोई अपना हाथ थाम ले और वहीं से शुरू होता है वादों, यादों और जज्बातों का एक नया सिलसिला जिसे हम रिश्ता कहते हैं। वही रिश्ता जो धूप का छांव से हो, रंग का पानी से, बादल का बूंदों से और खुशबू का फूलों से। एक ऐसा रिश्ता जो कई बार हमें हर जगह पर अपनों की याद हमेशा दिलाता रहता है, क्योंकि वो रिश्ता हमारे दिल से जुड़ा होता है।

दोस्तों, बात हो रही है सफ़र की, और सफ़र तब तक मुकम्मल नहीं होता जब तक कि हमारे दिल के कोई पास, कोई ख़ास नहीं होता। रिश्ते शब्द सुनने सुनना तो इतना छोटा सा लगता है, लेकिन उसका दायरा उतना ही बड़ा होता है। कोई रिश्ता खून का होता है तो कोई दिल का, और दिल के रिश्ते को बड़ी खूबसूरत शक्ल होती है प्यार की। प्यार जो बिना कुछ कहे सब कुछ समझ लेता है, प्यार जो किसी के चेहरे पर आई एक छोटी सी मुस्कान के लिए दुनिया से लड़ जाता है। लेकिन आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर उन लोगों को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, और जो हमसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, हम कहना भूल जाते हैं कि वो हमारे लिए कितनी ज़रूरी हैं। क्योंकि रिश्तों की ये दुनिया है निराली, सबके दिलों में बसी है एक कहानी। लफ्जों से बयान ना हो जो मोहब्बत, वो तो आंखों से है बहता हुआ पानी।

दोस्तों, प्यार की वादियों में चलते चलते कहीं कोई ऐसा मोड़ ज़रूर आता है जब दिल के किसी कोने से एक आवाज़ आती है कि जहां प्यार होता है तकरार भी अक्सर वहीं होती है, क्योंकि तकरार, बहस, रूठना और मनाना, ये सब भी प्यार का ही एक हिस्सा है। जैसे बिना नमक के खाने में स्वाद नहीं आता, वैसे ही बिना थोड़ी नोक झोंक के रिश्तों में वो अपनापन नहीं चमकता। लेकिन हाँ, तकरार तब तक ही खूबसूरत है जब तक कि उसमें अहम यानी ईगो ना हो। कभी कभी एक छोटी सी बहस इतनी बड़ी दीवार बन जाती है कि सालों के रिश्ते एक पल में ढह जाते हैं। हम जितना भी चाहते हैं बहस में और हार जाते हैं उस इंसान को। वो रोए तो बहुत, पर मुझसे मुंह मोड़ कर ना रोए। कोई मजबूरी होगी जो दिल तोड़ कर रोए। मेरे सामने कर दिए तस्वीरों के टुकड़े, पता चला मेरे पीछे कई बार उन्हें जोड़ कर रोए। ये है जिंदगी में तकरार की वो खूबसूरत दास्तां, जो अगर छोटी ही रहे तो बहुत अच्छी। जहां इसमें अहम की बात आई तो ये रिश्ते ढहते समय नहीं लगते।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ आज का हमारा भावगीत का ये सफर यहीं तक। आज के कार्यक्रम में हमने जिन फिल्मों को शामिल किया उनके नाम हैं बागी 2, फटा पोस्टर, निकला हीरो, अंदाज, नमस्ते लंदन। इनमें आवाजें थी कृष्णा बेरुआ, कुमार सानू, अलका याग्निक, अरिजीत सिंह, जुबिन नौटियाल की। श्रोताओं, आज के इस सफर से दीजिए अपनी रेडियो दोस्त रिंकी को इजाजत। लिसनर्स, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। 12:30 हुए हैं श्रोताओं, अब आप सुनेंगे महिलाओं के लिए कार्यक्रम अंगना।

बहनों, यूं तो सुबह का होना हम सबों को बड़ा भाता है। सूरज की उगती किरणें फिर से एक बार एक नए दिन से हमारी मुलाकात कराती है, और ये सिर्फ एक नए दिन से हमारी मुलाकात नहीं होती बल्कि प्रकृति की खूबसूरती से भी हम साक्षात्कार करते हैं। बालकनी के मुंडेर पर कबूतरों के झुंड का आना, चिड़ियों का चहचहाना, गमले में लगे फूलों को मुस्कुराते देखना और ठंडी हवाओं का झोंका, ये सब कुछ मिलाकर हमें बताता है कि प्रकृति कितनी सुंदर है। बिल्कुल माँ के गोद की तरह, जहाँ हम ठंडी छांव महसूस करते हैं। बहनों, ये सारे दृश्य हमें याद दिलाते हैं कि ये सृष्टि प्रकृति से ही खूबसूरत है और इसका सुरक्षित रहना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम चाहते हैं कि अपने आने वाले भविष्य को और अपने आने वाली पीढ़ी के जीवन को सुंदर बनाएं, तो सबसे पहला काम जो करना होगा वो यही कि हम इस प्रकृति की सुंदरता बचाकर रखें। इसी धरती पर मनुष्य का जीवन निर्भर करता है। चिंता इस बात की है कि यह जो संतुलन है प्रकृति और हमारे बीच, वह दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा है। बहनों, बीते कल ही हमने मनाया 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, और ये पूरे विश्व को संदेश देता है कि अब समय आ गया है जब हम अपने और प्रकृति के बीच खोए हुए बैलेंस को फिर से मजबूत करें। बहनों, अध्यात्म की अगर बात करें तो मनुष्य की आत्मा और प्रकृति के 5 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, और ये सब आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। जब हम सबों की सोच शुद्ध और आत्म केंद्रित होती है तब प्रकृति भी संतुलित रहती है, पर जैसे जैसे हमारी चेतना में अहंकार, लालच और भय का समावेश हुआ, हम में और प्रकृति के बीच असंतुलन भी पैदा होने लगा। सच बात तो यह है बहनों कि हमारे और प्रकृति के बीच संतुलन तभी संभव है जब हम अपने आत्मा के अंदर शांति, सुख, प्रेम, पवित्रता, शक्ति और सहिष्णुता के भाव को जागृत करें। अपने दैनिक जीवन में ऐसी आदतों को कभी भी बढ़ावा ना दें जिससे प्रकृति पर बुरा असर पड़ता है। पेड़ लगाएं अपने जन्मदिन पर या किसी खास मौके पर। अपने आसपास के परिसर को स्वच्छ रखें, जल का सही इस्तेमाल करें। वृक्ष लगाने से ही जीवन के मूल्य को भी हम सींच सकते हैं।

0: बहनों पर्यावरण पर ही आइए सुनते हैं एक वार्ता। विषय है पर्यावरण से है सृष्टि की सुरक्षा और इस विषय पर अपनी बात रख रही हैं बॉटनी की असिस्टेंट प्रोफेसर मंजू गागराई।
1: सभी बहनों को नमस्कार जोहार। मेरा नाम मंजू गागराई है और मैं कॉलेज में बॉटनी विषय की व्याख्याता हूँ। बहनों आज मैं आप सभी से पर्यावरण दिवस के बारे में बात करने जा रही हूँ। सभी जीव जंतुओं को फलने फूलने के लिए एक स्वस्थ पर्यावरण की आवश्यकता होती है। आइए जानते हैं कि प्राकृतिक पर्यावरण का कल्याण क्यों महत्वपूर्ण है और हमें इसे संरक्षित करने में योगदान क्यों देना चाहिए। पर्यावरण संरक्षण का प्रभाव पृथ्वी पर जीवन के लगभग हर स्तर पर पड़ता है, मनुष्यों से लेकर जानवरों और पौधों तक। इसी कारण यह सतत विकास का एक अनिवार्य हिस्सा है और यही वजह है कि जीबीआई अपने सभी कार्यक्रमों में समुद्री और वन्य जीव संरक्षण को मुख्य केंद्र बनाता है। दुनिया के जंगलों की रक्षा करने से जलवायु परिवर्तन से निपटने में हमें मदद मिलती है और पौधों तथा जानवरों की कई प्रजातियों के विलुप्त होने के दर को भी धीमा किया जा सकता है। यह मानव कल्याण को भी कई तरीके से बढ़ावा देता है। वर्तमान में वन संसाधन लगभग 2 अरब लोगों को भोजन और आय उत्पन्न करके आजीविका प्रदान करते हैं, लेकिन जब इन संसाधनों का उपयोग हम सतत तरीके से नहीं करते तो ये जितनी तेजी से बहाल हो सकते हैं उससे कहीं ज्यादा तेजी से समाप्त होने लगते हैं, जिससे भविष्य की पीढ़ियों की इन संसाधनों तक पहुंच काफी कम हो जाती है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज वनों की कटाई काफी तेजी से हो रही है। हर साल लगभग 1 करोड़ हेक्टेयर वन क्षेत्र जो है वो नष्ट होते जा रहा है। यह एक तरीका है जिससे पर्यावरणीय क्षरण वैश्विक विकास को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। संयुक्त राष्ट्र का सतत विकास लक्ष्य 15 स्थल पर जीवन, स्थानीय और वैश्विक स्तर पर भूमि क्षरण और जैव विविधता की हानि को संबोधित करने के महत्व पर जोर देता है। जंगलों और वन्य जीवों के संरक्षण में योगदान करने से दुनिया भर के समुदायों के आर्थिक विकास में भी सहायता मिलती है और वैश्विक समुदाय के जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है। 10 लाख पशु प्रजातियों और आने वाली पीढ़ियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा पर खतरा मंडरा रहा है। पर्यावरण संबंधी जिम्मेदारी का महत्व लगातार बढ़ रहा है। विशेषज्ञ इस बात से सहमत हैं कि पर्यावरण को साफ करने का समय लगभग अब आ ही गया है। अध्ययनों से भी पता चलता है कि जिन पारिस्थितिकी तंत्रों पर हम और अन्य सभी प्रजातियां निर्भर है उनका स्वास्थ्य

खतरनाक दर से बिगड़ रहा है। वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं, आजीविका, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता की बुनियाद ही खतरे में है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि संकट को टालने में अभी देर नहीं हुई है। जल्द से जल्द कार्रवाई करना महत्वपूर्ण है। जलवायु परिवर्तन पर अग्रणी वैज्ञानिक और अंतर सरकारी जलवायु परिवर्तन पैनल के अध्यक्ष तथा जैव विविधता एवं पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर अंतर सरकारी विज्ञान नियंत्रण मंच के जो अध्यक्ष रह चुके रॉबर्ट वाटसन भी सलाह देते हैं कि स्थानीय स्तर से लेकर वैश्विक स्तर तक हर स्तर पर अभी से शुरुआत करें। परिवर्तनकारी बदलावों के माध्यम से प्रकृति का संरक्षण, पुनर्स्थापन और सतत उपयोग लगभग संभव है। ऐसे बदलाव के लिए प्रकृति के स्वास्थ्य को बहाल करने हेतु तकनीकी, आर्थिक और सामाजिक कारकों में एक मौलिक व्यापक पुनर्गठन की आवश्यकता है। यद्यपि यह चुनौतीपूर्ण है, लेकिन विलुप्त होने के खतरे में पड़ी 10 लाख वनस्पतियों और जीव जंतुओं की प्रजातियों और वे बच्चे जो इसके परिणामों में सबसे अधिक प्रभावित होंगे, इसी पर निर्भर है। जलवायु परिवर्तन का कारण बनने वाले ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को उत्पन्न करने में बच्चों की वस्तुतः कोई भूमिका नहीं होती, लेकिन वे इसके हानिकारक प्रभावों का सबसे ज़्यादा शिकार होते हैं। विशेष रूप से वैसे बच्चे जो गरीब परिवारों में जन्मे हैं, जो अक्सर सबसे खराब या प्रदूषित वातावरण में रहते हैं। अगर हमने अभी कोई कार्रवाई नहीं की तो इसके परिणाम काफ़ी विनाशकारी होंगे। कुछ अनुमानों के अनुसार वैश्विक तापमान वृद्धि को सीमित करने में विफल रहने से अकेले वायु प्रदूषण में होने वाली मौतों में भारी मात्रा में वृद्धि हो सकती है। सतत जीवन शैली का पहला कदम सरल है, कम उत्पाद खरीदें, पानी और ऊर्जा की बचत करें और कचरा कम करें। खरीदारी करने से पहले हमेशा खुद से पूछें कि आपको चाहिए क्या। हमारी कई चीज़ें, कपड़े, जूते, फर्नीचर, घरेलू उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक सामान जिसकी मरम्मत या ठीक की जा सकती है, अगर आपको नया खरीदना ही है तो इस्तेमाल की हुई चीज़ों को हम लोग स्थानीय दान संस्थाओं को दान कर दें या फिर बेहतर गुणवत्ता वाली चीज़ों को खरीदने पर विचार करें ताकि वे ज़्यादा से ज़्यादा समय तक चल सकें। और अगर संसाधनों की बात करें तो पानी, ऊर्जा और जीवाश्म ईंधन की खपत करने के कम करने के भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे नल को खुला ना छोड़ें, कम समय तक और ठंडे पानी से नहाएं, अनावश्यक लाइटों को बंद कर दें, डिशवाशर या वॉशिंग मशीन पूरी तरह भर जाने का इंतजार करें और घर में जितने भी लीकेज हैं उनको तुरंत ठीक करवाएं। पुराने उपकरणों को नए और अधिक कुशल मॉडलों में बदलें और जब भी संभव हो हवाई यात्रा के बजाय सड़क मार्ग से यात्रा करें। सार्वजनिक परिवहन का ही उपयोग करें, पैदल चलें या साइकिल चलाएं। ये सभी चीज़ें समय के साथ साथ घर में ऊर्जा बचाने और कचरा कम करने में भी आपकी मदद करेगी। डिस्पोजल वस्तुओं को पुनः उपयोग योग्य वस्तुओं से बदलने से घरेलू कचरे की मात्रा में भारी कमी आ सकती है। टिकाऊ शॉपिंग बैग, पानी की बोतलें, टेक अवे कप, खाने के बर्तन, कटलरी, स्ट्रो, खाद्य कंटेनर, कॉफ़ी पॉड, कॉफ़ी फिल्टर, रेजर, नैपकिन, टॉवल, बैटरी, इन सब में निवेश करें। सेकेंड हैंड सामान खरीदना कचरा कम करने और पैसे बचाने का एक और तरीका है। यार्ड सेल, थ्रिफ्ट शॉप, कंसाइनमेंट स्टोर और स्वैप मीट देखें। क्रेगलिस्ट, एट्सी और थ्रेडअप जैसी वेबसाइट भी हैं जो आपकी ज़रूरत या पसंद की लगभग हर चीज़ के लगभग नए और विंटेज वर्जन उपलब्ध कराती है। अमेजन और ईबे पर भी कम इस्तेमाल किए गए और पुराने सामान मिलते हैं। यदि संभव हो तो कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए स्थानीय विक्रेताओं से ही खरीदारी करें। और जब आप अपने घर का सामान कम कर रहे हैं तो वैसे में इस्तेमाल की हुई चीज़ें दान करने का भी विचार कर सकते हैं या खुद ही पुनर्विक्रेता बन जाएं। बस जिम्मेदारी से दान करने का ध्यान रखें। और कई गैर लाभकारी संस्थाएं वस्तुओं को दान में स्वीकार नहीं करती, इस बात का भी ध्यान रखें। कई शहरों में पुनर्चक्रण संबंधी नियम होने से पुनर्चक्रण आसान हो जाता है, लेकिन अगर आपके इलाके में घर घर जाकर कचरा उठाने की सुविधा नहीं है तो पता करें कि क्या आसपास कोई नगरपालिका पुनर्चक्रण केंद्र है। कई क्षेत्रों में आमतौर पर स्वीकार्य सामग्रियों में प्लास्टिक, कांच, कागज, एल्यूमिनियम, टिन और कार्डबोर्ड शामिल हैं। आपके क्षेत्र में किन सामग्रियों को रिसाइकल किया जा सकता है यह भी जानें, और यह जानने से आपके पर्यावरण संरक्षण पर सकारात्मक प्रभाव डालने में मदद मिल सकती है। ऊर्जा के उपयोग पर ध्यान दें, अनुपयोगी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बंद कर दें और ऊर्जा कुशल उपकरणों का ही उपयोग करें, और जहाँ तक संभव हो हीटिंग और कूलिंग को सीमित करें। घर में ऊर्जा के उपयोग में छोटे छोटे बदलाव भी उत्सर्जन को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। पर्यावरण संरक्षण की शुरुआत कचरा कम करने, पुनः उपयोग योग्य उत्पादों को चुनने
और सोच समझकर खरीदारी कर

बहनों, रसोई घर में जब हम भोजन पकाते हैं तो गैस सिलेंडर का प्रयोग अमूमन हर घर की महिलाएं कर रही हैं। पर बहनों, गैस सिलेंडर का उपयोग करते समय सावधानी बरतने की भी सलाह अक्सर दी जाती है, क्योंकि गाहे बगाहे कुछ ऐसी खबरें हम तक पहुंचती हैं जिससे यह पता चलता है कि गैस सिलेंडर का प्रयोग करते समय भी हमें सावधानी रखनी चाहिए। बहनों, जब भी गैस सिलेंडर को रखने की जगह का चुनाव करें तो इसे हवादार स्थान में रखें, साथ ही इसे सीधी धूप से दूर रखें और ऐसी जगहों पर रखें जहां आग से थोड़ी दूरी हो। ज्वलनशील पदार्थ या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से भी रसोई गैस सिलेंडर की दूरी रहने से सुरक्षा बनी रहती है। आसपास में हवा का आवागमन समुचित तरीके से हो। बिजली के सॉकेट या उपकरण गैस

सिलेंडर के आसपास न हो इस बात का भी ख्याल रखिए। समय समय पर सिलेंडर की सतह की जांच करें, कोई जंग या डेंट या क्षति दिखाई दे तो इसकी तुरंत मरम्मत करें। सिलेंडर की आयु उसकी मजबूती में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तो उसके निर्माण तिथि को अवश्य नोट करके रखें। गैस सिलेंडरों को सुरक्षित रूप से संभालने के लिए उसे कैसे उपयोग किया जाए उस तरीके को भी सीखना जरूरी है। LPG के बढ़ते उपयोग के अनुरूप अगर कभी ऐसा दिखे कि वो क्षतिग्रस्त हो गया है या घिस गया है तो सिलेंडर को समय रहते बदल दें। साथ ही घर से निकलने के पहले हमेशा गैस सिलेंडर का वॉल्व बंद करें। वॉल्व की जांच को भी अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करें, इसे एक आदत की तरह बना लें। LPG सिलेंडर को लुढ़काने या लंबे समय तक क्षैतिज स्थिति में रखने से बचे, इससे LPG सिलेंडर की आयु में यानी उसके उपयोग करने वाले दिन में वृद्धि होगी। जब भी ऐसा लगे कि गैस की गंध आती है तो साबुन और पानी का घोल बनाएं। अगर आपको लगे कि इस घोल से बुलबुले निकल रहे हैं तो पता चलता है कि गैस लीक हो रहा है। गैस सिलेंडर सुरक्षा नियमों के अनुसार अगर गैस का फैलाव हो तो दरवाजे और खिड़कियों को तुरंत खोल दें। यदि फिर भी दुर्गंध बनी रहती है तो सिलेंडर को किसी खुले जगह पर ले जाएं। बच्चों को हमेशा गैस सिलेंडर से दूर रहने की सलाह दें। बहनों, इसमें कोई संदेह नहीं कि आज हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न अंग गैस सिलेंडर हो गए हैं, पर इसके साथ ही इसके जोखिमों को समझना भी हम सबों के लिए जरूरी है। भले ही हम रसोई गैस का उपयोग नियमित रूप से करते हैं, पर इसकी सुरक्षा को हम कभी भी नजरअंदाज ना करें। बहनों, हमारे सेहत का सीधा संबंध हमारे भोजन से होता है। कहते हैं ना कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा रहेगा मन। मौसम कोई भी हो पर उस मौसम में मिलने वाले फल हमारे सेहत के लिए बहुत ही लाभप्रद होते हैं, तो किसी न किसी रूप में उन फलों का प्रयोग अपने भोजन में जरूर करें। बहनों, कटे हुए ताजे फल और दही से बनाया जाने वाला जो फ्रूट रायता होता है वह खाने में तो स्वादिष्ट होता ही है, सेहत के दृष्टिकोण से भी बहुत पौष्टिक होता है। इसे बनाने के लिए सेब, अनानास, केला, स्ट्रॉबेरी इत्यादि फलों का हम उपयोग करते हैं। इस रेसिपी की मुख्य सामग्री जो है वह है दही, और दही के बारे में ये सभी जानते हैं कि यह कैल्शियम से भरपूर होता है और हमारे पाचन तंत्र के लिए भी यह बहुत अच्छा होता है। बहनों, ये रायता तैयार करने में हमें बस 10 मिनट का समय लगता है। इसके लिए कुछ सेब कटे हुए, कुछ कटा हुआ अनानास, थोड़े से कटे हुए केले के टुकड़े, कटी हुई स्ट्रॉबेरी ले लें और थोड़ा सा 2 टेबल स्पून अनार के बीज ले लें। इसके साथ ही 2 कप गाढ़ी दही रखें और काली मिर्च का पाउडर इसमें मिला दें। साथ ही जीरा पाउडर भी रखें और थोड़ी सी चीनी और नमक स्वाद के अनुसार। अब बनाने की विधि पर अगर हम बात करें बहनों, तो एक बड़े कटोरे में दही डालें, इसमें चीनी, नमक, काली मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर डालकर इस मिश्रण को तब तक फेंट दीजिए जब तक कि दही थोड़ा सा ढीला यानी थोड़ा सा नरम न पड़ जाए। उसके बाद कटे हुए सेब, अनानास, केला, स्ट्रॉबेरी और अनार के बीज डालकर इसे अच्छे से मिला लें। अब बहनों, इस तरह से आसानी से बनने वाला पौष्टिक फ्रूट रायता तैयार है। इसे फ्रिज में 30 मिनट तक ठंडा होने के लिए रखें और फिर सर्विंग बाउल में ठंडा फ्रूट रायता भरकर परोसें। बहनों, इस रेसिपी में आप अपने मन के अनुसार फल डालकर इसे और स्वादिष्ट बना सकते हैं। जरूरत से ज्यादा फले हुए पकों का इस्तेमाल न करें क्योंकि इससे रायते का स्वाद बिगड़ जाएगा। बहनों, फ्रूट रायता फलों से बनाई जाने वाली सबसे आसान और सुंदर रेसिपी है। इसे आप खाने के साथ भी परोस सकते हैं और खाने के बाद मीठा के रूप में भी। बहनों, ये वक्त पंखों पर सवार है पर वक्त तो किसी के पास नहीं। एक समय था बहनों जब हम महिलाएं बड़े ही शौक से शाम के समय अपने परिवार या अपने सखी सहेलियों के साथ बाजार जाया करती थी। आपस में गपशप, खरीदारी, दुकानों पर जाकर मोल भाव करना, ये सारी चीजें महिलाओं को बहुत पसंद आता था। पर अब तो ऑनलाइन शॉपिंग का जमाना है। हम सभी घर बैठे ही मोबाइल पर साड़ी, कपड़े, आभूषण और रसोई के लिए उपयोगी चीजें ऑर्डर करती हैं। पर बहनों, खरीदारी में हमें समझदारी होनी चाहिए, वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। तो जरूर जब भी शॉपिंग करें हड़बड़ी में कोई ऐसा सामान ना खरीदें कि बाद में पछताना पड़े। कई बार ऐसा होता है कि जो चीजें हमें ऑनलाइन दिखाई देती हैं, मिलने पर उसका रंग या उसका काम, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। इसलिए ऑनलाइन खरीदारी में भी सजग रहें, सावधान रहें, क्योंकि कई बार इसमें धोखाधड़ी की बातें सामने आ रही हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि हमें ये पता नहीं होता कि हम शिकायत
शिकायत कहाँ करें। सबसे पहली बात तो यह

0: कि हम कभी कभी घर से बाहर निकलकर बाजार में भी शॉपिंग करें, इससे व्यायाम और घूमने फिरने की आदत भी बनी रहेगी। सच पूछिए बहनों तो खरीदारी की दुनिया तो प्रलोभन की दुनिया है। रंग बिरंगी चीजें तुरंत हमारे मन को लुभा लेती हैं, तो जरूरी यह है कि हम जरूरत के हिसाब से ही खरीदारी करने का फैसला लें। बहुत ही महंगी वस्तुओं की खरीदारी ऑनलाइन बिल्कुल न करें, क्योंकि ऐसे में अगर वस्तु पसंद न आती हो तो उसको लौटाना और शिकायत करना एक लंबा समय ले लेता है और एक अतिरिक्त समय और ऊर्जा की भी बर्बादी होती है। हम महिलाएं तकनीक से जुड़ें, टेक्नोलॉजी को समझें, जानें, उसका फायदा उठाएं, पर इसके चमक दमक में आकर अपना नुकसान कतई ना करें। और बहनों इसी के साथ कार्यक्रम अंगना से अपनी रेडियो सखी कल्याणी को दीजिए विदा। अपनी सेहत का ख्याल रखें और मुस्कुराते रहें। नमस्कार, जोहार।
1: अंगना, महिलाओं का कार्यक्रम अपना अंगना।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे महिलाओं के लिए कार्यक्रम अंगना। लिसनर्स, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। अब से कुछ ही पलों बाद 1:20 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। 2 बजे का समय होगा मिड डे न्यूज का। 2:15 पर आप सुनेंगे दोपहर समाचार, प्रसारित किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 2:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत। 2:55 पर समय होगा प्रादेशिक समाचार का, प्रसारित किए जाएंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। 3 बजे का समय होगा न्यू इंडिया समाचार का। 3:05 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम। 3:15 पर समय होगा कार्यक्रम झारखंड के लोकगीत का। 3:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम उपशास्त्रीय संगीत। 3:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम लोकगीत। श्रोताओं, 1 बजने को हैं और अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार का प्रसारण किया जाएगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 1:10 पर समय होगा कार्यक्रम, माफ कीजिएगा, प्रादेशिक समाचार का, रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। बने रहिए हमारे साथ श्रोताओं, समाचार प्रसारित किए जाएंगे बस कुछ ही पलों में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। श्री मोदी ने दमण में कल लगभग 2,970 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा में कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
1: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
0: प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल देते हुए कहा कि विश्व हरित भविष्य की ओर अग्रसर हो रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऐसे समय में जब कई देश आर्थिक अनिश्चितताओं का सामना कर रहे हैं, भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था बनी हुई है। वित्त वर्ष 2025-26 में दर्ज 7.7% की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का जिक्र करते हुए श्री सिंह ने कहा कि यह उपलब्धि पिछले 12 वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की दृढ़ता और मजबूती का संकेत है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास को स्थिरता, आत्मविश्वास, निरंतरता और विश्वसनीयता के साथ जोड़ा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ वार्ता करेंगे। बैठक में व्यापार, निवेश, ऊर्जा और लोगों के बीच आपसी संपर्क सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। श्री खनाल ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। वे 3 दिन की भारत यात्रा पर हैं। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज स्लोवेनिया के नवनियुक्त विदेश मंत्री टॉन काजर को बधाई दी और उनके साथ मिलकर काम करने की इच्छा व्यक्त की। पूर्व राजनयिक टॉन काजर ने स्लोवेनिया में प्रधानमंत्री जिनेश जानशा के नेतृत्व वाली नवगठित दक्षिण पंथी गठबंधन सरकार में आधिकारिक तौर पर शपथ ली। दिल्ली पुलिस ने मालवीय नगर होटल अग्निकांड मामले में रसोइये को गिरफ्तार किया है। इस होटल में 3 जून को आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई थी और 40 अन्य घायल हो गए। इससे पहले पुलिस ने होटल मालिक को भी गैर इरादतन हत्या और अन्य संबंधित धाराओं के अंतर्गत गिरफ्तार किया था। जांच जारी है। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका सड़क पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई और 22 अन्य घायल हो गए। सभी पीड़ित एक ही परिवार के सदस्य थे और ब्यास नदी में अपने रिश्तेदार की अस्थियों को विसर्जित करने जा रहे थे। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी दुर्घटना स्थल पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से बचाव अभियान चलाया गया। भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार तथा निवेश मंच का आयोजन आज मध्य प्रदेश के इंदौर में किया जा रहा है। इसमें 15 लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन देशों के राजदूत और राजनयिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। उद्योग जगत के अग्रणी और बड़े निवेशक भी आयोजन का हिस्सा होंगे। इसका मुख्य उद्देश्य भारत और इन देशों के बीच व्यापार तथा निवेश के नए अवसर खोजना है। भारत अमेरिका सेना के अधिकारियों की वार्ता को 29वां चरण हवाई में आयोजित किया गया। इसकी सह अध्यक्षता सेना प्रमुख रणनीतिक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई और अमेरिकी सेना के उप कमान जनरल लेफ्टिनेंट जनरल जोएल वोवेल ने की। अमेरिका के सिएटल में मैंगो मैजिक फेस्टिवल में आज भारतीय आम के प्रचार और स्वाद परीक्षण के दूसरे चरण का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 100 से अधिक प्रमुख भारतीय फल आयातकों ने हिस्सा लिया। इसमें महाराष्ट्र के अल्फांसो और केसर, आंध्र प्रदेश के बंगनपल्ली और हिमायत, उत्तर प्रदेश के लंगड़ा, दशहरी और गुजरात के पके राजपुरी आम शामिल हैं। अमेरिका की सीनेटर मंका ढींगरा ने कहा कि खाद्य पदार्थों की का आदान प्रदान देशों के बीच केवल पोषण की जरूरतें ही पूरा नहीं करता बल्कि ये मजबूत व्यापारिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों की नींव भी रखता है। भारतीय वाणिज्य दूतावास ने पिछले वर्ष जुलाई में सिएटल में भारतीय आम की शुरुआत की थी। भारत आज पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में मेजबान जापान से खेलेगा। ये मुकाबला जापान के काकामिगाहारा में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन झारखंड के दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे रांची। थोड़ी देर बाद सांसदों और विधायकों के साथ करेंगे बैठक। प्रबुद्ध जन सम्मेलन को भी करेंगे संबोधित। रांची के कांके डैम को प्रदूषण से बचाने की पहल। ड्रेनेज सुधार के लिए बनेगी स्पेशल टास्क फोर्स। गिरिडीह की उसरी नदी को बचाने के लिए 24 करोड़ रुपए के सीवरेज प्लांट को मंजूरी। झारखंड लोक सेवा आयोग ने सिविल जज जूनियर डिवीजन प्रारंभिक परीक्षा का संशोधित परिणाम किया जारी। परीक्षार्थियों के लिए वेबसाइट पर रिजल्ट उपलब्ध। सीबीएसई ने छात्रों को दी बड़ी राहत। अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर की 7 जून। और झारखंड विमेंस प्रीमियर लीग का खिताबी मुकाबला कल दोपहर 1:30 बजे कोल्हान डाना

0: रामोस और पलामू वॉरियर्स के बीच होगी भिड़ंत। और अब समाचार विस्तार से। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन झारखंड के अपने दो दिवसीय संगठनात्मक दौरे पर रांची पहुंच चुके हैं। वे थोड़ी देर बाद पार्टी के सांसदों और विधायकों के साथ आगामी रणनीतियों पर एक अहम बैठक करेंगे। इसके बाद वे प्रदेश कोर कमेटी से विमर्श करेंगे और शाम को प्रबुद्धजन सम्मेलन को संबोधित करेंगे। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि उनके दो दिवसीय दौरे को लेकर कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है।
1: दो दिन तक लगातार जो मंथन होगा, हम सबको कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन मिलेगा कि दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी, सबसे बड़े राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और निश्चित रूप से तजुर्बा भी बहुत है, तो उस तजुर्बा और पार्टी का की आइडियोलॉजी के अनुसार कैसे और हम सब आगे बढ़े, तो निश्चित रूप से झारखंड के कार्यकर्ताओं का मनोबल भी ऊंचा होगा।
0: रांची नगर निगम ने कांके डैम को प्रदूषण और अतिक्रमण से बचाने के लिए सख्त कार्रवाई शुरू की है। डैम में गिरने वाले गंदे पानी को रोकने और ड्रोन मैपिंग के जरिए अवैध कब्जों की पहचान के लिए कार्य योजना तैयार की जा रही है। इस संबंध में नगर आयुक्त सुशांत गौरव ने कहा कि हमारी पूरी टीम ने कांके डैम का विस्तार पूर्वक निरीक्षण किया है। डैम की स्वच्छता संरक्षण और ड्रेनेज व्यवस्था को सुधारने के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया जा रहा है ताकि प्रभावी कदम उठाए जा सकें।
2: आप ड्रोन से बैठ के कहीं से भी उसको देख सकते हो, तो वो आप अपने हिसाब से ही बता सकते हैं कि कहाँ कहाँ क्या कमियां हैं और क्या और सुधार सकते हैं। तो इसके लिए ड्रोन मैपिंग के साथ साथ भी काम हो रहा है। सीवरेज ड्रेनेज की जो गंदगी की पानी है, वो नाली की पानी है, ड्रेन की पानी है, वो इसमें डायरेक्टली नहीं जाए, तो ऐसा नहीं है कि कल कुछ हो जाएगा, बट ये है कुछ समय के अंदर जो है एक हम लोग टेम्प्रेरी सॉल्यूशन बनाएंगे। जो बड़ी सॉल्यूशन है उस पर जो है सरकार के द्वारा जो एक बड़ी प्रोजेक्ट है उसके माध्यम से अगले दो तीन साल में कम्प्लीट होगी।
0: गिरिडीह शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए नगर विकास विभाग ने करोड़ों की योजनाओं को मंजूरी दी है। उप नगर आयुक्त प्रशांत लायक ने बताया कि उसरी नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए 24 करोड़ की लागत से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और 15 करोड़ रुपए से भव्य रिवर फ्रंट का निर्माण किया जाएगा।
3: हमारे नगर विकास विभाग के द्वारा उसरी नदी का जो संरक्षण और ये पर्यावरण का जो उसमें देख रहे हैं उन्हें स्वच्छता बनाने के लिए 6 करोड़ रुपये राशि उपलब्ध, और उसमें एक है कि रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, उसमें 15 करोड़ की राशि स्वीकृत हो चुकी है, और दूसरा है एसटीपी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट। ये दो योजना झारखंड सरकार का जो हमारे माननीय मंत्री जी के पहल से चल रहा।
0: केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में अब तक 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं। संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया यह अभियान अब जन आंदोलन का रूप ले रहा है। एक रिपोर्ट।
4: मंत्रालय के अनुसार अभियान के अंतर्गत अब तक 17,800 से अधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनसे लगभग 7 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। इसके अलावा 3,700 से अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 1.5 लाख से अधिक प्रतिभागियों को उर्वरक उपयोग, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और वैज्ञानिक खेती की जानकारी दी गई है। मंत्रालय ने ये भी बताया कि किसानों को जैविक और वैकल्पिक पोषक तत्वों के उपयोग की जानकारी देने के लिए 8,850 से अधिक व्यावहारिक प्रदर्शन भी आयोजित किए गए हैं। अभियान का उद्देश्य मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना, रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करना और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देना है। अक्षत की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC ने सिविल जज जूनियर डिवीजन प्रारंभिक परीक्षा का संशोधित परिणाम जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में संशोधित उत्तर कुंजी के आधार पर यह रिजल्ट तैयार किया गया है। परीक्षार्थी अपना परीक्षा फल आयोग की आधिकारिक वेबसाइट jpsc.gov.in पर देख सकते हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। CBSE ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि छात्र अब रविवार मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 6 जून निर्धारित थी। राज्य में आगामी 28 जून को पल्स पोलियो दिवस के तहत 5 वर्ष तक के 61 लाख से अधिक बच्चों को दवा पिलाई जाएगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा ने बताया कि राज्यभर में 24,000 से अधिक बूथ बनाए गए हैं। अधिकारियों ने अभिभावकों से बच्चों को पोलियो रोधी दवा जरूर पिलवाने की अपील की है। रामगढ़ जिले से बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत उत्पादित 4 टन आम की पहली अंतर्राष्ट्रीय खेप दुबई के लिए रवाना की गई है। उपायुक्त ऋतुराज ने इसे हरी झंडी दिखाई। इस अवसर पर उपायुक्त ने कहा कि राज्य सरकार के निर्देश पर पिछले 4-5 वर्षों से यह योजना चल रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की मेहनत से आज बेहतर फल मिल रहे हैं, जिसे वैश्विक बाजार तक पहुँचाया जा रहा है।
5: राज्य सरकार के दिशा निर्देश के अंतर्गत हम लोगों ने 4-5 सालों से जो हम लोगों ने बिरसा हरित ग्राम योजना हम लोगों ने किया है, ग्रामीण क्षेत्र में कई सारे लोगों ने अपने एकड़ एकड़ की जमीनों में आम लगाया। आज वो उसका फल जो है देखने को हमें मिल रहा है, जिसमें कि हमारे रामगढ़ जिले के गांव का आम कल हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया, दुबई के मार्केट में भेजा गया है। हम लोग और भी एजेंसी से बात कर रहे हैं जो इसको आगे अन्य देशों में भी ले जाने का प्रयास कर रहे हैं।
0: रांची के ऑड्री हाउस में जनगणना में पोस्ट कार्ड के ऐतिहासिक योगदान पर एक विशेष प्रदर्शनी आयोजित की गई। इसमें विभिन्न दशकों के जनगणना से जुड़े पोस्ट कार्ड, डाक सामग्री और जागरूकता अभियानों को चलचित्र तथा चित्रों द्वारा दर्शाया गया, जो डिजिटल युग से पहले दूर दराज के क्षेत्रों तक सरकारी सूचनाएं पहुंचाने का मुख्य माध्यम थे। फिल्म निर्माता मेघनाथ ने कहा कि ऐसी प्रदर्शनियां नई पीढ़ी को पारंपरिक संचार साधनों के ऐतिहासिक योगदान से अवगत कराती हैं।
6: 50-70 साल पहले हमारे पास क्या था, अखबार भी कम था, एकमात्र पोस्ट ऑफिस था, घर गांव में जाता था कुछ चीज, तो कोई चीज को सबके पास पहुंचाने के लिए पोस्टल सर्विस ही एक अच्छा ये जरिया था। तो हमारे सरकार पोस्टल लिफाफा, पोस्ट कार्ड इसके ऊपर में लिख देते, देखो ये होने वाला है, आप आओ।
0: राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,41,700 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,55,000 रुपए प्रति किलो है। खेल जगत में राज्य के खिलाड़ियों ने शानदार उपलब्धियां हासिल की हैं। जापान अंडर 18 एशिया कप हॉकी में भारतीय महिला टीम ने कोरिया को 3-0 से हराकर कांस्य पदक जीता है। झारखंड की संदीपा कुमारी बेस्ट प्लेयर चुनी गईं। घरेलू खेलों में झारखंड वुमेन्स प्रीमियर लीग का फाइनल मुकाबला कल दोपहर 1:30 बजे कोल्हान डायनामोज और पलामू वॉरियर्स के बीच खेला जाएगा। उधर पतरातू में 30 टीमों वाली भव्य छोटा नागपुर सुपर डिवीजन फुटबॉल लीग का शुभारंभ हो गया है। और अब अंत में मुख्य समाचार। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन झारखंड के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे रांची। थोड़ी देर बाद सांसदों और विधायकों के साथ करेंगे बैठक, प्रबुद्ध जन सम्मेलन को भी करेंगे संबोधित। रांची के कांके डैम को प्रदूषण से बचाने की पहल, ड्रेनेज सुधार के लिए बनेगी स्पेशल टास्क फोर्स। गिरिडीह की उसरी नदी को बचाने के लिए 24 करोड़ के सीवरेज प्लांट को मंजूरी। झारखंड लोक सेवा आयोग ने सिविल जज जूनियर डिवीजन प्रारंभिक परीक्षा का संशोधित परिणाम किया जारी, परीक्षार्थियों के लिए वेबसाइट पर रिजल्ट उपलब्ध। CBSE ने छात्रों को दी बड़ी राहत, अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर की 7 जून। और झारखंड वीमेंस प्रीमियर लीग का खिताबी मुकाबला कल दोपहर 1:30 बजे कोल्हान डायनामोज और पलामू वॉरियर्स के बीच होगी भिड़ंत। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा।

0: लिसनर्स, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। 1:20 हुए हैं श्रोताओं। अगला कार्यक्रम आप सुनेंगे फिल्म संगीत, लेकर हाजिर होंगे हम बस कुछ ही पलों में।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से

0: कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
0: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 870-001-4242।
0: नंबर एक बार फिर नोट करें 870-001-4242।
2: मन की बात, प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
3: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली, अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
2: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें, मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
3: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।
4: नमस्कार जमशेदपुर। नमस्कार जमशेदपुर का एक अलग अंदाज,
5: ज्ञान विज्ञान
6: इतिहास के पन्नों से,
5: सेहत और बॉलीवुड की बातें,
6: मौसम का मिजाज,
5: अपने शहर की खबरें,
6: बातों मुलाकातों के साथ
4: सुरीला मनोरंजन
5: और भी बहुत कुछ।
4: आप सुनते हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर में दिन के 11:05 से 12 तक
5: आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से।
4: नमस्कार जमशेदपुर।
7: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
8: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
9: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक,

फिल्म संगीत के आज के इस संगीतमय सफर में आप सभी श्रोताओं का बेहद स्वागत और आपकी रेडियो दोस्त रिंकी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, करते हैं कार्यक्रम का आगाज इस दिलकश गीत के साथ।

अरिजीत सिंह की आवाज में अभी आप सुन रहे थे लूडो फिल्म का ये गीत। संदीप श्रीवास्तव के लिखे गीत को संगीतबद्ध किया था प्रीतम ने। कार्यक्रम का अगला गीत श्रोताओं आप सुनेंगे शिल्पा राव की आवाज में। फिल्म का नाम है देवरा। कौसर मुनीर के लिखे गीत को संगीत दिया है अनिरुद्ध रविचंद्रन ने।

अरिजीत सिंह की आवाज में अभी आपने सुना तू झूठी मैं मक्कार फिल्म का ये गीत। अमिताभ भट्टाचार्य के लिखे गीत को संगीत दिया था प्रीतम ने। श्रोताओं कार्यक्रम फिल्म संगीत में गीतों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा बस इस छोटे से अंतराल के बाद।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

0: सुनिए हमारा खास कार्यक्रम हेलो आपकी फरमाइश हर मंगलवार रात 10 बजे से 11 बजे तक एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। और हाँ, अपनी फरमाइश रिकॉर्ड करवाने के लिए हमें कॉल करें हर बुधवार दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0657-296-0445। हेलो आपकी फरमाइश, संगीत वही जो आप चाहें।
1: हेलो डॉक्टर,
2: आकाशवाणी जमशेदपुर का लाइव फोन इन कार्यक्रम।
1: हेलो डॉक्टर,
2: सुनिए हर माह के आखिरी बुधवार को रात 8 बजे से एफएम 102.4 मेगाहर्ट्ज पर विशेषज्ञों से कीजिए बातें लाइव कार्यक्रम के दौरान और पाइए अपनी समस्याओं से निदान। तो कॉल कीजिए साथियों 0657-296-0445 पर। नंबर एक बार पुनः सुनिए 0657-296-0445 और बातें कीजिए लाइव डॉक्टर के साथ।
1: हेलो डॉक्टर,

0: Akashwadi at 90.
1: हमार बाबूजी के कहना बा बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
4: जलवायु साझेदारी, यह यूनेस्को का संदेश है। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सभी देशों का मिलकर काम करना जरूरी है। जिन देशों से ज्यादा प्रदूषण होता है उन्हें आगे बढ़कर समाधान की दिशा में काम करना चाहिए और गरीब और कमजोर देशों को पैसा, तकनीक और जरूरी मदद देनी चाहिए। UNFCCC जैसे ढांचों के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय कार्रवाई के समन्वय में यूनाइटेड नेशंस एक केंद्रीय भूमिका निभाता है। अब वादा करने का नहीं, काम करने का समय है। साथ मिलकर हमें कम कार्बन वाले एक सुदृढ़ भविष्य की ओर बढ़ना चाहिए। क्या आप जानते हैं 2020 में दुनिया के सिर्फ 5 सबसे ज्यादा प्रदूषण करने वाले देश मिलकर लगभग 60% कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन कर रहे थे।

102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र के साथ और सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत अपनी रेडियो दोस्त रिंकी के साथ।

अरिजीत सिंह की आवाज में अभी आप सुन रहे थे सनम रे फिल्म का ये गीत, गीत और संगीत मिथुन का। अगला गीत श्रोताओं आप सुनेंगे अरिजीत सिंह की ही आवाज में। रश्मि विराज के लिखे गीत को संगीत दिया है तनिष्क बागची ने और फिल्म का नाम है मर जावा।

अगला गीत श्रोताओं आप सुनेंगे सनमपुरी नीति मोहन की आवाज में। अनविता दत्ता के लिखे गीत को संगीतबद्ध किया है विशाल शेखर ने। फिल्म का नाम स्टूडेंट

श्रोताओं, ये थी कार्यक्रम फिल्म संगीत की अंतिम प्रस्तुति। इसी गीत के साथ दीजिए अपनी रेडियो दोस्त रिंकी को इजाजत। लिसनर्स, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, 2 बजने को हैं, अब आप सुनेंगे मिड डे न्यूज। उसके ठीक बाद 2:15 पर आप सुनेंगे दोपहर समाचार। रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। बने रहिए हमारे साथ, समाचार प्रसारित किए जाएंगे बस कुछ ही पलों में।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ देश की आर्थिक वृद्धि को गति देने के उपायों पर चर्चा की। रिजर्व बैंक ने भारत में निवेश को आसान बनाने के लिए विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों से जुड़े नियमों को सरल बनाया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। सीबीएसई ने अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि कल तक बढ़ाई। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिल्का मार्ग पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत। केरलम और माहे में कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। श्रेयस अय्यर सूर्यकांत यादव की जगह T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कप्तान बने। वैभव सूर्यवंशी पहली बार टीम में शामिल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन स्तर और व्यापार में सुगमता लाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने पश्चिम एशिया संघर्ष के भारत और विश्व पर पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। श्री मोदी ने दमण में कल लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा में कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
1: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऐसे समय में जब कई देश आर्थिक अनिश्चितताओं का सामना कर रहे हैं, भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनी हुई है। एक रिपोर्ट।
2: वित्त वर्ष 2025-26 में दर्ज 7.7% की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का जिक्र करते हुए श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये उपलब्धि पिछले 12 वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की दृढ़ता और मजबूती का संकेत है। रक्षा मंत्री ने कहा कि राष्ट्र निर्माण के प्रति श्री मोदी की अटूट प्रतिबद्धता, नवाचार, बुनियादी ढांचा और उद्यमिता तथा वैश्विक चुनौतियों से देश को उबारने की उनकी क्षमता ने भारत को एक आत्मविश्वासपूर्ण, दृढ़ और वैश्विक स्तर पर सम्मानित आर्थिक शक्ति में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि ये उल्लेखनीय वृद्धि नए अवसर पैदा कर रही है और 14 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को मजबूत कर रही है। समर्थ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: रिजर्व बैंक ने विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह की निवेश सीमाओं से छूट दी गई है। आरबीआई ने केंद्र और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों के लिए पहले से लागू सामान्य और दीर्घकालिक निवेश सीमाओं को भी एक कर दिया है। नए दिशा निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। राज्य वित्त आयोगों के लिए डाटा सेट संबंधी समिति की रिपोर्ट 8 जून को जारी की जाएगी। केंद्र सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ. वी अनंता नागेश्वरन ने इस रिपोर्ट को जारी करेंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने कहा है कि इस रिपोर्ट का जारी होना राजकोषीय विकेंद्रीकरण के लिए प्रमाण आधार को मजबूत करने की दिशा में सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। मंत्रालय के अनुसार यह रिपोर्ट राज्य वित्त आयोगों के लिए आवश्यक प्रमुख डाटा सेटों का एक सुव्यवस्थित और व्यापक विवरण प्रस्तुत करती है। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि बैठक में व्यापार, निवेश, संपर्क, ऊर्जा और जन संबंधी सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्यों से आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि यह दौरा भारत और नेपाल के बीच विशेष साझेदारी को और मजबूत करेगा।
3: With Nepal, we have an expansive agenda.
4: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है. इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं. इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी. हम नेपाल के साथ अपनी इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं.
3: पार्टनरशिप दैट वी हैव विद नेपाल.
0: भारत के तीन दिन के दौरे पर आए नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की. भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार तथा निवेश मंच का आयोजन आज मध्य प्रदेश के इंदौर में किया जा रहा है. इसमें 15 लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन देशों के राजदूत और राजनयिक प्रतिनिधि भाग लेंगे. ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है. CBSE ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि छात्र अब कल मध्य रात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे. इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 6 जून निर्धारित थी. CBSE ने सभी पात्र छात्रों से बढ़ी हुई समय सीमा का ध्यान रखते हुए निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है. पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका सड़क पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई और 22 अन्य घायल हो गए. सभी पीड़ित एक ही परिवार के सदस्य थे.

0: और ब्यास नदी में अपने रिश्तेदार की अस्थियों को विसर्जित करने जा रहे थे। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी दुर्घटना स्थल पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से बचाव अभियान चलाया गया। दिल्ली पुलिस ने मालवीय नगर होटल अग्निकांड मामले में रसोइये को गिरफ्तार किया है। इस होटल में 3 जून को आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई और 40 अन्य घायल हो गए। इससे पहले पुलिस ने होटल मालिक को भी गैर इरादतन हत्या और अन्य संबंधित धाराओं के अंतर्गत गिरफ्तार किया था। जांच जारी है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष में भारत की सौर ऊर्जा क्षमता 2.8 गीगावाट से बढ़कर 155 गीगावाट हो गई है। श्री शेखावत ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि 40 लाख से अधिक घरों में सौर ऊर्जा का उपयोग हो रहा है। कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा क्षमता का दोगुना होना पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ प्रगति का भी प्रमाण है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। श्री वैष्णव ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ कोलकाता के नबन्ना में आयोजित एक संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में 10 अमृत भारत स्टेशन पहले ही पूरे हो चुके हैं, जबकि 9 वंदे भारत एक्सप्रेस और कई अमृत भारत रेलगाड़ियां चल रही हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्ष में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की भी घोषणा की।
1: मेट्रो के लिए इसकी न्यू ट्रेन्स, नई जनरेशन की ट्रेन्स अगले 5 वर्षों में इंडक्ट करेंगे। नई जनरेशन की ट्रेन्स आने से कोलकाता के निवासियों को बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, वो भी एक बहुत बड़ा आगे स्टेप लिया जाएगा।
0: मुख्यमंत्री शिवेंदु अधिकारी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं को लागू करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा के पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 के निष्कर्षों पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की टिप्पणियों का खंडन किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नड्डा ने कहा कि जन स्वास्थ्य इतना महत्वपूर्ण है कि इस पर राजनीतिक बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। श्री नड्डा ने बताया कि पूर्ण टीकाकरण कवरेज बढ़कर 87.1% हो गया है, जबकि स्वास्थ्य बीमा कवरेज 4.9% से बढ़कर 60.2% हो गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि ये प्रगति स्वास्थ्य सेवा, पोषण, स्वच्छता, वित्तीय समावेशन और अंतिम छोर तक सेवा पहुंचाने में निरंतर निवेश का परिणाम है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई के सैन्य सलाहकार मोहसिन रेजाई ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से इसराइल से स्वतंत्र होकर निर्णय लेने, होर्मुज जल टमरू मध्य में नाकाबंदी समाप्त करने और ईरान की जब्त संपत्तियों को छोड़ने का आह्वान किया है। रेजाई ने एक टेलीविजन चैनल के साथ साक्षात्कार में कहा कि दोनों पक्षों के बीच वार्ता गतिरोध में है और ट्रंप को इस गतिरोध को तोड़ना होगा। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए।
2: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। यह पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
0: मॉरिशस ने पिछले 21 दिनों में कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की यात्रा करने वाले या वहां से गुजरने वाले विदेशी नागरिकों के प्रवेश पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है। ये कदम इबोला वायरस के प्रकोप को देखते हुए उठाया गया है। मौसम विभाग ने केरलम और माहे में कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वोत्तर भारत, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारायकाल में अगले 2 दिन में तेज वर्षा हो सकती है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, तेलंगाना, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, रायलसीमा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में भी आज ऐसी ही स्थिति का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, जम्मू कश्मीर में बिजली चमकने और तेज हवाओं का अनुमान है।

0: भारत हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आज मौसम साफ बना हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बीते दिनों की गर्मी के बाद सुहावने मौसम से जनजीवन को काफी राहत मिली है।
1: हिमाचल प्रदेश में जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के रोहतांग और कुंजम दर्रों पर बीते रोज हल्का हिमपात तथा कुछ क्षेत्रों में हल्की वर्षा दर्ज की गई, जिससे मौसम सुहावना हो गया है। बड़ी संख्या में पर्यटक हिमाचल के विभिन्न पर्यटन स्थलों की ओर रुख कर रहे हैं। इस बीच मौसम विभाग ने आज चंबा, कांगड़ा और कुल्लू जिलों के लिए अंधड़, ओलावृष्टि, वर्षा और बिजली गिरने की संभावना को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ होने वाली टी20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। श्रेयस अय्यर को सूर्य कुमार यादव की जगह टीम का कप्तान बनाया गया है। तिलक वर्मा उप कप्तान होंगे। वैभव सूर्यवंशी को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। वैभव ने आईपीएल 2026 में सर्वोच्च रन बनाए थे। प्रिंस यादव को भी टीम में जगह मिली है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच न्यू चंडीगढ़ के मुल्तानपुर में खेला जा रहा है। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। चायकाल तक भारत ने 2 विकेट के नुकसान पर 209 रन बना लिए थे। भारत आज पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में मेजबान जापान से खेलेगा। ये मुकाबला जापान के काकामिगाहारा में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। युवा कार्य और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा राष्ट्र की सच्ची शक्ति हैं और विकसित भारत के सपने को साकार करने वाली प्रेरक शक्ति हैं। नई दिल्ली में आयोजित मेरा भारत युवा सम्मेलन में डॉक्टर मांडविया ने ये बात कही। अमेरिका के सिएटल में मैंगो मैजिक फेस्टिवल भारतीय आम का प्रचार और स्वाद परीक्षण के दूसरे चरण का आज आयोजन किया गया। अमेरिका की सीनेटर मंका ढींगरा ने कहा कि खाद्य पदार्थों का आदान प्रदान देशों के बीच केवल पोषण की जरूरतें ही नहीं करता, बल्कि ये मजबूत व्यापारिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों की नींव भी रखता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ देश की आर्थिक वृद्धि को गति देने के उपायों पर चर्चा की। रिजर्व बैंक ने भारत में निवेश को आसान बनाने के लिए विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों से जुड़े नियमों को सरल बनाया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि कल तक बढ़ाई। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका मार्ग पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत। केरलम और माहे में कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। और श्रेयस अय्यर सूर्यकांत यादव की जगह टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कप्तान बने। वैभव सूर्यवंशी पहली बार टीम में शामिल। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: लिसनर्स, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। 2:30 हुए हैं श्रोताओं, समय है कार्यक्रम फिल्म संगीत का, लेकर हाजिर होंगे हम बस कुछ ही पलों में।
1: आकाशवाणी एट 90, 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक, नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है, आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

फिल्म संगीत के इस संगीतमय सफर में आप सभी श्रोताओं का बेहद स्वागत और अपनी रेडियो दोस्त रिंकी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, दिन भर की भागदौड़ के बाद ये समय है थोड़ा रुकने का, थोड़ा ठहरने का, कुछ पल अपनों के साथ बिताने का। इस भागती दौड़ती जिंदगी में अगर भूल गए हैं उन्हें जिनके लिए आप कर रहे हैं कड़ी मेहनत, लेकिन उनके बारे में उनसे बातचीत करना भूल गए हैं, तो यही समय है। उठाइए फोन और करिए अपने प्रियजनों को एक कॉल, सुनिए उनके मन की, कहिए अपने दिल की बात। हो सकता है उन्हें भी हो आपके इस कॉल का इंतजार। और अगर इन पलों में साथ हो संगीत का, तो श्रोताओं ये पल बेहद खूबसूरत बीतेंगे। करते हैं कार्यक्रम का आगाज इस दिलकश गीत के साथ।

अरिजीत सिंह की आवाज़ में अभी आपने सुना सिटी लाइट्स फिल्म का ये गीत। रश्मि सिंह के लिखे गीत को संगीत दिया था जीत गांगुली ने।

उदित नारायण, अमित कुमार, शोभा जोशी, दीपाली रुईया की आवाज में अभी आपने सुना हम तुम पे मरते हैं फिल्म का ये गीत। आनंद बख्शी के लिखे गीत को संगीत दिया था उत्तम सिंह ने।

उदित नारायण अलका याग्निक की आवाज में अभी आप सुन रहे थे हर दिल जो प्यार करेगा फिल्म का ये गीत। समीर के लिखे गीत को संगीतबद्ध किया था अनु मलिक ने।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ आज का हमारा फिल्म संगीत का ये सफर यहीं तक। दीजिए अपनी रेडियो दोस्त रिंकी को इजाजत। लिसनर्स, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। 2:55 होने को हैं श्रोताओं। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। उसके ठीक बाद 3:00 आप सुनेंगे न्यू इंडिया समाचार, प्रसारित किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: वाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन झारखंड के अपने दो दिवसीय संगठनात्मक दौरे पर रांची पहुंच चुके हैं। वे पार्टी के सांसदों और विधायकों के साथ आगामी रणनीतियों पर एक अहम बैठक करेंगे। मौके पर प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि उनके आने से कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ेगा।
1: एक कार्यकर्ता से चल करके एक राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का सफर तय करने वाला एक साधारण परिवार से निकला हुआ व्यक्ति आज इतनी बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, जो उनको देखने के लिए, उनको जानने के लिए, उनको सुनने के लिए लोगों के मन में काफी उत्सुकता है, काफी उत्साह है और यह यात्रा उनकी ऐतिहासिक होगी हम लोगों के लिए।
0: झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राज्यसभा की एक सीट के लिए अपने प्रत्याशी के नाम घोषणा कर दी है। पार्टी के केंद्रीय महासचिव और वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने बताया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राज्यसभा चुनाव को देखते हुए वैद्यनाथ राम को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। वैद्यनाथ राम झारखंड सरकार में पहले मंत्री रह चुके हैं। वैद्यनाथ राम फिलहाल झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय समिति के उपाध्यक्ष हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC ने सिविल जज जूनियर डिवीजन प्रारंभिक परीक्षा का संशोधित परिणाम जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में संशोधित उत्तर कुंजी के आधार पर यह रिजल्ट तैयार किया गया है। परीक्षार्थी अपना परीक्षा फल आयोग की आधिकारिक वेबसाइट jpsc.gov.in पर देख सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि कल तक के लिए बढ़ा दी है। CBSE ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि छात्र अब रविवार मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 6 जून तक निर्धारित थी। राज्य में आगामी 28 जून को पल्स पोलियो दिवस के तहत 5 वर्ष तक 61 लाख से अधिक बच्चों को दवा पिलाई जाएगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा ने बताया कि राज्य भर में 24,000 से अधिक बूथ बनाए गए हैं। अधिकारियों ने अभिभावकों से बच्चों को पोलियो रोधी दवा जरूर पिलवाने की अपील की है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची नगर निगम ने कांके डैम को प्रदूषण और अतिक्रमण से बचाने के लिए सख्त कार्रवाई शुरू की है। डैम में गिरने वाले गंदे पानी को रोकने और ड्रोन मैपिंग के जरिए अवैध कब्जों की पहचान के लिए कार्य योजना तैयार की जा रही है। इस संबंध में नगर आयुक्त सुशांत गौरव ने कहा कि हमारी पूरी टीम ने कांके डैम का विस्तार पूर्वक निरीक्षण किया है। डैम की स्वच्छता, संरक्षण और ड्रेनेज व्यवस्था को सुधारने के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया जा रहा है ताकि प्रभावी कदम उठाए जा सके।
2: आप ड्रोन से बैठ के कहीं से भी उसको देख सकते हो, वो आप अपने हिसाब से ही बता सकते हैं कि कहाँ कहाँ क्या कमियां हैं और क्या और सुधार सकते हैं। तो इसके लिए ड्रोन मैपिंग के साथ साथ भी काम हो रहा है। सीवरेज ड्रेनेज की जो गंदगी की पानी है, वो नाली की पानी है, ड्रेन की पानी है, वो इसमें डायरेक्टली नहीं जाए। तो ऐसा नहीं है कि कल कुछ हो जाएगा, बट ये है कुछ समय के अंदर जो है एक हम लोग टेम्परेरी सॉल्यूशन बनाएंगे। जो बड़ी सॉल्यूशन है उस पर जो है सरकार के द्वारा जो एक बड़ी प्रोजेक्ट है उसके माध्यम से अगले 2-3 साल में कम्प्लीट होगी।
0: सिमडेगा थाना क्षेत्र के सलडेगा टोंगरी टोली स्थित केलाघाग डैम के समीप से पुलिस ने लगभग 37 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है जबकि एक अन्य आरोपी की तलाश जारी है।
3: मोटरसाइकिल पर ला करके अवैध गांजा की बिक्री की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा बताया गया कि एक उड़ीसा के टांगर गांव बस्ती का दुलेसर अपार्ट है, वही इस क्षेत्र में गांजा के अवैध आपूर्ति करता है। इस तरह 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है, 2 मोटरसाइकिल की बरामदगी की गई है एवं लगभग 36 kg गांजा बरामद।
0: जापान के काका मिगाहारा में आयोजित अंडर 18 महिला एशिया कप हॉकी प्रतियोगिता में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर लिया है। तीसरे स्थान के मुकाबले में भारत ने कोरिया को 3-0 से हराकर टूर्नामेंट का समापन जीत के साथ किया। मैच में शानदार खेल दिखाने वाली संदीपा कुमारी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इधर अंडर 18 एशिया कप हॉकी में पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए रोमांचक मुकाबले में खूंटी के आशीष तानीपूर्ति ने लगातार 3 गोल दागकर भारत को रोमांचक जीत दिलाई। उनके शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन स्तर और व्यापार में सुगमता लाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने पश्चिम एशिया संघर्ष के भारत और विश्व पर पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह की निवेश सीमाओं से छूट दी गई है। आरबीआई ने केंद्र और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों के लिए पहले से लागू सामान्य और दीर्घकालिक निवेश सीमाओं को भी एक कर दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऐसे समय में जब कई देश आर्थिक अनिश्चितताओं का सामना कर रहे हैं, भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में विशिष्टता बनाए हुए है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास को स्थिरता, आत्मविश्वास, निरंतरता और विश्वसनीयता के साथ जोड़ा है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि बैठक में व्यापार, निवेश, संपर्क, ऊर्जा और जन संबंधों सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि यह दौरा भारत और नेपाल के बीच विशेष साझेदारी को और मजबूत करेगा।
1: With Nepal, we have an expansive agenda.
2: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपने इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
1: Partnership that we have with Nepal.
0: भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। CBSE ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि छात्र अब कल मध्य रात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 6 जून निर्धारित थी। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका सड़क मार्ग पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई और 22 अन्य घायल हो गए। सभी पीड़ित एक ही परिवार के सदस्य थे और ब्यास नदी में अपने एक रिश्तेदार की अस्थियों को विसर्जित करने के लिए जा रहे थे, तभी ये दुर्घटना हुई। दिल्ली पुलिस ने मालवीय नगर होटल अग्निकांड मामले में एक रसोइये को गिरफ्तार किया है। इस होटल में 3 जून को आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई और 40 अन्य घायल हो गए। इससे पहले पुलिस ने होटल मालिक को भी गैर इरादतन हत्या और अन्य संबंधित धाराओं के अंतर्गत गिरफ्तार किया था। जांच जारी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। श्री वैष्णव ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ कोलकाता के नबन्ना में आयोजित एक संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में भारत की सौर ऊर्जा क्षमता 2.8 गीगावाट से बढ़कर 155 गीगावाट हो गई है। श्री शेखावत ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हर घर और खेत को ऊर्जा का केंद्र बनाने के संकल्प के साथ भारत 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य की ओर तेजी से अग्रसर है। मौसम विभाग ने केरलम और माहे में कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, तेलंगाना, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, रायलसीमा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में भी आज ऐसी ही स्थिति का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: लिसनर्स, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र FM के 102.4 MHz पर। 3:05 हुए हैं श्रोताओं, अगला कार्यक्रम आप सुनेंगे सुगम संगीत। सुगम संगीत के आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे भूपेंद्र सिंह की आवाज में गजल।

भूपिंदर सिंह की आवाज में श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे ये गजल, और इसी के साथ आज का सुगम संगीत का हमारा ये सफर यहीं तक। दीजिए इजाजत।

0: लिसनर्स, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। 3:15 होने को हैं श्रोताओं, अगला कार्यक्रम आप सुनेंगे झारखंड के लोकगीत।
1: कार्यक्रम झारखंड के लोकगीत सुनने वाले सभी सुरी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार, जोहार और बहुत बहुत स्वागत। आइए सुनते हैं निरोद बरन मन्ना और साथियों के स्वर में कुरमाली लोकगीत।

एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम झारखंड के लोकगीत। आज के कलाकार हैं निरोध बरन मन्ना। आइए सुनते हैं ये अगली प्रस्तुति कुरमाली।

श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। अगला कार्यक्रम श्रोताओं आप सुनेंगे उपशास्त्रीय संगीत।

0: विदुषी अनिता सेन की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे चैती गीत, और इसी के साथ उपशास्त्रीय संगीत का आज का हमारा ये सफर यहीं तक। दीजिए इजाज़त। श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र FM के 102.4 MHz पर। 3:45 होने को है श्रोताओं, अब आप सुनेंगे लोकगीत का कार्यक्रम।
1: कार्यक्रम लोकगीत सुनने वाले सभी सुरी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार, जोहार और बहुत बहुत स्वागत। आइए सुनते हैं हरिवंश प्रसाद सिंह और साथियों के स्वर में मगही लोकगीत।

एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोकगीत। आज के कलाकार हैं हरिवंश प्रसाद सिंह और साथी। आइए सुनते हैं मगही में ये अगली प्रस्तुति।

लिसनर्स, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। 4 बजने को है श्रोताओं, अब आप सुनेंगे समाचार मुख्यांश आकाशवाणी के रांची केंद्र से।

0: तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राज्यसभा की एक सीट के लिए अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी है। पार्टी के केंद्रीय महासचिव और वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने बताया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राज्यसभा चुनाव में वैद्यनाथ राम को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। वैद्यनाथ राम झारखंड सरकार में पहले मंत्री रह चुके हैं। वैद्यनाथ राम फिलहाल झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय समिति के उपाध्यक्ष हैं। इधर राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा ने आज झारखंड विधानसभा में निर्वाचन पदाधिकारी से अपना नामांकन पत्र प्राप्त किया। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह, कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, विधायक दल के उपनेता राजेश कच्छप सहित कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी ने सिविल जज जूनियर डिवीजन प्रारंभिक परीक्षा का संशोधित परिणाम जारी कर दिया है। परीक्षार्थी अपना परीक्षा फल आयोग की आधिकारिक वेबसाइट jpsc.gov.in पर देख सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि कल तक के लिए बढ़ा दी है। सीबीएसई ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि छात्र अब रविवार मध्य रात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 6 जून तक निर्धारित थी। राज्य में आगामी 28 जून को पल्स पोलियो दिवस के तहत 5 वर्ष तक 61 लाख से अधिक बच्चों को दवा पिलाई जाएगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा ने बताया कि राज्य भर में 24,000 से अधिक बूथ बनाए गए हैं। अधिकारियों ने अभिभावकों से बच्चों को पोलियोरोधी दवा जरूर पिलवाने की अपील की है। सिमडेगा थाना क्षेत्र के सलडेगा टोंगरी टोली स्थित केलाघाग डैम के समीप से पुलिस ने लगभग 37 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक अन्य की तलाश जारी है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: लिसनर्स, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। अभी आपने सुना समाचार मुख्यांश आकाशवाणी के रांची केंद्र से। अगला कार्यक्रम आप सुनेंगे सुगम संगीत, लेकर हाजिर होंगे हम बस कुछ ही पलों में। सुगम संगीत के आज के इस सफर में हम आपको सुनवाएंगे मिताली सिंह की आवाज में गजल। कार्यक्रम का आगाज इस दिलकश गजल के साथ।

0: मिताली सिंह की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे चंद गज़लें। श्रोताओं, इसके साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे फिल्म संगीत।
1: आकाशवाणी जमशेदपुर का लाइव फोन इन कार्यक्रम
2: हेलो डॉक्टर,
1: सुनिए हर माह के आखिरी बुधवार को रात 8 बजे से FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर विशेषज्ञों से कीजिए बातें लाइव कार्यक्रम के दौरान और पाइए अपनी समस्याओं से निदान। तो कॉल कीजिए साथियों 0657-2960-445 पर। नंबर एक बार पुनः सुनिए 0657-2960-445 और बातें कीजिए लाइव डॉक्टर के साथ।

आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है श्रोताओं, एफएम बैंड के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय शाम के 4:31 हो चुके हैं और अब आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

भूपेंद्र सिंह की आवाज़ में बाजार फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे। शब्द रचना बशर नवाज की थी और संगीत दिया था खयाम ने।

शंकर महादेवन की आवाज़ में तारे ज़मीन पर इस फिल्म का ये गाना अभी आप सुन रहे थे। इस गाने के बोल लिखे थे प्रसून जोशी ने और इसकी धुन बनाई थी शंकर एहसान लॉय ने। कार्यक्रम में आइए सुनते हैं अगला गाना।

0: प्यासा सावन फिल्म का ये गाना अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की आवाज़ों में। गीत के बोल लिखे थे संतोष आनंद ने और इसकी धुन तैयार की थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।
1: Let's start the fun!

हम आपके हैं कौन इस फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे एसपी बाला सुब्रमण्यम और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। रविंद्र रावल का लिखा गीत और राम लक्ष्मण का संगीत था। कार्यक्रम का आखिरी गीत हमने लिया है आशिकी फिल्म से, अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की मिली जुली आवाज़ों में। शब्द रचना समीर की है और संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

आशिकी फिल्म के इस गाने के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत से मुझे यानी रेडियो दोस्त विभा को दीजिए इजाजत। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। फिल्म संगीत का कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम बैंड के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5 बजने ही वाले हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची से समाचार मुख्यांश।

0: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राज्यसभा की एक सीट के लिए अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी है। पार्टी के केंद्रीय महासचिव और वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने बताया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राज्यसभा चुनाव में वैद्यनाथ राम को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। वैद्यनाथ राम झारखंड सरकार में पहले मंत्री रह चुके हैं। वैद्यनाथ राम फिलहाल झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय समिति के उपाध्यक्ष हैं। इधर राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा ने आज झारखंड विधानसभा में निर्वाचन पदाधिकारी के सामने अपना नामांकन पत्र प्राप्त किया। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर, ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह, कृषि मंत्री शिल्पिनी हातिरकी समेत कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC ने सिविल जज जूनियर डिवीजन प्रारंभिक परीक्षा का संशोधित परिणाम जारी कर दिया है। परीक्षार्थी अपना परीक्षा फल आयोग की आधिकारिक वेबसाइट jpsc.gov.in पर देख सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि कल तक के लिए बढ़ा दी है। CBSE ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि छात्र अब रविवार मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 6 जून तक निर्धारित थी। राज्य में आगामी 28 जून को पल्स पोलियो दिवस के तहत 5 वर्ष तक 61 लाख से अधिक बच्चों को दवा पिलाई जाएगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा ने बताया कि राज्य भर में 24,000 से अधिक बूथ बनाए गए हैं। अधिकारियों ने अभिभावकों से बच्चों को पोलियोरोधी दवा जरूर पिलवाने की अपील की है। लोहरदगा के उपायुक्त संदीप कुमार मीना ने आज जिला विद्युत समिति की बैठक, विद्युत विभाग की दो प्रमुख योजनाओं मुख्यमंत्री उज्जवल झारखंड योजना और संशोधित वितरण क्षेत्र योजना की समीक्षा की। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: समाचार मुख्यांश अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM बैंड के 102.4 MHz पर। शाम के 5:02 हो चुके हैं और वक्त हो रहा है युवा श्रोताओं को संबोधित दैनिक कार्यक्रम युववाणी का, लेकिन उससे पहले लेते हैं विराम और सुनते हैं ये संदेश।
2: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
3: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
4: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
1: इस संदेश के बाद प्रस्तुत है कार्यक्रम युवा।

नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी की 90 वर्षों की गौरवमय यात्रा की परिचर्चा के दूसरे दिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं इस परिचर्चा की सूत्रधार ज्योति और आकाशवाणी से जुड़ी हुई हूं युवावाणी कंपेयर के तौर। आकाशवाणी एक ऐसा संस्थान है जो पिछले 9 दशकों से ज्ञान सूचना से लेकर मनोरंजन तक सब लोगों तक पहुँचाता आया है। देश की विविध सांस्कृतिक परम्पराओं को संरक्षित और प्रसारित करने में अमूल्य योगदान दिया है। समय बदला, तकनीक बदली, संचार के नए माध्यम आए, लेकिन आकाशवाणी की विश्वसनीयता और जनसेवा की भावना आज भी उतनी ही मजबूत है। केवल 2 दिनों के बाद यानी कि 8 जून को बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के आदर्श पर चलते हुए आकाशवाणी को 90 वर्ष हो जाएंगे, जो कि इससे जुड़े हर सदस्य के लिए गौरव की बात है।

0: साल 1936 से शुरू हुई यह यात्रा आज 9 दशकों का महत्वपूर्ण पड़ाव पार कर रही है। इस यात्रा में आकाशवाणी ने अनेक ऐतिहासिक पड़ाव देखे हैं, स्वतंत्रता आंदोलन के दौर से लेकर स्वतंत्र भारत का निर्माण, और आज यह संस्थान भारत को विकसित होने की राह पर दौड़ता हुआ भी देख रहा है। सूचना, शिक्षा, संस्कृति और मनोरंजन, हर क्षेत्र में हमारे संस्थान का योगदान अतुलनीय रहा है। इन वर्षों में क्या बदलाव हुए, कैसे युवा पीढ़ी के लिए मार्गदर्शक है आकाशवाणी, सभी विषयों पर बातें होंगी। हमारी चर्चा के प्रतिभागी हैं युवावाणी कार्यक्रम से जुड़े प्रतीक झा, मानव घोष और सिमरन कुमारी। मैं चाहूंगी आप सभी अपना छोटा सा परिचय दें।
1: नमस्कार, मेरा नाम प्रतीक झा है। वर्तमान में मैं LLB में अध्ययनरत हूँ नेताजी सुभाष विश्वविद्यालय से।
2: नमस्कार श्रोताओं, मेरा नाम मानव घोष है। वर्तमान में जमशेदपुर वर्कर्स कॉलेज से भूगोल की स्नातकोत्तर की पढ़ाई अभी मैं कर रहा हूँ।
3: नमस्कार श्रोताओं, मेरा नाम सिमरन कुमारी है और मैं वर्तमान में करीम सिटी कॉलेज से जनसंचार एवं पत्रकारिता की पढ़ाई कर रही हूँ।
0: सबसे पहले मैं आप सब सदस्यों की राय जानना चाहूंगी कि 90 वर्षों में स्वतंत्रता के बाद आकाशवाणी की राष्ट्र निर्माण में क्या भूमिका रही है और किस प्रकार इस संस्थान ने राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा दिया है। सिमरन, सबसे पहले आपकी राय।
3: जी बिल्कुल ज्योति, सबसे पहले आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरा होने की बहुत बहुत बधाई। मेरे विचार से स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र निर्माण में आकाशवाणी ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उस समय देश में संचार के साधन सीमित थे और हर व्यक्ति तक जानकारी पहुंचाना एक बड़ी चुनौती थी। ऐसे में आकाशवाणी ने देश के विभिन्न हिस्सों को जोड़ने का काम किया। इसने लोगों तक सरकारी नीतियों, शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य और राष्ट्र विकास से जुड़ी जानकारी पहुंचाई। आकाशवाणी ने केवल समाचार ही नहीं दिए बल्कि देश की भाषा, संस्कृति और विविधता को भी एक सूत्र में बांधने का कार्य किया। युद्ध, प्राकृतिक आपदाओं और राष्ट्रीय महत्व के अवसरों पर भी ये लोगों तक विश्वसनीय जानकारी पहुंचाने का प्रमुख माध्यम रहा। मुझे लगता है कि राष्ट्र निर्माण केवल इमारतों और सड़कों से नहीं होता बल्कि जागरूक और शिक्षित नागरिकों से होता है, और इस दिशा में आकाशवाणी का योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा है।
0: प्रतीक, आपकी इस विषय पर क्या राय है?
1: प्रसारण की भाषाओं की संख्या और उसके द्वारा प्रदान की जाने वाली सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विविधता के मामले में दुनिया के सबसे बड़े प्रसारण संगठनों में से एक ऑल इंडिया रेडियो की होम सेवा में देश भर में स्थित 591 प्रसारण केंद्र शामिल हैं, जो लगभग 92% को कवर करते हैं। देश का क्षेत्रफल और कुल जनसंख्या का 99.19% स्थलीय प्रसारण के जरिए यह 23 भाषाओं और 182 बोलियों में कार्यक्रम प्रस्तुत करती है, जो भारत की व्यापक सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक विविधता का सजीव प्रतिबिंब है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विभिन्न रियासतों के विलय और विभाजन के दर्द से उबरने के दौरान आकाशवाणी ने देश को एक साझा ध्वनि से जोड़ा। राष्ट्रीय समाचारों और प्रादेशिक भाषाओं के कार्यक्रमों ने विविधतापूर्ण भारतीय समाज में बंधुत्व और राष्ट्रीय पहचान की भावना को मजबूत किया। जब देश का विभाजन हुआ, चारों तरफ सांप्रदायिक तनाव था, देश में भयंकर गरीबी थी और साक्षरता दर मात्र 12% के आसपास थी, इस संकट की घड़ी में आकाशवाणी देश की आवाज बना। जब 1960 के दशक में भारत में अन्न का संकट था, तब आकाशवाणी ने कृषि दर्शन और आधुनिक कृषि चौपाल जैसे कार्यक्रमों के जरिए देश के अशिक्षित और सीधे साधे किसानों को आधुनिक खेती, उन्नत बीजों और वैज्ञानिक तरीकों की जानकारी दी। भारत को खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाने में आकाशवाणी की भूमिका को कभी भुलाया नहीं जा सकता। हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन के नवीनतम विचारों को घर घर पहुंचाया। माननीय प्रधानमंत्री ने 2014 से प्रसारित मासिक कार्यक्रम मन की बात के लिए इसी आकाशवाणी के मंच को चुना, क्योंकि इसकी पहुंच जन जन तक है। इसकी पहुंच आज भी भारत के भूगोल की सीमाओं से परे है।
0: जी बिल्कुल प्रतीक, मैं आपकी बात से सहमति रखती हूँ। मानव, अब मैं आपके विचार जानना चाहूंगी।
2: सबसे पहले तो सभी श्रोताओं को आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष पूरे होने पर बहुत बहुत बधाई। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने आकाशवाणी के लिए कहा था, यह आकाश से आने वाली वह वाणी है जो हर घर के आंगन में उतरती है, और आज 90 साल बाद भी यह बात शत प्रतिशत सच है। 1936 से लेकर आज तक आकाशवाणी सिर्फ सूचना का एक माध्यम ही नहीं, यह भारत की धड़कन रही। स्वतंत्रता के बाद जब हमारा देश निर्माण के दौर से गुजर रहा था, तब देश को भौगोलिक और भावनात्मक रूप से जोड़ने का काम आकाशवाणी ने ही की। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक ही आवाज गूंजती थी, सूचना, शिक्षा और मनोरंजन को लेकर एक साथ चलने की जो नींव आकाशवाणी ने रखी, उसी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को सुदृढ़ किया।
0: जी बिल्कुल, अब मैं आगे बढ़ती हूँ। भारत में शिक्षा का स्वरूप आधुनिक डिजिटल और कौशल आधारित व्यवस्था में परिवर्तित हो चुका है। भारत की शिक्षा व्यवस्था अब केवल डिग्री हासिल करने के माध्यम से ऊपर उठकर व्यक्तिगत और मानसिक विकास का जरिया बनती जा रही है। सरकार, शिक्षक और तकनीक के इस त्रिकोणीय मेल ने देश को वैश्विक स्तर पर एक ज्ञान महाशक्ति बनाने की दिशा में अग्रसर किया है। आकाशवाणी में भी शिक्षा संबंधित कई कार्यक्रम होते हैं, जिसका लाभ दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को मिलता है। प्रतीक, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि शिक्षा के क्षेत्र में आकाशवाणी की क्या भूमिका रही है।
1: 90 वर्षों की इस यात्रा में समय बदला, तकनीक बदली और आकाशवाणी ने भी खुद को बदला। जब लोगों ने कहा कि टीवी और इंटरनेट के आने से रेडियो खत्म हो जाएगा, तब आकाशवाणी ने एक नई करवट ली। आकाशवाणी ने भारत के सुदूर और ग्रामीण इलाकों में जहां स्कूल या बुनियादी ढांचे की कमी थी, शिक्षा को घर घर पहुंचाने का काम किया। इसका सबसे बड़ा फायदा समाज के वंचित वर्गों को हुआ। स्कूल ब्रॉडकास्ट, विभिन्न शिक्षा बोर्डों राज्य के साथ मिलकर पाठ्यक्रम पर आधारित रेडियो लेसन्स प्रसारित किए गए। क्लासरूम की पढ़ाई को और रोचक बनाया गया। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के साथ साझेदारी दूरस्थ शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ज्ञानवाणी जैसे FM चैनलों की शुरुआत की गई। इसके माध्यम से कॉलेज और यूनिवर्सिटी स्तर के लेक्चर सीधे छात्रों तक पहुंचे। COVID-19 लॉकडाउन में प्रसारित कार्यक्रम रेडियो पाठशाला का संचालन किया गया, जो बहुत सफल रहा।
0: जी प्रतीक, आपके विचार से हमें काफी कुछ जानने को मिला। शिक्षा के साथ साथ कृषि के क्षेत्र में भी हमारे संस्थान का अमूल्य योगदान रहा है। भारतीय किसानों के लिए सूचना, शिक्षा और मार्गदर्शन का सबसे भरोसेमंद

0: और सशक्त माध्यम रही है आकाशवाणी। मानव, कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में आकाशवाणी की क्या भूमिका रही है?
1: जी ज्योति, कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में आकाशवाणी की भूमिका सराहनीय है। जैसा कि गांधी जी ने कहा था, भारत की आत्मा उसके गांव में बसती है। उस दौर में जब मीलों तक कोई पक्की सड़क या इंटरनेट नहीं था, तब आकाशवाणी ने दुर्गम इलाकों तक पहुंचकर गांव के किसानों को कृषि की नई तकनीकों और विज्ञान से जोड़ा और देश की हरित क्रांति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रेडियो ने गांव के पूरे सामाजिक और आर्थिक ढांचे को मजबूत किया। गांव की चौपालों पर बजने वाले रेडियो ने ही लोगों को पंचायती राज, स्वरोजगार, स्वच्छता और उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया। सही मायनों में अगर मैं कहूं तो आकाशवाणी ने गांव के अंतिम व्यक्ति तक विकास की किरण पहुंचाकर एक सच्चे मार्गदर्शक के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
2: मैं आपकी बात से सहमत हूं मानव, पर आकाशवाणी ने कृषि के साथ साथ एक स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण में भी हमेशा एक सच्चे स्वास्थ्य मित्र की भूमिका निभाई है। पल्स पोलियो का टीकाकरण हो, परिवार नियोजन की बात हो, या फिर हमारी ग्रामीण महिलाओं और बच्चों में पोषण और स्वच्छता को लेकर जागरूकता लानी हो, आकाशवाणी की आवाज हर घर के आंगन में पहुंची है। COVID-19 जैसी आपदाओं के दौरान जागरूकता फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
0: जी बिल्कुल, मैं आप दोनों की बात से बिल्कुल सहमति रखती हूँ। आज हमारा भारत हर क्षेत्र में आगे है और धीरे धीरे विज्ञान के क्षेत्र में भी हम अपना प्रभुत्व स्थापित करने की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। प्रतीक, मैं जानना चाहूंगी कि देश के वैज्ञानिक चेतना के प्रसार के लिए किस प्रकार आकाशवाणी ने योगदान दिया है।
3: देश में वैज्ञानिक चेतना के प्रसार के लिए विज्ञान लोकप्रियकरण किया गया है, जैसे रेडियोस्कोप, विज्ञान पत्रिका पर चर्चा जैसे साप्ताहिक कार्यक्रमों के जरिए खगोल विज्ञान, भौतिकी और जीव विज्ञान के जटिल सिद्धांतों को सरल कहानियों और रूपकों में समझाया गया। डॉक्टरों के साथ लाइव टॉक शो आयोजित किए गए। वैज्ञानिकों के साथ मिलकर भी कई विशेष भेंटवार्ता आयोजित की जाती है जो अंधविश्वास और कुरीतियों पर प्रहार है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अभियानों का सजीव प्रसारण भारत के अंतरिक्ष मिशन चंद्रयान, मंगलयान की लाइव कमेंट्री, वैज्ञानिकों की राय प्रसारित कर देश की युवा पीढ़ी में विज्ञान और अनुसंधान के प्रति भारी उत्सुकता और गर्व की भावना जगाई है।
0: जी बिल्कुल, मैं चाहूंगी कि हमारा देश विज्ञान के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़े। जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तब भारत की ऐसी कल्पना करते हैं जो आर्थिक, वैज्ञानिक और सामाजिक रूप से दुनिया का नेतृत्व करे। विकास की इस गाड़ी को चलाने में पूरा सहयोग रहा है देश की आधी आबादी कही जाने वाली महिलाओं का। आज के डिजिटल युग में महिला सशक्तिकरण के संदेश को जन जन तक पहुंचाने में आकाशवाणी कितना प्रासंगिक है। मानव, इस विषय पर आपकी क्या राय है?
1: ज्योति, आकाशवाणी ने दशकों से बेटियों और युवतियों को एक स्वतंत्र और मुखर आवाज दी है। जरा सोचिए उन लड़कियों के बारे में जिनकी दुनिया एक समय सिर्फ घर की चार दीवारी तक ही सीमित मानी जाती थी, लेकिन आज जब वही युवती युववाणी के मंच पर आकर पूरी बेबाकी से अपने विचार रखती है तो वो केवल बोलती नहीं है बल्कि अपने जैसी हजारों लाखों युवतियों की खामोशी और झिझक की जंजीरें तोड़ती है।
2: बिल्कुल मानव, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। युववाणी के मंच पर अपनी बात रखने वाली गांव की लड़कियों से लेकर रेडियो पर गूंजती सफल महिला उद्यमियों कहानियों ने अनगिनत युवतियों को बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने की हिम्मत दी है। सही मायनों में यह महिला सशक्तिकरण का एक जीता जागता उदाहरण है।
0: जी बिल्कुल, आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं और देश के विकास में सबसे बड़ी भागीदारी है युवाओं की। प्रतीक, मैं जानना चाहूंगी कि आधुनिक भारत के निर्माण में आकाशवाणी किस प्रकार युवाओं का मार्गदर्शन कर रही है।
3: आधुनिक भारत के निर्माण में आकाशवाणी युवा पीढ़ी के एक सच्चा मार्गदर्शक के रूप में उभरी है। आज की डिजिटल भागदौड़ और इन्फॉर्मेशन ओवरलोड के जमाने में जहां युवा पीढ़ी अक्सर दिशा भ्रमित महसूस करती है, वहां आकाशवाणी एक भरोसेमंद मार्गदर्शक की भूमिका निभा रहा है। अगर हम करियर और कौशल विकास की बात करें, युवाओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती सही करियर चुनना और रोजगार पाने की होती है, तो विशेषज्ञों की सलाह, आकाशवाणी पर नियमित रूप से करियर काउंसलिंग, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी जैसे यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के इंटरव्यू प्रसारित किए जाते हैं। मानसिक स्वास्थ्य और भटकाव से मुक्ति, आज के युवा एंग्जाइटी, डिप्रेशन और अकेलेपन का सामना कर रहे हैं, तो इसके लिए आकाशवाणी उनमें सकारात्मकता का संचार करती है। आकाशवाणी के सुबह के कार्यक्रम जैसे अमृत वर्षा या विचार प्रधान कार्यक्रम युवाओं को मानसिक शांति और सकारात्मक सोच की प्रेरणा देते हैं। सांस्कृतिक जड़ों और नैतिक मूल्यों से जुड़ाव, नाटकों और कहानियों के जरिए युवाओं में ईमानदारी, देश प्रेम और सामाजिक जिम्मेदारी जैसे मूल्यों को अनजाने में ही कूट कूट कर भर दिया जाता है। आज फेक न्यूज की बाढ़ आई हुई है जिससे युवा जल्दी गुमराह हो जाते हैं। आकाशवाणी समाचार आज भी देश का सबसे विश्वसनीय समाचार स्रोत है। सही और सटीक जानकारी दी जाती है, तथ्य और सत्य प्रस्तुत किया जाता है जो युवाओं को एक जागरूक नागरिक बनाता है।
2: प्रतीक, आपने सही कहा, आज के डिजिटल युग में युवाओं के पास जानकारी के अनगिनत स्रोत है। एक क्लिक पर हजारों जानकारियां उपलब्ध हो जाती है, लेकिन इतनी अधिक जानकारी के बीच सही, विश्वसनीय और सार्थक जानकारी चुनना आसान नहीं है। ऐसे समय में आकाशवाणी एक ऐसे माध्यम के रूप में सामने आती है जिस पर लोग भरोसा करते हैं। यह केवल सूचना नहीं देती बल्कि जानकारी को जिम्मेदारी और विश्वसनीयता के साथ लोगों तक पहुंचाती है। मुझे लगता है कि आधुनिक युवा पीढ़ी के लिए आकाशवाणी का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि यह केवल करियर या शिक्षा की बात नहीं करती बल्कि व्यक्तित्व विकास, सामाजिक जागरूकता, सांस्कृतिक मूल्यों और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी जैसे विषयों पर भी ध्यान देती है। आज जब युवा अपने भविष्य को लेकर कई तरह की चुनौतियों और विकल्पों के बीच खड़ी है, तब उन्हें सही दिशा दिखाने वाली मंचों की आवश्यकता है और आकाशवाणी ये भूमिका बखूबी निभा रही है।
0: इस विषय पर आप दोनों की राय वाकई काबिले तारीफ है। जैसा कि हमने कुछ देर पहले स्वास्थ्य के बारे में चर्चा की थी, और स्वास्थ्य की बात की जाए तो खेल की बात कैसे न की जाए। मानो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि खेल जगत में आकाशवाणी की क्या भूमिका है।
1: खेल जगत में आकाशवाणी का योगदान अतुलनीय है। आकाशवाणी ने दशकों से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं का प्रसारण कर हर देशवासी को खेल के मैदान में रोमांच से जोड़े रखा है। हम सभी ने बचपन में रेडियो पर क्रिकेट और हॉकी की जो आंखों देखी कमेंट्री सुनी है, उसी ने न जाने कितने युवाओं के भीतर खेल का जुनून पैदा किया है। कई खिलाड़ियों की प्रेरणादायक कहानियों ने रेडियो के माध्यम से घर घर पहुंचकर युवाओं में एक नया जोश भरा है।
0: जी बिल्कुल, पर खेल केवल पदक जीतने या रिकॉर्ड बनाने तक सीमित नहीं है बल्कि यह व्यक्ति के समग्र विकास का भी एक महत्वपूर्ण माध्यम है। खेल हमें अनुशासन, नेतृत्व, टीम वर्क और आत्मविश्वास जैसे गुण सिखाता है जो मानव विकास के आधार हैं। इसी संदर्भ में मैं मानव संसाधन विकास से जुड़े अगले प्रश्न पर बढ़ते हुए प्रतीक की राय सुनना चाहूंगी।
3: मानव संसाधन के विकास, कौशल निर्माण और सशक्तिकरण में आकाशवाणी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। मानव संसाधन को स्वस्थ रखने के लिए शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषण और टीकाकरण से जुड़े कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाता है जिससे लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है। सरकार द्वारा मानव संसाधन विकास के लिए चलाई जा रही योजनाओं को जनता तक पहुँचाने का काम आकाशवाणी बखूबी करता है। कल्याणकारी योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, मेक इन इंडिया, मुद्रा योजना, जनधन योजना जैसी पहलों की जानकारी सीधे लाभार्थियों तक पहुंचाई जाती है ताकि युवा उनका लाभ उठाकर आत्मनिर्भर बन सके। नागरिक चेतना, इसके माध्यम से लोगों को वित्तीय साक्षरता, डिजिटल बैंकिंग और साइबर सुरक्षा के प्रति भी जागरूक किया जाता है। भाषाई प्रसारण से समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति तक भी उसकी अपनी भाषा में ज्ञान पहुँचता है जिससे उसमें आत्मविश्वास और देश के प्रति उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है।
0: अब तक की हमारी इस आपसी बातचीत का सत्र काफी रोमांचक रहा है। अब आगे बढ़ते हुए मैं कार्यक्रम का आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी। हमने बात की महिलाओं की, युवाओं की और कृषि जगत की। अब मानव, मैं आपकी राय जानना चाहूंगी कि किस प्रकार आकाशवाणी बच्चों के सर्वांगीण विकास में अपना योगदान दे रही है।
1: देखिए, बच्चे ही किसी देश के उज्जवल भविष्य होते हैं और भारत के उज्जवल भविष्य की सबसे मजबूत आधारशिला हमारे बच्चे ही हैं। और जब बात इनके सर्वांगीण विकास की आती है तो आकाशवाणी का इन पर जो जादू चलता है वो वास्तव में अद्भुत, अद्वितीय और प्रेरणादायक है। जब एक बच्चा रेडियो पर बाल कार्यक्रम
4: नाटक या पंचतंत्र की कहानियां सुनता है तो वह उन दृश्यों को अपने दिमाग में खुद गढ़ता है। रेडियो बच्चों की कल्पना शक्ति को उड़ान देने का एक खुला मंच है। इनके इसके साथ ही महापुरुषों की कहानियों और शैक्षणिक कार्यक्रमों के जरिए आकाशवाणी ने बच्चों में संस्कार और नैतिक मूल्यों में भी वृद्धि की है। सही मायनों में एक बच्चे के मानसिक और बौद्धिक विकास में आकाशवाणी एक सशक्त शिक्षक की भूमिका निभाता आ रहा है। आकाशवाणी का 90 वर्षों का सफर केवल तकनीकी विकास का सफर नहीं है, यह भारत के उठ खड़े होने, आगे बढ़ने और विश्व पटल तक पहुंचने का सफर है। राष्ट्र निर्माण से लेकर युवा मार्गदर्शन, कृषि से लेकर विज्ञान और महिला सशक्तिकरण से लेकर बच्चों के विकास तक आकाशवाणी ने समाज के हर वर्ग को जोड़ने और आगे बढ़ने का कार्य किया है। अपनी बात मैं इस पंक्ति के साथ आगे बढ़ाना चाहूँगा कि 90 वर्षों में भारत ने जो भी सपने देखे हैं, आकाशवाणी ने उन्हें आवाज दी है और आज भी युवा पीढ़ी के साथ आकाशवाणी कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह तैयार है।
2: सही कहा मानव, मेरे विचार से आकाशवाणी की 90 वर्षों की यात्रा इस बात का प्रमाण है कि विश्वसनीय और जनहितकारी संचार की आवश्यकता कभी समाप्त नहीं होती। बदलते समय के साथ आकाशवाणी ने स्वयं को लगातार विकसित किया है और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। मुझे लगता है कि आने वाले वर्षों में भी ये युवाओं और समाज के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु बना रहेगा।
0: आप सभी के साथ आपसी बातचीत का यह सत्र बहुत अच्छा रहा। आज भले ही हम डिजिटल क्रांति के युग में जी रहे हैं, जहां सूचना उंगलियों पर है, हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि जब इस देश का लोकतंत्र शैशव अवस्था में था, तब आकाशवाणी ने ही उसे चलना सिखाया था। इसने देश की रगों में राष्ट्रवाद का संचार किया। यह सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं बल्कि आधुनिक भारत के निर्माण की धड़कन है, जिसने हर भारतीय के भीतर एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने को जीवित रखा है। 90 वर्षों का यह सफर केवल एक रेडियो स्टेशन का सफर नहीं है, बल्कि यह स्वतंत्र भारत की धड़कन, हमारी संस्कृति और हमारी आवाज का सफर है। चाहे वह खेती बाड़ी की जानकारी हो, आपातकाल में देश का हौसला बढ़ाना हो या मन की बात के जरिए जन जन तक पहुँचना हो, आकाशवाणी हमेशा हमारा सबसे विश्वसनीय साथी रहा है।

0: आपने अभी सुना 2013 में आई फिल्म काइपोचे का गीत मांझा, जिसके गीतकार थे स्वानंद किरकिरे, संगीतकार थे अमित त्रिवेदी और इस गीत में अपनी आवाज दी अमित त्रिवेदी और मोहन कन्नन ने। आज डिजिटल युग और सोशल मीडिया के दौर में भी इसकी विश्वसनीयता और इसकी आवाज का जादू कम नहीं हुआ है, बल्कि यह नए रूपों में हमारे सामने आ रहा है। मैं अपने सभी वक्ताओं का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने आज इस मंच से आकाशवाणी के गौरवशाली अतीत, जीवंत वर्तमान और संभावनाओं से भरे भविष्य पर इतने महत्वपूर्ण विचार रखे। ऐसे कई अधूरे विचार थे जिसे आकाशवाणी ने समझा और उड़ान दी। जैसा कि महाकवि जयशंकर प्रसाद ने महाकाव्य कामायनी में लिखा था, शक्ति के विद्युतकरण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं, हो निरुपाय समन्वय उसका करे, समस्त विजयनी मानवता हो जाए। आप सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: कार्यक्रम युववाणी अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम बैंड के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5:30 हो चुके हैं और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम कल कारखाने।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

दोस्तों, फैक्ट्रियों में काम करने वाले श्रमिक देश की प्रगति की मजबूत नींव हैं, लेकिन कई बार लापरवाही या सुरक्षा नियमों की अनदेखी के कारण हादसे हो जाते हैं। ऐसे हादसों को रोकने के लिए सरकार ने कई कानूनी प्रावधान बनाए हैं। श्रोताओं, भारत में कारखाना अधिनियम 1948 तथा नए श्रम कानूनों के तहत फैक्ट्रियों में कर्मचारियों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है। मशीनों में सुरक्षा गार्ड, आग बुझाने के उपकरण, आपातकालीन निकास और साफ सफाई की व्यवस्था अनिवार्य की गई है। साथ ही कर्मचारियों को हेलमेट, दस्ताने और अन्य सुरक्षा उपकरण देना भी जरूरी है। नियमित सुरक्षा प्रशिक्षण और समय समय पर निरीक्षण से यह सुनिश्चित किया जाता है कि कार्यस्थल सुरक्षित रहे। श्रोताओं, सुरक्षा केवल नियम नहीं बल्कि जीवन की रक्षा का सबसे बड़ा माध्यम है। इसलिए मालिक और कर्मचारी दोनों की जिम्मेदारी है कि सुरक्षा नियमों का पालन करें। सुरक्षित कार्यस्थल ही बेहतर उत्पादन और श्रमिकों के जीवन की रक्षा करता है। कारखाना अधिनियम 1948 के साथ साथ व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यस्थल परिस्थितियां संहिता 2020, एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट 1923, सुरक्षा उपकरण अनिवार्य, नियमित सुरक्षा प्रशिक्षण, फैक्ट्री निरीक्षण और दुर्घटना होने पर मुआवजा, ये सभी कार्यस्थल पर श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। तो श्रोताओं, हमारी नगरी औद्योगिक नगरी है, जहां बड़े उद्योगों के साथ साथ छोटे छोटे कल कारखाने भी हैं। हमारे शहर में श्रमिकों के हादसे से सुरक्षा के उपाय अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि स्वस्थ और सुरक्षित श्रमिक ही बेहतर उत्पादन में सहयोग कर सकता है।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: बहरहाल श्रोताओं, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे। इम्तिहान फिल्म के गीत के साथ किशोर कुमार को हम सुनेंगे। इस गीत में शब्द रचना मजरूह सुल्तानपुरी की और संगीत निर्देशन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

आपने सुना इम्तिहान फिल्म में किशोर कुमार को शब्द शब्द रचना थे मजरूह सुल्तानपुरी की और संगीत निर्देशन था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: श्रोताओं बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे, लेते हैं जानकारी वार्ता के जरिए। विषय है कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, एक जानकारी। जानकारी दे रहे हैं प्रणव कुमार चटर्जी।
2: दुर्घटनाएं बिना किसी सूचना के कभी भी कहीं पर भी और किसी के साथ घट सकती है। आए दिन हम रेल दुर्घटना, हवाई जहाज से दुर्घटना तथा सड़कों पर प्रतिदिन दुर्घटनाएं की खबर अखबारों में छपते रहते हैं। आज ऐसा लगता है कि दुर्घटनाएं ही मृत्यु का सबसे बड़ा कारण बन गया है। समुचित सावधानियां बरतने से दुर्घटनाओं की संख्या में बहुत हद तक कमी होती है, परंतु सभी दुर्घटनाओं का कारण मात्र असावधानता ही नहीं परंतु अन्य कारणों से भी हम दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। निरंतर बढ़ते हुए औद्योगिकरण, कम लागत से ज्यादा मुनाफा कमाने की इच्छा, नए और बिना प्रशिक्षण प्राप्त प्रबंधकों के कारण भी बहुत सारे दुर्घटनाएं आए दिन हो रहे हैं। ठेकेदार द्वारा उद्योगों में काम कराने की कोशिश भी दुर्घटनाओं के बढ़ने का एक मुख्य कारण है। कारखाना अधिनियम से स्पष्ट रूप से व्याख्या किया हुआ है, जिसमें काम का समय, ओवर टाइम में काम कराने का समय सीमा, कारखाने में बिना जूता और हेलमेट के प्रवेश पर रोक, मशीनों का समय समय पर निरीक्षण, मशीनों का समुचित दूरी, ये सारे नियम साफ तरीके से लिखा हुआ है। परंतु देखा जाता है कि कोई कीमती मशीन, टैंक आदि मामूली खराब या लीकेज होने के बावजूद उसे ज़्यादा खर्च के डर से प्रबंधक श्रमिकों से चलाते रहते हैं। कारखानों के अंदर जहाँ पर कुशल श्रमिकों की जरूरत है, कम पैसा देकर ठेकेदार द्वारा काम कराया जाता है। यह सब भी उद्योगों में दुर्घटना के कारण बनते हैं। कारखाने में अक्सर थोड़ी सी भूल चूक से छोटी मोटी दुर्घटनाएं होती रहती है, परंतु कभी किसी एक ही व्यक्ति की छोटी सी चूक का खामियाजा बहुत से लोगों को भरना पड़ जाता है तथा बड़ी दुर्घटनाएं घट जाती है। कोई भी घटना बिना किसी कारण के नहीं घटती। कारखानों में भी दुर्घटनाओं के पीछे कुछ न कुछ कारण अवश्य ही रहता है। उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों में ऐसा भी सुनने में आता है कि रात्रि पाली में कोई श्रमिक नशीली पदार्थ सेवन कर कार्य पर पहुंच गया। किसी श्रमिक का घरेलू कारण से मानसिक अवस्था बिगड़ा हुआ चल रहा है, परंतु आर्थिक कारणों से कार्य पर जाना पड़ा हो, लगातार 8 घंटा काम करने के बाद अगर दूसरा पाली भी उसे दिया जाता है तो यह सभी दुर्घटनाओं को जन्म देने का कारण बन जाते हैं। उद्योगों में दुर्घटनाएं किसी भी कारण से क्यों ना हो, दुर्घटना हो जाने पर संबंधित श्रमिक को क्षतिपूर्ति देने का प्रावधान कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के द्वारा प्रबंधक को देना पड़ता है। यह प्रावधान सन 1923 में बनाया गया था। शुरू में इसमें बहुत सी खामियां थी, लेकिन अब समय के साथ इसमें संशोधन कर इसे सही रूप दिया गया है। कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम का उद्देश्य श्रमिकों को कार्य क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त होने पर सुरक्षा प्रदान करना है। यह मालिकों द्वारा किसी भी प्रकार दया या दान से पूर्ण रूपेण अलग तथा बाध्यता मूलक है। इस कानून के तहत प्रबंधकों की गलती, श्रमिकों की लापरवाही पर किसी भी प्रकार का जवाबदेही नहीं बनता है तथा हर परिस्थिति में दुर्घटनाग्रस्त श्रमिक को क्षतिपूर्ति प्रबंधक को देना ही पड़ेगा। वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के धारा 3 में कारखाना प्रबंधक की जिम्मेदारी के संबंध में पूरी तरह से व्याख्या की गई है। इसके द्वारा कारखाने में कार्य के दौरान किसी भी प्रकार के दुर्घटना होने पर श्रमिक को क्षतिपूर्ति देने का दायित्व तो प्रबंधक को है। दुर्घटना के अलावा अगर कोई कार्य के कारण से किसी भी बड़े बीमारी का शिकार होता है तो ऐसे क्षेत्र में भी क्षतिपूर्ति देने के लिए प्रबंधक बाध्य है। पहले यह धारा कारखाने के अंदर ही कार्यरत अवस्था में दुर्घटना होने पर देय था, परंतु वर्तमान समय में अगर कोई श्रमिक अपने कार्य पर जाने के लिए घर से निकला हो और रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त हो गया हो, या कार्य समाप्ति के बाद घर जाने के राह पर ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया हो, तो वह श्रमिक क्षतिपूर्ति का हकदार हो जाता है। वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 के धारा 4 में क्षतिपूर्ति के रकम जो दे होगा के संबंध में विस्तार से दिया गया है। कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम जो कि 2010 में संशोधन किया गया, पहले 4,000 रुपया का 50% से कैलकुलेट कर क्षतिपूर्ति दिया जाता था, जो कि 2010 में संशोधन होकर 8000 रुपया का 50% कर दिया गया है। इस धारा में यह दिया हुआ है कि अगर दुर्घटना के कारण मृत्यु हो गई हो तो उसे उसके वेतन, काम का वर्ष अर्थात अवधि, दुर्घटना के समय आयु तथा परिवार से संबंधित श्रमिक पर निर्भर परिवार के सदस्यों की संख्या, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्षतिपूर्ति के रकम को निर्धारित किया जाता है। हमारे देश में बड़े बड़े कारखानों में इस नियम के आधार पर क्षतिपूर्ति नहीं दिया जाता है, बल्कि उसे बड़े उद्योगों में मालिक और यूनियन मिलकर और भी उपयोगी क्षतिपूर्ति का प्रावधान बनाए हुए हैं। अगर किसी श्रमिक के दुर्घटनाग्रस्त होने पर प्रबंधक उसे क्षतिपूर्ति नहीं देते हैं या कम देते हैं, तो ऐसे मामलों में श्रमिक या उसके परिवार वाले संबंधित आयुक्त के पास आवेदन दे सकते हैं, जिसकी समय सीमा घटना से 2 वर्ष के भीतर होना चाहिए। किसी विशेष क्षेत्र में यह समय सीमा बढ़ाया भी जाता है, जिसके लिए कमिश्नर के पास उनके कारण का प्रार्थना पत्र दाखिल करना होगा। कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम के धारा 10B के उपधारा 1 में प्रबंधक को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वह ऐसे दुर्घटना जिससे मृत्यु या बड़े ढंग का शारीरिक हानि हुआ हो के सूचना संबंधित पदाधिकारी को सूचित करे। इसके अलावे अगर दुर्घटना के कारण श्रमिक को शारीरिक क्षति हुई है, यानी अंगली से लेकर हाथ पैर का कटना शामिल है, के संबंध में अलग अलग क्षतिपूर्ति का प्रावधान है, जिसे डॉक्टरी रिपोर्ट के आधार पर कंपनसेशन निपटने हेतु अधिकृत कमिश्नर तय करते हैं। कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम जो कानूनन है, ऐसे तमाम कारखानों पर लागू नहीं होगा जहां पर कर्मचारी राज्य बीमा योजना 1948 लागू हो चुका है। किसी भी कारखाने में 20 से अधिक श्रमिक काम करते हैं तो उस कारखाने पर कर्मचारी राज्य बीमा योजना लागू होता है। ऐसे उद्योगों के श्रमिकों को कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत श्रमिकों को आमतौर पर वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट में दिए गए सुविधाओं के अनुसार ही दिया जाता है, परंतु कुछ मामलों में उससे ज्यादा क्षतिपूर्ति दे है। इसका पूर्ण विवरण हमें कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के धारा 46 चैप्टर 5 में विस्तार से मिलेगा। दुर्घटना के कारण मृत्यु होने पर संबंधित श्रमिक के परिवार वालों को भविष्य निधि योजना के अंतर्गत भी एक मुश्त बीमा राशि दी जाती है। उद्योगों में होने वाले दुर्घटना में श्रमिक पहले उप श्रमायुक्त के यहाँ आवेदन करते थे एवं उसका भुगतान उप श्रमायुक्त के कार्यालय से ही होता था। 2011 में इसमें संशोधन किया गया एवं सरकार के द्वारा नोटिफिकेशन के अंतर्गत अब श्रमिकों को उप श्रमायुक्त के यहाँ आवेदन न करके पीठासीन पदाधिकारी श्रम न्यायालय में आवेदन कर क्षतिपूर्ति का दावा कर सकते हैं। उद्योगों में होने वाले दुर्घटना के लिए अब श्रमिक पीठासीन पदाधिकारी श्रम न्यायालय में अपना दावा पत्र दे सकते हैं। उद्योगों में दुर्घटना कम करने के लिए यह जरूरी है कि प्रबंधक शिक्षित प्रशिक्षण प्राप्त मैनेजर एवं सुपरवाइजरों की नियुक्ति करें और समय समय पर संबंधित अफसरों को नए नए शोध व सुरक्षा के लिए प्रशिक्षित करें। इसके अलावा श्रमिकों के बीच से कुछ लोगों को प्राथमिक चिकित्सा के संबंध में प्रशिक्षित करना चाहिए, जिन्हें उचित रूप से हर पाली में रखा जाए। दुर्घटना होने पर अविलंब संबंधित विभाग को सूचित करना एवं उचित क्षतिपूर्ति देने के लिए तत्पर रहना। जिस किसी उद्योग में कर्मचारी राज्य बीमा योजना लागू है, वहाँ किसी भी नए कर्मचारी के नियुक्ति के दिन से ही उक्त बीमा योजना का सदस्य बनाना चाहिए। उद्योगों में सुरक्षा नियमों को कड़ाई से लागू किया जाए तथा मशीनों के छोटी से छोटी खराबियों को भी नजरअंदाज नहीं कर तुरंत उसे रिपेयरिंग कराना चाहिए। उद्योगों में होने वाले दुर्घटना के बाद क्षतिपूर्ति देने के नियमों

आप सुन रहे थे वार्ता, कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम एक जानकारी। जानकारी दे रहे थे प्रणव कुमार चटर्जी। हम आपको बता दें श्रोताओं, इस वार्ता का पुनः प्रसारण किया गया।

श्रोता साथी, केंद्र सरकार का अटूट समर्पण का 12 वर्ष भारत के विकास की उस यात्रा को दर्शाता है जिसमें निरंतर नीति निर्माण योजनाओं के क्रियान्वयन और जन कल्याण को प्राथमिकता दी गई है। इन 12 वर्षों में बुनियादी ढांचे का विस्तार, डिजिटल इंडिया को बढ़ावा, सामाजिक कल्याण योजनाओं का सशक्त क्रियान्वयन तथा देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कई महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं। ये अवधि सरकार के अनुसार सेवा, सुशासन और विकास के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता का प्रतीक माना जाता है।

श्रोताओं, इसी के साथ कल कारखाने का आज का ये अंक यहीं संपन्न होता है। दीजिए अपने दोस्त स्नेहलता को अनुमति। आप सभी को मेरा नमस्कार।

कार्यक्रम कल कारखाने अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम बैंड के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6 बजने ही वाले हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से समाचारों का प्रसारण। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने के उपायों पर चर्चा हुई। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने देश की आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित विषयों पर विचार विमर्श किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऐसे समय में जब कई देश आर्थिक अनिश्चितताओं का सामना कर रहे हैं, भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी विशिष्टता बनाए हुए है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास को स्थिरता, आत्मविश्वास, निरंतरता और विश्वसनीयता के साथ जोड़ा है। युवा और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति है और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है।
1: देश का 65 पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि देश युवा देश है। ये देश की युवा की शक्ति को विकसित भारत के राह पर ले जाने के लिए संयोजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है।
0: संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत की सौर ऊर्जा क्षमता 2.8 गीगावाट से बढ़कर 155 गीगावाट हो गई है। श्री शेखावत ने कहा कि हर घर और हर खेत को ऊर्जा का केंद्र बनाने के संकल्प के साथ भारत 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। कोलकाता के नबन्ना में श्री वैष्णव ने बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्षों में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की घोषणा की। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन झारखंड के 2 दिन के दौरे पर आज रांची पहुंचे। उन्होंने कहा कि झारखंड उनकी जन्म स्थली और दूसरा घर है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और पार्टी के अन्य पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं ने श्री नवीन की यात्रा को संगठन के लिए महत्वपूर्ण बताया। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की है। इससे बाजार में अधिक पारदर्शिता और एकरूपता आएगी। उपभोक्ता कार्य विभाग ने खाद्य तेलों और घी की शुद्ध मात्रा तथा मानक पैक आकार निर्धारित करने संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन किया है। स्वीकृत पैक आकार 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 से 5 किलो, 15 और 20 किलो है। न्यू चंडीगढ़ में भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 3 विकेट पर 368 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल 103 और ऋषभ पंत 50 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। केएल राहुल ने भी 100 रन की पारी खेली। जापान में भारतीय अंडर 18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल

0: Megahara today. For India, Ashish Purthy starred with a hat-trick as skipper Ketan Kushwaha scored the other goal for the winners. Earlier, the Indian women's team clinched the bronze, beating South Korea 3-0. In cricket, India were 368 for 3 in their first innings against Afghanistan at stumps on day 1 in the one-off test match in New Chandigarh. Centuries from K.L. Rahul and Captain Shubman Gill put India in a strong position. Sai Sudarshan also contributed 81 before missing out on a maiden test 100. And with that, we end this news bulletin.
1: अभी आप सुन रहे थे अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से. आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम बैंड के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर. इस समय शाम के 6:10 हो चुके हैं. कुछ ही पलों में आप सुनेंगे झारखंड के लोकगीत, लेकिन उससे पहले लेते हैं विराम और सुनते हैं ये संदेश.
2: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
3: जी,
2: ये KYC अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
3: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर KYC अपडेट करवाना चाहिए.
2: पर ये होगा कैसे?
3: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या ATM या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी BC के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दे.
2: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
3: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर KYC अपडेट करवा सकते हैं.
2: बस
3: बस
2: समझ गया.
3: अपना KYC अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं.
4: RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए.
1: और इस संदेश के बाद प्रस्तुत है कार्यक्रम झारखंड के लोकगीत.
6: कार्यक्रम झारखंड के लोकगीत सुनने वाले सभी सुनी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार, जोहार और बहुत बहुत स्वागत. आइए सुनते हैं सोमराय तिरगी और साथियों के स्वर में उरांव लोकगीत.

0: सोमराय तिर्की और साथियों के स्वर में गाए उड़ाव लोकगीत के साथ ही आज का कार्यक्रम झारखंड के लोकगीत अब यहीं पर संपन्न होता है। निमेश को दीजिए अनुमति।
1: झारखंड के लोकगीत ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है FM बैंड के 102.4 MHz पर। शाम के 6:20 होने ही वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार का प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें।

0: अयरः भारतस्य नूतन T20 दलस्य नायकत्वेन नियुक्तः अपि च तिलक वर्मा उपनायक रूपेण नामांकितः अस्ति बीसीसीआई इत्यनेन प्रथमं वारं वैभव सूर्यवंशी इत्यमुम् अपि दले समाविष्टम् येन गत आईपीएल सत्रे सर्वाधिक धावनांकाः समर्जिताः प्रिंस यादवोपि दले सम्मिलितः अस्ति अद्य मुंबई नगरस्य बीसीसीआई मुख्यालये आयरलैंड इंग्लैंड देशयोः यात्रायै जापान देशे एशियन गेम्स क्रीडायाः कृते तथा च भारत अदलस्य श्रीलंका प्रवासस्य बहुदिवसीय क्रीडायाः कृते दलस्य निर्णयार्थं एषा सभा आयोजिता इति वार्ता
1: आकाशवाणी दिल्ली से संस्कृत में समाचार अभी आप सुन रहे थे ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम बैंड के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर शाम के 6:30 हो चुके हैं और अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम कृषि जगत

एफएम बैंड के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर ज्ञान, सूचना, मनोरंजन और जानकारियों से भरपूर कार्यक्रम कृषि जगत सुनने वाले मेरे प्यारे किसान भाई बहनों, साथ ही कार्यक्रम सुन रहे सभी सुनी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार, जोहार और बहुत बहुत स्वागत। आज के ज्ञानवर्धक अंक के साथ हूं मैं आपका रेडियो मित्र अनिमेश कुमार बक्सी।

0: कृषक मित्रों, आज के अंक में गाय और भैंसों में होने वाले प्रजनन रोग ब्रुसेलोसिस और मानव में होने वाले पशुजन्य रोग जूनोसिस विषय पर सुनिएगा भेंटवार्ता। भेंटवार्ताकार होंगे पशु चिकित्सक डॉक्टर कुंदन। लोक गीतों के साथ सुनिएगा जरूरी सूचनाएं और जानकारियां। लेकिन इन सबसे पहले बातें कर लेते हैं पीएम किसान संतृप्ति अभियान के बारे में। किसान भाई बहनों, पीएम किसान संतृप्ति अभियान का मकसद है पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ सभी कृषक मित्रों और 100% पात्र किसान भाई बहनों तक पहुंचाना। जो किसान भाई बहनों किसान भाई बहन किसी भी वजह से छूट गए हैं उनका नाम भी जुड़वाया जाता है इसमें, केवाईसी और भू उल्लेख ठीक भी कराया जाता है इसे, और इस अभियान का जो नाम है उसे सैचुरेशन अभियान भी कहा जाता है। ये अभियान समय समय पर चलाया जाता रहा है और 22 मई से 10 जून तक ग्राम पंचायत स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत 15 नवंबर 2023 से ही इस अभियान की शुरुआत हुई थी। इसके तहत 1.5 करोड़ नए किसान भाई बहनों को जोड़ा गया था। इस अभियान में क्या क्या काम होता है अब इसके बारे में जान लेते हैं। गांव में शिविर लगाया जाता है। शिविर में ग्राम प्रधान, पंचायत सेक्रेटरी, लेखपाल, कृषि तकनीकी सहायक, सीएससी सेंटर, पोस्ट ऑफिस के लोग मौजूद रहते हैं। सदस्यों को घर घर सर्वे अभियान में भेजा जाता है। ग्राम प्रधान, लेखपाल, पटवारी घर घर जाकर छूटे हुए किसान भाई बहनों की लिस्ट बनाते हैं और फिर EKYC कराया जाता है। OTP या बायोमेट्रिक से KYC कंपलसरी है, बिना KYC के किस्त नहीं आएगी। इसके बाद बैंक खाता आधार से लिंक कराया जाता है। भूलेख या जमीन वेरिफिकेशन होता है। जमीन का रिकॉर्ड ठीक कराना, नामांतरण करवाना, बंटवारा या फिर सारे कार्य जो है ये किए जाते हैं। नया रजिस्ट्रेशन का अगर कार्य है तो वो भी किया जाता है। जो किसान भाई बहन पहली बार जुड़ना चाहते हैं उनका फॉर्म भी भरवाया जाता है। और आइए अब जान लेते हैं कि पीएम किसान योजना का बेसिक क्या क्या है। 2,000 रुपए की 3 किस्तों में सालाना 6,000 रुपए किसान भाई बहनों के खाते में दिए जाते हैं। सभी जमीन वाले किसान भाई बहन 2 हेक्टेयर की लिमिट तक जिनकी जमीन है वो इसके पात्र माने जाते हैं। 24 फरवरी 2019 को यह योजना शुरू हुई थी और अब तक 19 किस्तें जो हैं वो जारी हो चुकी हैं। और आइए अब बताते हैं कि आप अपना नाम इसमें कैसे चेक कर सकते हैं। पहले तो आपको पोर्टल पर जाना होगा pmkisan.gov.in, फार्मर्स कॉर्नर को सिलेक्ट करना होगा, फिर बेनिफिशियरी स्टेटस पर जाकर आप अपना स्टेटस देख सकते हैं। अगर मोबाइल से जानकारी चाहिए तो 1800-11-55-266 टोल फ्री नंबर पर भी जाकर आप अपनी जानकारी साझा कर सकते हैं। और अगर जमशेदपुर या झारखंड के किसान भाई बहन हैं तो वो ध्यान देंगे कि अगर किस्त अटक रही है तो सबसे पहले EKYC आपको कराना होगा और फिर आधार को बैंक से लिंक कराना होगा, तभी पैसा आपका आने लगेगा। मित्रों, यह थी जानकारी पीएम किसान संतृप्ति अभियान के बारे में। और आइए अब आपको गाय और भैंसों में होने वाले प्रजनन रोग ब्रुसेलोसिस और मानव में होने वाले पशुजन्य रोग जूनोसिस विषय पर बाह्य ध्वनि अंकन पर आधारित भेंटवार्ता सुनवाते हैं। भेंटवार्ताकार हैं जमशेदपुर के बोड़ाम क्षेत्र के पशु चिकित्सक डॉक्टर कुंदन, और इनसे बातचीत की है आपके रेडियो मित्र अनिमेश कुमार बक्सी ने। आइए सुनते हैं यह महत्वपूर्ण भेंटवार्ता।
1: ग्रामीण किसान भाई बहनों, आज के कार्यक्रम कृषि जगत में हम बातें करने वाले हैं ब्रुसेलोसिस बीमारी के बारे में, जो कि गाय और भैंसों के प्रजनन रोग के बीमारी है, और साथ ही साथ हम बात करेंगे जूनोसिस के बारे में, जो कि मानव में पशुजन्य रोग का कारक होता है। इस विषय पर जानकारियों को साझा करने के लिए आज हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है डॉक्टर कुंदन। कुंदन जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
2: नमस्कार अनिमेश जी और सभी पशुपालकों भाई को मेरा जोहार।
1: आज हम जानना चाहेंगे आपसे कि ब्रुसेलोसिस बीमारी क्या होती है और साथ ही साथ जूनोसिस के बारे में भी बताइए।
2: ब्रुसेला रोग जो है वो एक संक्रमण रोग है जो जीवाणु से होता है। ये ऐसे तो गाय, बैल, बकरी, भेड़ सब में पाया जाता है, पर पशुपालकों के लिए जो सबसे ज्यादा क्षति और हानि होती है वो हमारे गाय बैलों में होती है।
1: अच्छा।
2: दूसरी बात है कि ये संक्रमित होने के साथ ये जूनोटिक भी है, मतलब पशु से आदमी में, आदमी से पशु में फैल सकता है ये रोग।
1: तो बहुत मतलब भयावह स्थिति हो जाएगी।
2: जी। और पशुपालकों के लिए क्या है, मान लीजिए वो गौ पालन कर रहे तो दूध के लिए करते हैं या उनसे जो बाछी या बाछा होता है उसके लिए करते हैं, ये रोग जो है उसी पे चोट करती है, ये उसकी प्रजनन क्षमता को खत्म कर देती है या डिस्ट्रॉय कर देती है बोलिए, और उसके जो दूध उत्पादन है उसको भी बहुत क्षति पहुंचाती है, जिससे पशुपालकों को बहुत नुकसान होता है। इसीलिए इस रोग के बारे में जानकारी रखना और इसकी रोकथाम बहुत जरूरी है।
1: पशुओं में रोग के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं इसके लिए?
2: पशुओं के रोग में जैसे गाय जो है उसमें हम लोग देखते हैं कि 5 से 8 महीने तक गर्भपात का खतरा रहता है, आपका दूध में कमी हो जाता है,
1: अच्छा,
2: बुखार आता है, खान पान छोड़ देता है, ये सब लक्षण पाया जाता है। और ये रोग जो होता है ये ऐसा है कि जब तक पता चलता है तब तक ये पशु को तो क्षति करता ही है, इनके संपर्क में आने वाले मनुष्य को भी क्षति करता है।
1: अच्छा,
2: इसीलिए जैसे जब भी गाय बच्चा देने वाली होती है तो जो भी पशु चिकित्सक हो या पैरावेट हो या किसान हो वो उसके जो ज्वार होता है वो सबको अपना मतलब नंगे हाथ से नहीं छुए, ग्लव्स पहन ले या कुछ पहन के ही वो ज्वार को या बच्चे को जो भी करना है उसके साथ करें, ताकि जो रोग अगर ब्रुसेलोसिस से वो पीड़ित है तो वो उससे बच सके। दूसरी बात है कि ब्रुसेलोसिस जो है दूध के द्वारा भी फैलती है, तो इसमें घबराने इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, हमें जो दूध हम लोग गाय से निकालते हैं उसको अगर अच्छे से गर्म कर ले तो ये रोग वहीं पे नष्ट हो जाता है। लेकिन कच्चा दूध अगर पिए हैं और जो गाय या भैंस है वो अगर इस रोग से संक्रमित है तो वो इसके ग्रस्त में आ सकते हैं, इसीलिए जब भी दूध पिए अच्छे से उबाल कर उसे हाइजीनिक तरह से स्वस्थ तरह से पिए।
1: और इस पर ध्यान अगर हम लोग नहीं रख पाते हैं तो कैसे आदमी पकड़ेगा कि हाँ इसके ये बीमारी हो रही है इसको दूध पीने से?
2: ये देखिए, अब इसका बीमारी का सबसे अच्छा है कि इसका टीका उपलब्ध है।
1: अच्छा,
2: तो आपको सबसे जरूरी कि जब भी आपके यहाँ बाछी हो वो 4 महीने के जब हो जाए तो 4 से 8 महीने या पहला बयान के पहले अगर आप उसको ये टीका दिला ले तो वो इस रोग से बच सकते हैं। और ये बाछा में ये टीका नहीं पड़ता है, ये सिर्फ बाछी में पड़ता है,
1: सिर्फ बाछी में।
2: हाँ, आप इसका रोकथाम यही है, टीकाकरण से ही आप इससे बच सकते हैं। बाकी बीमारी जब आ जाए फैल जाए तो उसमें आपका आंदोलन मतलब शारीरिक रूप से तो नुकसान होता ही है आपका।

0: मानसिक रूप से भी आप परेशान हो जाते हैं, तो रोग को पहचानने से ज्यादा अच्छा है कि टीकाकरण करके ही इससे बचाव किया जा सकता है।
1: मैंने सुना है कि जब ये जूनोसिस होता है तो जो मानव में जो रोग के लक्षण है तो बुखार बहुत आता है और पसीना चलने लगता है, रात को शरीर में दर्द भी होता है, क्या कुछ ऐसा होता है क्या?
0: हाँ हाँ, जब ये रोग मनुष्य में होता है तो बहुत बुखार आ जाता है आपका, आपका जो चर्म रोग होने का भी खतरा रहता है, आपका जो पशुओं में जो नर होते हैं, जो मेल होते हैं, उसमें प्रजनन से जुड़ी समस्याएं भी आ सकती हैं। इसलिए जब भी आप, अगर कोई गाय है जिनका गर्भपात हो रहा है, पांचवां से आठवां महीना में बच्चा हो रहा है, या घेर जब गिराते जिसमें बच्चा तंदुरुस्त नहीं हो रहा है, तो आप उसको खाली हाथ से नहीं छुए, आप उसे कुछ ना कुछ ग्लव्स या किसी तरह से डायरेक्टली उसे बचे उसमें।
1: मतलब डायरेक्ट संपर्क में आपको नहीं आना है, अपने आप को सेफ करते हुए ही उसके संपर्क में आना है।
0: जी जी जी हाँ। आप उससे उसी तरह से बच सकते हैं, क्योंकि ये रोग क्या है, जल्दी पकड़ाता नहीं है, जब तक जांच नहीं हो तब तक वो पकड़ाएगा नहीं, वो लक्षण के आधार पर आप इसे पकड़ नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारे लोगों में बुखार आता है, तो आपको जब तक समझेंगे तब तक बहुत देरी हो जाएगी। इसलिए सबसे अच्छा बचाव है कि आप टीकाकरण कराएं अपने पशुओं में 4 से 8 महीने में, दूसरा दूध को गर्म करके जब भी वो पिए उसे उसका यूज करें, तीसरा जब भी जो भी है पशु चिकित्सक या पैरावेट या किसान, वो जब भी उस गर्भपात का जो सामान जर है जो गाय का गिरता है, उन सबको कभी खाली हाथ से ना छुए, और उनका डिस्पोजल भी जो करे वो एक अच्छी जगह पे ब्लीचिंग पाउडर नमक देके या कहीं अच्छी जगह करे जिससे संक्रमण ना फैले।
1: कहते हैं कि एक स्वस्थ पशु अगर आपके घर में है तभी कोई किसान भाई बहन भी खुशहाल होते हैं, आप कितना सहमत हैं इससे?
0: बिल्कुल, पशु सिर्फ इसलिए नहीं होते कि हमें वो दूध देते हैं और उनसे जो भी उत्पादन होता है उसके द्वारा हम लाभ ले सकते हैं, पशुओं का होना एक इकोसिस्टम हमारा बनाता है जो हमारे मानसिक रूप से, हमारे शारीरिक रूप से, और जो हमें पोषक तत्व उनसे मिलता है, दूध हो, मध हो, और जो भी अन्य तरह का हो, अंडा मांस जो भी होता है, वो हर तरह से हमें पूरक करते हैं। अच्छा। तो जो आपने बात कही वो 100% बहुत सही है।
1: और सरकार के द्वारा भी कुछ ब्रुसेलोसिस बीमारी को लेकर के कोई पहल की जा रही है या कोई योजना चलाई जा रही है क्या इस संदर्भ?
0: जी, ब्रुसेलोसिस के लिए समय समय पर टीकाकरण तो होता ही है। हाँ। आप इसका 4-4 महीने हर साल इसके लिए हर स्तर पर, जैसे आजकल कृत्रिम गर्भधारण का कार्य बहुत तेजी से होता है, तो बच्चों में जैसे ही ट्रैक करके उन्हें किया जाता है, अगर कोई छूट जाते हैं तो अपने नजदीकी पशु चिकित्सा केंद्र में जाकर पता करके उन्हें टीकाकरण करवा सकते हैं। इसके अलावा ब्लॉक लेवल पे बहुत सारे कैंप लगाकर, बहुत सारे द्वारा प्रचार प्रसार के माध्यम से ब्रुसेलोसिस के बारे में जागरूकता फैलाया जा रहा है।
1: चलिए, बहुत अच्छी जानकारी आपने साझा की है हमारे किसान भाई बहनों के साथ। और मैं आपसे जानना चाहूंगा एक और भी, क्या अभी टेलीमेडिसिन हेल्प सेवा की बात हो रही है तो क्या वो नंबर है और क्या कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में आप?
0: टेलीमेडिसिन आपका दो तरह से है, एक टोल फ्री नंबर है जिसमें आप उसे कॉल करके आप बता सकते हैं, दूसरा आपके पास हर प्रखंड में एक एम्बुलेंस की सेवा, मोबाइल एम्बुलेंस की सेवा उपलब्ध है।
1: अच्छा।
0: जिसका नंबर है 1962।
1: अच्छा।
0: आप इस पे कॉल करेंगे, आपका कॉल सेंटर पे कॉल जाएगा, आपसे वो आपकी समस्याएं पूछे जाएंगी, अगर वो फोन पे टेलीफोन पे ही समस्या समाधान हो जाएगा तो आपको उस पे बता दिया जाएगा, अगर लग रहा है कि नहीं आपके दरवाजे पे आकर उस समस्या का समाधान होगा तो एम्बुलेंस आपके दरवाजे पे आएगी और आपकी हर समस्या का, बीमारी से लेके टीकाकरण से लेके हर समस्या का समाधान करने के लिए वो सक्षम है। तो आप इस टोल फ्री नंबर का 1962 का जरूर लाभ लें और अपने पशुपालन को समृद्ध और तरक्की के रास्ते पे ले जाएं।
1: कुंदन जी, अभी पूरी दुनिया आपको सुन रही है, क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: देखिए, अभी तो गर्मी का मौसम चल रहा है, तो स्वच्छ पानी, संतुलित आहार, और जैसे हम हर समय बात करते हैं कि पशुओं का सही समय पे टीकाकरण, यही रोग से बचाव का सबसे आसान और सरल तरीका है, और पशु को स्वस्थ रखने की यही कुंजी है। तो स्वस्थ पशु ही पशुपालक को स्मृति का आधार है। तो आप सबको यही रहेगा कि मौसम के अनुसार और टीकाकरण, कृमिनाशक दवाई, खनिज समय समय पे खिलाकर ही बचाव ही जो है वो आपका स्मृति का तरीका है। अगर आपके घर में पशु बीमार हो रहा है तो वो पशुपालक स्मृति नहीं हो सकता, क्योंकि वो उसका ध्यान पशु की बीमारी और आर्थिक तंगी में ही चला जाता है।
1: अच्छा।
0: तो इसीलिए बचाव करें, टीकाकरण कराएं, सही समय पे कृमि का दवाई खिलाएं, आप जितना अच्छा बचाव करेंगे आपकी तरक्की के रास्ता उतना आसान और सरल होते जाएगा।
1: और एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अभी जून का महीना चल रहा है और ऐसे में मानसून का भी सीजन आ चुका है, तो हमें FMD की जो बीमारियां होती हैं उसके बारे में भी बता दें कि टीका कब कब लगता है?
0: देखिए,

0: को ट्रिगर करें, जैसे भी हम लोग ब्रुसेलोसिस का बात कर रहे थे, तो वो आपका सीजन से हट के उम्र के आधार पर है, 4 से 8 महीने।
1: अच्छा।
0: पर इसके अलावा जो बाकी टीका है, FMD हो, HSBQ हो, या बाकी कोई अन्य रोगों का हो, वो आपका हम लोग कोशिश करते हैं कि बरसात आने से पहले उसको ये टीकाकरण करा दिया जाए।
1: अच्छा।
0: इसे तो अभी बरसात आया नहीं है, गर्मी का मौसम है, जिस दिन भी आपको सुविधा रहे सुबह सुबह जब पशु एकदम तनाव मुक्त हो आप उसे जरूर टीकाकरण कराएं, और ये मौसम बिल्कुल पर्याप्त है कि आप उसे अच्छा भोजन, अच्छा कृमि का दवाई समय पे देकर उस बीमारी से बचाव कर सके। तो सभी पशुपालकों से अभी अनुरोध रहेगा कि इस समय टीकाकरण कराकर बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं।
1: तो किसान भाई बहनों, ये थे डॉक्टर कुंदन जी जो हमें जानकारी दे रहे थे ब्रुसेलोसिस बीमारी के बारे में, और साथ ही साथ जूनोसिस बीमारी जो कि मानव में पशुजन्य रोग के माध्यम से होती है, इसके बारे में जानकारियों को साझा कर रहे थे और यह भी बता रहे थे कि इसके संदर्भ में कौन कौन से टीके लगाए जाते हैं, और साथ ही साथ अभी जो बरसात का मौसम आने वाला है उससे पहले FMD के टीके को किस तरीके से आप लगवा सकते हैं, इन सभी विषयों पर जानकारियों को साझा कर रहे थे डॉक्टर कुंदन जी। डॉक्टर कुंदन जी, इतनी अच्छी जानकारी साझा करने के लिए और फोन लाइन पर हमारे कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत आप लोग का भी धन्यवाद।
1: थैंक यू।
2: किसान भाई बहनों, अभी आप गाय और भैंसों में होने वाले प्रजनन रोग ब्रुसेलोसिस और मानव में होने वाले पशुजन्य रोग जूनोसिस विषय पर डॉक्टर कुंदन जी से ली गई भेंटवार्ता का प्रसारण सुन रहे थे। बाह्य ध्वनि अंकन पर टेलीफोनिक आधारित थी यह भेंटवार्ता। आगे बढ़ने से पहले सुनते हैं कुछ संदेश।
3: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
4: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
3: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
4: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
3: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
4: 8700001-4242।
5: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: संदेश के प्रसारण के बाद किसान भाई बहनों, आइए सुनते हैं वीरेंद्र तिवारी और साथियों के स्वर में भोजपुरी लोकगीत।

किसान भाई बहनों, अभी आप वीरेंद्र तिवारी और साथियों के स्वर में भोजपुरी लोकगीत सुन रहे थे। और आइए अब थोड़ी बातें कर लेते हैं मौसम के बारे में। कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, भारत मौसम विभाग नई दिल्ली, भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय नई दिल्ली, क्षेत्रीय प्रभाग रांची और बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची द्वारा प्राप्त मौसम के संदर्भ में कहा गया है कि जिला पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और इसके आसपास के क्षेत्रों में सप्ताह के दौरान आसमान साफ रहेगा, परंतु दोपहर बाद आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। सुबह के समय और दोपहर बाद हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज के साथ बिजली चमकने की भी संभावना है। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलने की संभावना है। आज के दिन का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 से 26 डिग्री सेल्सियस रहा। कल दिनांक 7 जून 2026 दिन रविवार का अधिकतम तापमान रह सकता है 43 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता रहेगी 75% और न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता रहेगी 38%। हवा की दिशा होगी दक्षिण से पूर्वोत्तर की ओर और रफ्तार रहेगी 7 किलोमीटर प्रति घंटा। मित्रों, मौसम की इस जानकारी के बाद एक नजर बाजार भाव पर। कृषि उत्पादन बाजार समिति परसोडी जिला पूर्वी सिंहभूम से प्राप्त बाजार भाव कुछ इस तरह से है। चावल में उसना उत्तम किस्म का भाव रहा 5870 से 5888 रुपए प्रति क्विंटल, मध्यम 3780 से 3790 रुपए प्रति क्विंटल और अन्य 3270 से 3345 रुपए प्रति क्विंटल। अरवा उत्तम किस्म का भाव रहा 5890 से 6580, मध्यम 3879 से 4470 और अन्य 3478 से 3557 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं दालों में अरहर का भाव रहा 12290 से 12349 रुपए प्रति क्विंटल, चना दाल का भाव रहा 8669 रुपए से 9455 रुपए प्रति क्विंटल, मसूर दाल का भाव रहा 7987 रुपए से 89.98 रुपए प्रति क्विंटल, मूंग दाल का भाव रहा 11534 से 11875 रुपए प्रति क्विंटल। कृषक मित्रों, यह थी बाजार भाव की सूचना। और आइए बातें करते हैं 1962 ऐप के बारे में। मित्रों, भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा पेश किया गया 1962 ऐप पशुपालकों के लिए एक डिजिटल सहायक ऐप है। यह ऐप सरकारी योजनाओं की जानकारी, पशु स्वास्थ्य सेवाओं की ट्रैकिंग, विशेषज्ञों के सुझाव और पशुओं से जुड़ी आवश्यक सुविधाओं को सीधे आपके मोबाइल पर उपलब्ध कराता है। 1962 ऐप से पशु स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी मिलती है, पशुओं के लिए चिकित्सा सहायता और सेवाओं की जानकारी ट्रैक करना बेहद आसान हो जाता है। विभिन्न पशुपालन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए दिशा निर्देश और अपडेट्स भी उपलब्ध रहते हैं। सफल किसान भाई बहनों की कहानियां और पशु चिकित्सकों के सुझावों से आप अपने पशुओं की बेहतर देखभाल भी कर सकते हैं। यह तकनीकी पहल पशुपालन को स्मार्ट और सुरक्षित बनाने में भी मदद करती है। पशुपालन से जुड़ी सभी नवीनतम अपडेट्स, नीतियों और कार्यक्रमों की आधिकारिक जानकारी भी उपलब्ध कराता है। मित्रों, यह थी जानकारी 1962 ऐप के बारे में। और अब बातें सचेत पोर्टल के बारे में। मित्रों, यह पोर्टल वित्तीय अनियमितताओं की शिकायत दर्ज करने से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन प्रदान करता है। सचेत पोर्टल में दर्ज की गई शिकायतों को आवश्यक कार्यवाही करने के लिए संबंधित प्राधिकारियों को भेजा जाता है। उपयोगकर्ता पोर्टल पर अपनी शिकायतों को ट्रैक कर सकते हैं। आप अपनी शिकायतें www.sachet.rbi.org.in पर दर्ज करा सकते हैं। और अब समय की सुइयां इशारा कर रही हैं चलने को, तो चलते चलते आपको बता दें कि अपने शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए योग को अपने दिनचर्या में शामिल करें। डेली 15 से 20 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम जरूर करें। और इसी के साथ रखिए अपने स्वास्थ्य का पूरा पूरा ख्याल। नमस्कार, जोहार।

0: घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी, सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: मेरे प्यारे देशवासियों, कर्नाटका के एक दंपति सुपारी के रेशे से बनी कई यूनिक प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंचा रहे हैं। कर्नाटका में शिवमोगा में ये दंपति हैं, श्रीमान सुरेश और उनकी पत्नी श्रीमती मैथिली। ये लोग सुपारी के रेशे से ट्रे, प्लेट और हैंडबैग से लेकर कई डेकोरेटिव चीजें बना रहे हैं। इसी रेशे से बनी चप्पलें भी आज खूब पसंद की जा रही है। उनके प्रोडक्ट्स आज लंदन और यूरोप के दूसरे बाजारों तक में बिक रहे हैं। यही तो हमारे प्राकृतिक संसाधनों और पारंपरिक हुनर की खूबी है, जो सबको पसंद आ रही है। भारत के इस पारंपरिक ज्ञान में दुनिया सस्टेनेबल फ्यूचर के रास्ते देख रही है। हमें खुद भी इस दिशा में ज्यादा से ज्यादा जागरूक होने की जरूरत है। हम खुद भी ऐसे स्वदेशी और लोकल प्रोडक्ट इस्तेमाल करें और दूसरों को भी ये उपहार में दें। इससे हमारी पहचान भी मजबूत होगी, स्थानीय अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी और बड़ी संख्या में लोगों का भविष्य भी उज्जवल होगा।
5: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन दो दिवसीय झारखंड दौरे पर पहुंचे रांची। प्रबुद्ध जन सम्मेलन में कहा, नक्सलवाद को खत्म करने के लिए ठोक चुके हैं अंतिम कील। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राज्यसभा चुनाव में पूर्व मंत्री रहे वैद्यनाथ राम को घोषित किया अपना प्रत्याशी। राज्यपाल संतोष गंगवार ने रांची में आयोजित आदिवार्ता और ट्राइबल कॉन्क्लेव को किया संबोधित। कहा, जनजातीय जीवन दर्शन जल, जंगल और जमीन के संरक्षण के साथ सतत विकास और पर्यावरण संतुलन का देता है संदेश। विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने की अपील। कहा, मतदाताओं के अधिकार को लेकर राज्य में SIR अभियान को बनाए सफल। और जापान के काकामेगाहारा में भारत ने जीता अंडर-18 पुरुष एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट। झारखंड के खिलाड़ी आशीष तानीपूर्ति ने दागे 3 गोल। और अब समाचार विस्तार से। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन झारखंड के अपने 2 दिवसीय संगठनात्मक दौरे पर रांची पहुंच चुके हैं। उन्होंने पार्टी के सांसदों और विधायकों के साथ आगामी रणनीतियों पर एक अहम सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने प्रबुद्धजनों के इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड में नक्सलवाद को खत्म करने के लिए अंतिम कील ठोक चुके हैं।
6: हम नक्सलवाद को खत्म करने के लिए अंतिम कील ठोक चुके हैं। नक्सलवाद की जड़ें किसी झारखंड में भी बहुत रूप से मजबूत थी, पर हमारे गृह मंत्री, हमारे प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया था कि हम नक्सलवाद को 31 मार्च 2026 तक खत्म करेंगे। आज जो उग्रवाद की घटनाएं होती थी, जिस प्रकार नक्सलवाद था, आज उसको पूरी तरह से समाप्त करने में हमारी सरकार सफल हुई।
5: झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राज्यसभा की 1 सीट के लिए अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी है। पार्टी के केंद्रीय महासचिव और वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने बताया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राज्यसभा चुनाव में वैद्यनाथ राम को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। वैद्यनाथ राम झारखंड सरकार में पहले मंत्री रह चुके हैं। वर्तमान में वैद्यनाथ राम झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय समिति के उपाध्यक्ष हैं।
7: केंद्रीय अध्यक्ष सभी वरिष्ठ साथियों से विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया है कि झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री वैद्यनाथ राम जी को हम राज्यसभा चुनाव में अपने दल के अधिकृत उम्मीदवार के तौर पर उनके नाम की घोषणा करें।
8: हम अपनी पार्टी से वैद्यनाथ राम जी की जीत को सुनिश्चित करेंगे।
5: इधर राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा ने आज झारखंड विधानसभा में निर्वाचन पदाधिकारी से अपना नामांकन पत्र प्राप्त किया। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर, ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह, कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की सहित कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने रांची में आयोजित आदिवार्ता और ट्राइबल कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड की जनजातीय संस्कृति, सामुदायिक जीवन मूल्य और प्रकृति के साथ उसका गहरा संबंध राज्य की विशिष्ट पहचान है। उन्होंने कहा कि जनजातीय जीवन दर्शन जल, जंगल और जमीन के संरक्षण के साथ सतत विकास और पर्यावरण संतुलन का महत्वपूर्ण संदेश देता है। जामताड़ा जिले में SIR के तहत विभिन्न राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों के द्वारा जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। जिले के कुंडहित प्रखंड मुख्यालय

0: में आयोजित जागरूकता शिविर में आज विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो शामिल हुए और मतदाताओं के अधिकार को लेकर राज्य में एसआईआर अभियान को सफल बनाने की अपील की।
1: हम लोगों का आदमी सीधा है, तमाम विषयों के बारे में उतना सचेतन नहीं रहता, इसलिए हमारा संगठन तत्पर है। अगर एसआईआर में नाम छूट जाएगा, मतदाता सूची से नाम हट जाएगा, इनको हम अपने मौलिक अधिकार को खो बैठे। इसलिए हमारा जो लड़ाई है, इस मौलिक अधिकार को बचाने का लड़ाई है, ताकि एक भी जग मतदाता का नाम मतदाता सूची से न छूटे।
0: सरायकेला खरसावां जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम एसआईआर के तहत बूथ लेवल अधिकारी के कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में एक शिक्षिका और एक स्वास्थ्य सहिया के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। इस संबंध में सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सह अंचल अधिकारी गम्हरिया ने जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त को पत्र भेजा है। अंचल अधिकारी ने अपने पत्र में कहा है कि नियुक्त कर्मियों की ओर से दायित्वों का निर्वहन नहीं किए जाने से मतदाता पुनरीक्षण कार्य प्रभावित होने की आशंका है। पाकुड़ जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर कार्य पारदर्शी तरीके से करने के लिए बूथ लेवल अधिकारियों और सुपरवाइजरों के लिए प्रशिक्षण सह जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। रविन्द्रनगर भवन में आयोजित शिविर में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त मेघा भारद्वाज ने एसआईआर के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों और प्रपत्रों के बारे में विस्तार से बताया। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। खूंटी जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा योजना के तहत ग्रामीण किसान बागवानी को अपनी आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत बना रहे हैं। एरेंडा गांव के आसपास ग्रामीण किसान इन दिनों आम, तरबूज सहित अन्य कई फसलों का उत्पादन कर रहे हैं।
2: मनरेगा की तरफ से लगाए, पास हुआ, फिर आम लगाने के बाद हम लोग वहाँ ड्रिप सिस्टम से हम लोग स्ट्रॉबेरी का खेती भी किए, टमाटर का खेती भी किए, मानी सारा खेती बाड़ी उसी में हम लोग तिवारी भी हो रहा है।
3: यहाँ पर ड्रिप सिस्टम से हम लोग खेती किए, तो वही से हम लोग शुरुआत किए और अभी इसी के कारण आम बागवानी भी अच्छा ही फल दे रहा है।
0: लोहरदगा के उपायुक्त संदीप कुमार मीना ने आज जिला विद्युत समिति की बैठक में विभाग की दो प्रमुख योजनाओं, मुख्यमंत्री उज्जवल झारखंड योजना और संशोधित वितरण क्षेत्र योजना की समीक्षा की। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि पहुंच पथ वाले टोलों और सुदूरवर्ती क्षेत्रों में जुलाई माह तक विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण कराया जाए और जहां पहुंच पथ उपलब्ध नहीं है वहां विशेष प्रकार के पोल एवं अन्य तकनीकी विकल्पों के माध्यम से विद्युतीकरण कार्य किए जाएं। उपायुक्त ने कहा कि इसके लिए सभी संबंधित पदाधिकारी एवं अभियंता समन्वय स्थापित कर कार्य करें। गिरिडीह जिले के डुमरी थाना क्षेत्र में डुमरी गिरिडीह पथ पर पिपराडीहा के ओवरब्रिज के समीप आज हुई एक सड़क दुर्घटना में दो लोगों की मौत हो गई। मृतक पिता एवं पुत्र हैं, जबकि एक किशोरी समेत तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को इलाज के लिए डुमरी रेफरल अस्पताल पहुंचाया गया। और अब मौसम का हाल। राजधानी रांची सहित राज्य के कई जिलों में अगले 24 घंटे के दौरान बारिश और ओलावृष्टि के साथ वज्रपात की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए आम लोगों से अपील की है कि वे बारिश के दौरान पेड़ों के आसपास न रहें और सुरक्षित स्थानों में शरण लें। राज्य भर में जामताड़ा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में लोग भीषण गर्मी और जल संकट के कारण परेशान हैं। जिले के नारायणपुर प्रखंड के आदिवासी बहुल गांव चरकपानी के लोग डोभा का पानी पीने को विवश हैं। जापान के काकामेगाहारा में भारत की अंडर 18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में आज भारत ने जापान को 4-1 से हराया। झारखंड के खिलाड़ी आशीष तानीपूर्ति ने 3 गोल किए। कप्तान केतन कुशवाहा ने भी 1 गोल किया। बीसीसीआई ने इंग्लैंड और आयरलैंड के दौरों के लिए भारतीय टी20 टीम की घोषणा की है। श्रेयस अय्यर और तिलक वर्मा को क्रमशः कप्तान।

0: और उपकप्तान बनाया गया है। वैभव सूर्यवंशी और प्रिंस यादव को भी टीम में जगह मिली है। सूर्य कुमार यादव को कप्तानी से हटा दिया गया है, उन्हें टीम में भी जगह नहीं मिली। 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी पहली बार भारतीय सीनियर टीम में चुने गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन दो दिवसीय झारखंड दौरे पर पहुंचे रांची। प्रबुद्धजन सम्मेलन में कहा, नक्सलवाद को खत्म करने के लिए ठोक चुके हैं अंतिम कील। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राज्यसभा चुनाव में पूर्व मंत्री रहे वैद्यनाथ राम को घोषित किया अपना प्रत्याशी। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने रांची में आयोजित आदिवार्ता और ट्राइबल कॉन्क्लेव को किया संबोधित। कहा, जनजातीय जीवन दर्शन जल जंगल और जमीन के संरक्षण के साथ सतत विकास और पर्यावरण संतुलन का देता है संदेश। विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने की अपील। कहा, मतदाताओं के अधिकार को लेकर राज्य में SIR अभियान को बनाए सफल। और जापान के काकामेगाहारा में भारत ने जीता अंडर-18 पुरुष एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट। झारखंड के खिलाड़ी आशीष तानीपूर्ति ने दागे 3 गोल। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे पश्चिमी सिंहभूम जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे चाईबासा संवाददाता।
1: पश्चिमी सिंहभूम जिले में चल रहे मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा बूथ स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे भी उपस्थित रहे। श्री पांडे ने कार्यकर्ताओं से कहा कि SIR की प्रक्रिया में सभी को सहयोग करना चाहिए और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी पात्र व्यक्ति मतदाता सूची से बाहर न हो। साथ ही उन्होंने कहा कि नए पात्र मतदाताओं को जोड़ने के लिए भी सहयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने विगत महीनों में अन्य राज्यों में SIR के लिए चुनाव आयोग द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया पर सवाल भी किया।
2: स्पष्ट था कि SIR को जिस तरह से चुनाव आयोग के द्वारा संचालित किया जा रहा है, उसमें हम लोग सहयोग भी करें और हमारा ये प्रयास हो कि कोई भी व्यक्ति जो वोटर है, जो पात्र है, उसका वोट कटे नहीं, का नाम कटे नहीं। और जो नए लोग हैं, नौजवान जो साथी है जिनका उम्र 18 वर्ष हो गया है, उनका नाम उस वोटर लिस्ट में जुड़े। लेकिन चुनाव आयोग के द्वारा जो प्रक्रियाएं अपनाई गई, उस प्रक्रिया से आप लोग भी वाकिफ होंगे।
1: जिले के शिक्षा विभाग में विज्ञान किट की आपूर्ति में कथित घोटाले से संबंधित शिकायतों पर जांच टीम गठित की गई है। इस मामले में जिला शिक्षा पदाधिकारी टोनी प्रेमराज टोप्पो ने कहा है कि जांच टीम द्वारा रिपोर्ट सौंपने के बाद संबंधित दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी।
3: ये है कि साइंस किट का जो पैसा है वो 2024-25 का जो है उसमें आया हुआ था स्कूलों को। मामला जिसमें आया है, ये कहा गया है कि कोई एक निजी फर्म है जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है कि वो अपना मिली भगत करके DRC से जो है वो संबंधित राशि की निकासी की गई है, और जो साइंस किट जो विद्यालय को दिया जाना था वो भी नहीं दिया गया। जबकि जो नियम है उसमें ऐसा है कि जब तक आपूर्ति सामानों की नहीं हो तब तक कोई भी राशि को विमुक्त नहीं किया जाना होता है।
1: जिले में नशापान के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। इसमें जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने मिलकर जागरूकता लाने के साथ साथ आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी है। उपायुक्त मनीष कुमार ने विशेषकर युवाओं से अपील करते हुए कहा कि तंबाकू या नशीले पदार्थों के सेवन से उन्हें दूर रहना चाहिए।
4: और तरह तरह की एक्टिविटीज़ हमारे पूरे जिले भर में चल रही है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि हम लोग किस प्रकार से और अधिक जागरूकता फैला सके लोगों में। प्रत्येक दिन 3500 के आसपास लोग अपनी जान गंवा देते हैं इस बुरी आदत से। आपके माध्यम से भी युवाओं से विशेषकर अपील होगा कि तंबाकू पदार्थों को, उत्पादों को हम लोग कम से कम प्रयोग करें और इसे बिल्कुल ही छोड़ दें। आम जीवन में इनके उपयोग से हानि ही है और हम अपने जिले को ड्रग्स, तंबाकू इत्यादि के दुष्प्रभाव से जितना बचा सकते हैं उतना ही हमारा ये जो पूरा कार्यक्रम है सार्थक होगा।
1: इस सिलसिले में नशीले दवाओं की खरीद बिक्री की रोकथाम को लेकर दवा विक्रेताओं के साथ भी आवश्यक बैठक की गई और उन्हें सुरक्षात्मक कई निर्देश दिए गए हैं। दिलीप बैनर्जी, आकाशवाणी समाचार, चाईबासा।
0: अभी आप सुन रहे थे पश्चिमी सिंहभूम जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।
5: कार्यक्रम जिले में आजकल, ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM बैंड के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 7:15 हो चुके हैं और अब प्रस्तुत है बांग्ला कार्यक्रम।

बांग्ला कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम बैंड के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 7:45 हो चुके हैं श्रोताओं, और अब प्रस्तुत है अंग्रेज

0: अंग्रेजी कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम बैंड के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय रात के 8 बजने ही वाले हैं और अब आइए सुनते हैं विशेष श्रृंखला मोदी सरकार के 12 साल की तीसरी कड़ी।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है विशेष श्रृंखला। इसके अंतर्गत आज सुनिए मोदी सरकार के 12 साल सुधार, सुशासन और जन कल्याण से सशक्त होता मध्यम वर्ग। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन और आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं अनुभा रोहतगी।
2: दिस इज आकाशवाणी। In the special series, now we bring you a discussion on 12 years of the Modi government.

0: Transforming Middle Class Lives Through Reform and Welfare. Participants are Ashok Tandon, Political Analyst, and Sharad Kohli, Economic Analyst. Moderator is Anubha Rohatgi.
1: India has undergone significant economic, technological and social transformation in the 12 years of the NDA government under the stewardship of Prime Minister Narendra Modi. For the country's middle class, the focus on infrastructure expansion, welfare initiatives, tax reforms, financial inclusion and digital governance has given wings to their hopes and aspirations on the one hand and made their lives easier, fairer and more dignified on the other. And that is the topic of our discussion today. To share their insights and views on this issue, I'm now joined by political analyst Ashok Tandon and economic analyst Sharad Kohli. Mr. Tandon, Mr. Kohli, welcome to the program.
2: Thank you very much.
1: Thank you. I'll start with a question to both of you. What are the most crucial and significant initiatives that have made the most impact on the middle class in the last 12 years?
2: Well, Anubha, if you see down the line, you know, 12 years, it may sound like a very long period. But then if you work out from the government perspective, there's been so much which has been done in these 12 years. It's almost seems like 120 years from the kind of output that we've had. I think it is transformational for the people of the country, especially and the burgeoning middle class of the country. To my estimate, as an economic analyst, I would say the total size of middle class is probably 65 to 70 crores today. Mm-hmm. This includes those 25 crore people who move from poverty to the neo-middle class. So yes. If we add them, so we've got, I mean, we're almost twice the population of United States of the size of the middle class in India itself. I think every aspect of their life has seen a transformation. As you said, roti kapra makan once, I remember. I think the way they eat, the way they live, the way they travel, their own lifestyles, just about everything has been impacted. And as we go forward, we would love to, you know, go in deep dive into each of those aspects.
1: Absolutely. Mr. Tandon.
3: Modi sarkar ne jo sudhar karyakram liye pichle 12 saal mein ji usme jo madhyam varg ki aarthik utthan mein bahut mahatvapurna bhumika nibhai hai. Tax mein chhoot, GST ka saralikaran, digital kranti, housing subsidy jaise bade sudharon se madhyam varg ki bachat badhi hai, unke paas jo disposable income badhi hai aur usse unka jeevan star bhi upar utha hai. Agar main kuch cheezon ki baat karu jaise humne baat ki तो टैक्स में बड़ी राहत, मैं उसकी अभी डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा. जीएसटी, रोजगार और स्टार्टअप को बढ़ावा दिया गया है और रेरा जैसे सुरक्षित घर का सपना लोगों का पूरा हुआ है पीएम आवास योजना के अंतर्गत. तो ऐसे कई कल्याणकारी योजनाएं हैं, जैसे आयुष्मान भारत की हम बात करें, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की बात करें, उज्ज्वला योजना की बात करें, जनधन योजना की बात करें, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की बात करें, सामाजिक सुरक्षा की बात करें, पीएम स्वदिन योजनाओं की बात करें, तो ऐसी कई योजनाएं हैं जो केवल मध्यम वर्ग को तो सहायक तो नहीं हो रही, लेकिन जो मध्यम वर्ग नहीं था उनको मध्यम वर्ग में लाने का जो काम किया.
1: जैसे भी शरद जी ने
3: बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि भारत में हम जैसे कहते थे कि गरीबी रेखा के नीचे इतने प्रतिशत लोग हैं, कितने लोगों को गरीबी रेखा से उठाकर मध्यम वर्ग में लाया गया, क्योंकि भारत में मध्यम वर्ग की आप 15-16 कैटेगरी बना सकते हैं. तो उन सब कैटेगरीज को लाभ हुआ है और जिसकी जो पहचान है वो ये है कि आज लोगों के जेब में खर्च करने के लिए पैसा आ गया है.
1: आपने और शरद जी ने दोनों ने अभी जितनी एक जो सरकार की जितनी पहल थी इनिशिएटिव्स की उनकी बात की, और आप दोनों ने एक जो बात की उसी से बात आगे बढ़ाते हैं कि जो पॉवर्टी लाइन के नीचे जो लोग थे उनको, गरीबी रेखा से नीचे लोगों को जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से उठाकर ऊपर लेकर आए हैं, तो there has been a significant expansion of the middle class in the last 12 years with more than 25 crore people exiting multidimensional poverty and entering the new middle class. How big an achievement do you think that is of the government, of the Modi government, Sharad ji?
2: I think it's a huge achievement, because 25 crore may be a very easy number to speak. Yes. But this number itself may be more than, Anubha, the population of many of the countries around the world. और देखिए हुआ क्या कि पॉवर्टी इंडेक्स की जो डेफिनेशन बदला गया, यू नो वी चेंज द डेफिनेशन, बिकॉज आप पॉवर्टी को पहले कैसे डिफाइन करते थे, इतने रुपए रोज का. आई थिंक नीति आयोग केम आउट विद अ वेरी न्यू एंड अ प्रॉमिसिंग डेफिनेशन कि आपका अगर जीवन का स्तर सुधर रहा है, यू नो ऑन न्यूट्रिशन, ऑन हेल्थ, आपके पास घर नहीं है, टुमारो यू गेट अ हाउस, यू डोंट हैव अ वाटर कनेक्शन, नाउ यू हैव अ वाटर कनेक्शन, Let's not forget about the toilets, which has been, yes. you know, sanitation has been very close to Prime Minister.

0: इज हार्ड, यू नो, जंगल में और खेतों में जाके यू नो टॉयलेट का इस्तेमाल करना या वहां पर इधर उधर बैठ के महिलाओं के लिए खासकर बहुत. सो आई थिंक नाउ देयर आर टॉयलेट्स एट. सो द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स नीड्स टू बी अंडरस्टूड अनुभव फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू दैट नॉट दैट अ पर्सन हैज अ वेरी ह्यूज बैंक बैलेंस बट ही इज एबल टू अफोर्ड एंड लिव अ लाइफस्टाइल व्हिच एनी अदर नॉर्मल मिडिल क्लास लिव्स. सो आई थिंक दैट हैज बीन द पैराडाइम शिफ्ट इन द वे वी लुक एट पॉवर्टी बिकॉज दोज पीपल financially fine, they may be earning whatever they earn, but today they have facilities which are probably being enjoyed by some of the people who lead a more prosperous life.
1: The facilities that are very basic facilities. Absolutely. Which is everybody's right and which should they should get.
0: No, but the thing is that me and you can call them basic, but for them it was a luxury at one point of right. time, and today they feel that these were basic amenities which I was lacking, and it is thanks to the government schemes like Pradhan Mantri Awas okay. Yojana. You know, the whole sanitation program which has been done. You know, Arba, before you move forward, I would like to highlight that for me as an economic analyst, the biggest takeaway, because there's a long list. In fact, if we just name all the developmental and welfare schemes, I think the next half an hour may not be enough. So, biggest takeaway for me, because we are hardcore economic analysts, for me is the massive 100 lakh crore plus infrastructure spend. Because that is one, in economics we call it, Anubha, the trickle-down effect. That has impact हर वर्ग को समाज के उसने फायदा पहुंचाया और मिडिल क्लास तो उसमें आती आती क्योंकि इससे नौकरियां बनी हैं, इससे लोगों की इनकम. और मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं जो टंडन साहब मेरी बात से अग्री करेंगे कि अब मुझसे जब लोग पूछते हैं क्योंकि होता क्या जब आपकी जिंदगी में ये सब घटनाएं घटती रहती है वेलफेयर स्कीम तो यू टेक इट इन योर स्टेड. आपको लगता है ठीक है ये तो होना ही था भाई ये तो मेरा हक है वगैरह वगैरह ऐसे ख्याल आते हैं. पर बहुत अच्छा तरीका इसको देखने का क्या है विच आई एम श्योर द लिसनर्स ऑफ आकाशवाणी वुड लाइक टू ड्वेल अपॉन अ डीप डाइव इज कि आप 2014 में जब ये सरकार आई थी 12 साल पहले आप कहां खड़े थे. शायद लोगों की मेमोरी इतनी अच्छी ना हो. इट्स वेरी हार्ड टू रिमेम्बर के व्हाट आई यूज्ड टू अर्न व्हाट वाज माय नेटवर्थ इन 2014 और आज आप कहां खड़े हैं. तो अगर आप दोनों को कंपेयर क्योंकि हम तो कैसे देखते हैं बहुत आसान तरीका है. आई थिंक मिस्टर टंडन वुड अग्री इन 2014 वी वर अ $2 trillion इकॉनमी. सो इन 67 ईयर्स फ्रॉम जीरो वी रीच 2 trillion एंड इन द लास्ट 12 ईयर्स वी रीच 4 trillion. तो अगर इकोनॉमी डबल हुई है तो इकोनॉमी तो हमको और आपको मिलाकर ही बनती है ना. गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय पीपल लाइक अस. सो आई थिंक दैट्स अ बेटर वे टू लुक एट इट एंड दैट फॉर मी दैट इज द बिगेस्ट टेक अवे.
1: अशोक जी मध्यम वर्ग की जैसे कि भी शरद जी ने भी हमारे डिस्कशन की शुरुआत में कहा कि तीन सबसे बड़ी चिंताएं होती है रोटी कपड़ा और मकान और इन तीनों के लिए ही जरूरी है रोजगार और नौकरी. तो पिछले बीते 12 सालों में भारत सरकार ने जो तेजी से बढ़ती युवा आबादी है देश की उसके लिए नौकरी और खासकर स्वरोजगार के अवसरों को जो दिए हैं उनको जो उसके लिए पहल शुरू की हैं जो उसके लिए कार्यक्रम कर रहे हैं उन्हें आप कैसे देखते हैं. खासकर अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है या नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम है या फिर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है इन सब योजनाओं का आबादी को नौकरी रोजगार या स्वरोजगार दिलाने में कितना बड़ा योगदान है.
2: मैं आपकी बात पर आने से पहले स्वास्थ्य की बात करना चाहता हूं. मुझे लगता है कि समाज में स्वास्थ्य उतना ही महत्वपूर्ण है जितना रोटी कपड़ा और मकान है और उस दिशा में जो आयुष्मान भारत योजना के तहत देश के 22 करोड़ से अधिक नागरिकों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है. स्वच्छ भारत अभियान के तहत 11 करोड़ से अधिक शौचालय बनाए गए जैसे अभी बताया गया था और आवास नल यानी पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ से अधिक किफायती घर बनाए गए हैं. आपने रोटी कपड़ा मकान की बात की. वहीं जल जीवन मिशन के माध्यम से करोड़ों ग्रामीण और अर्ध शहरी घरों तक सीधे जल से साफ पानी पहुंचाया गया है और जैसे अभी बात हो रही थी अब हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं तो जीडीपी के दम पर. लेकिन इसमें एक राष्ट्र एक टैक्स यानी जीएसटी और ये जो इसमें जो सरलीकरण किया गया ये एक बड़ा ही ऐतिहासिक सुधार था जिसने हमारे देश के बिखरे हुए टैक्स ढांचे को खत्म कर पूरे भारत को एक बाजार बना दिया. मैं अगर स्टार्टअप की बात करना चाहूं तो हम देखते हैं कि इसके पीएलआई योजनाओं के सहयोग से भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है और जिससे इलेक्ट्रॉनिक और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में घरेलू जो इन्वेस्टमेंट है उसको बहुत बढ़ावा मिल रहा है. तो इस तरह से और भी बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं.
1: शरद जी मैं अपने अभी जैसे अशोक जी ने बात की स्वास्थ्य की पर मैं वापस आऊंगी जो हम नौकरी की बात कर रहे थे उसमें उन्होंने और अशोक जी ने जो एक और बात करी स्टार्टअप जो इकोसिस्टम की. तो हम जब बात कर रहे थे कि जो सरकार की जो पहल थी जो विभिन्न योजनाएं हैं उनमें रोजगार मुहैया करवाने में उनके लिए रोजगार क्रिएट करने में कितना बड़ा और खासकर अगर हम स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात करें तो उसमें स्टार्टअप इकोसिस्टम

0: सिस्टम्स के जो के लिए जो उसको इंकरेज करने के लिए सरकार ने जो भी कदम उठाए हैं, उससे मिडिल क्लास की जो एस्पिरेशंस हैं उसको कितना प्रोत्साहन मिला है?
1: बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा अनुभा। देखिए गवर्नमेंट यू नो एज एन एम्प्लॉयर सरकारी क्षेत्र में जितनी नौकरियां हैं अनुभा वो तो सरकार उतनी देगी। आप देखें प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो है समय समय पर अपॉइंटमेंट लेटर्स प्रधानमंत्री जी खुद बांटते हैं।
0: बिल्कुल।
1: पर इसमें यह ध्यान रखना होगा दैट गवर्नमेंट कैन नॉट एम्प्लॉय एवरीबॉडी इन द कंट्री। गवर्नमेंट प्रोवाइड्स एन एनेबलिंग प्लेटफॉर्म वेयर इट जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट। तो आपने स्टार्टअप का बात किया, आई वुड लाइक टू कमेंट ऑन दैट। टुडे वी हैव स्टार्टअप इंडिया जब शुरू किया गया था, मुझे याद है 2016 की ये बात है, एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल सेड दैट स्टार्टअप इंडिया यू नो पीपल हैव बीन डूइंग बिजनेसेस हियर फॉर टाइम्स इममेमोरियल। सो व्हाट इज न्यू? यस, देयर वाज समथिंग न्यू बिकॉज स्टार्टअप फोकस्ड ऑन इनोवेशन, स्टार्टअप फोकस ऑन न्यू आइडियाज, एंड दैट इज वेयर द यूथ ऑफ द कंट्री और द यूथ इंटेलेक्ट ऑफ द कंट्री गॉट एक्टिवेटेड। A lot of youngsters, and today, just on Startup India, there are 2 lakh plus registered startups. And you know, you will not believe that the employment provided by these startups today is 2.3 million plus people who've been employed. And government has created a startup fund
0: yes.
1: where, you know, because these startups look for funding and they've been looking at funding to private sources, these angel investors and so on. So here, government became an angel.
0: Right.
1: And I think the whole setting up of incubation centers, setting up of those places where these startups can get trained, I think that has done magic to this country. And today, I'm telling you, when from being job seekers
0: yes.
1: to being job creators, when I talk to a cross-section of youth today, what they tell me is that, yes, we want to work, not that, but we only want to work to gain experience. Once they gain experience, they want to be, you know, there is a flame burning inside every youth. Yes, I have to do something of my own. And I think this aspirational India is driving the growth of the country. You know, if 65% of our population, Anubha, is below 35 years of age, we are a very, very young country. And, you know, for everybody to find employment, you know, may not be possible in
0: yes.
1: the times to come. So if you become job creators, you just don't employ yourself. You create jobs for so many people around you. And, you know, we talk of Mudra Yojana, which was focused on women entrepreneurs, where government gives you a loan for up to a certain level, up to 10 lakh rupees, 5 lakh rupees, you borrow, you start. I've seen so many women entrepreneurs, you know, you'll be surprised the participation of women in the mainstream economic activity in this country is not as high as men. We all know that. There are so many although I treat homemakers as
0: they
1: a very, very active GDP.
0: In
1: fact,
0: actually.
1: We did an analysis recently, which said that if the GDP of women homemakers, it's not counted in the GDP,
0: right.
1: but then they contribute very, very significantly. But then those women who've now joined the main economic mainstream, their percentage is between 30 and 35%. This Mudra Yojana has helped women come forward. And I see so many women entrepreneurs today, not just employing themselves, but they've got a big team who follows them, who are employed with them. So I think the vision of this government was to make sure that you don't chase rozgar. You also create rozgar for other people. That for me, you know, and the whole taxation system and ease of doing business, I think that has helped the middle class. There was a time when middle class person used to think, main business kaise karunga, karungi, ye to bahut mushkil hota hai, company kaise banayenge, phir sarkar itne sare taxes lagati, 17 taxes ko mila ke GST jab aaya, aur jab se GST 2.0 aaya hai, usne to aisa lagta hai GST ko, I mean, people have opened their arms and embraced it.
0: Usse
1: puri ki puri arthvyavastha pe farak pad gaya hai.
0: आपने जीएसटी की बात की और उससे पहले कि हम टैक्स रिफॉर्म्स की बात करें, क्योंकि एक वो बहुत बड़ा एक क्षेत्र है, एक ऐसा सेक्टर है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि जो मध्यम वर्ग परिवार हैं उनके जीवन में बहुत ज्यादा फर्क आया है. बिकॉज यू नो सम पीपल थिंक दैट द मिडिल क्लास हैज बीन यू नो अनफेयरली बीन बर्डन विद टैक्स बर्डन, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू इनकम टैक्स. सो इन द लास्ट 12 इयर्स व्हेन वी लुक एट द टैक्स रिफॉर्म्स दैट द मोदी गवर्नमेंट हैज इनिशिएटेड, इफ वी लुक एट द जीरो टैक्स लिमिट एंड वेदर लाइक यू मेंशन द जीएसटी, नॉट जस्ट द इंट्रोडक्शन of GST, but after that, last year we saw the GST 2.0 also. How have these tax-related reforms in the past decade impacted middle class? Sir Tandon, what would you say to that?
2: देखिए इसमें एक और पहलू भी है
0: जी.
2: कि जो पेंशनर्स हैं या जो सरकारी कर्मचारी हैं उनका भी महंगाई भत्ता लगातार बढ़ाया जाता है उस महंगाई के इंडेक्स के साथ मिलाकर. तो टैक्स रिफॉर्म जो है आपने जिनके जिक्र किया उससे भी हम लोग अपनी मिडिल क्लास की बात करें, हम लोगों को 40-40, 50-50 हजार रुपए साल का टैक्स बचा है. तो हम भी मिडिल क्लास हैं सब लोग. तो ये जो लाभ मिला है मिडिल क्लास को और जो टैक्स के बारे में जितनी भी बातें हुई हैं, तो ये सब कुछ मिलाकर अगर देखें तो मैं समझता हूँ मिडिल क्लास आज बहुत खुश है और शायद मिडिल क्लास की चार पांच लेयर्स को भी अगर अपर मिडिल क्लास की अगर अभी बात छोड़ भी दें तो लोअर मिडिल क्लास को मुझे लगता है सबसे

0: ज्यादा फायदा होगा।
1: शरद जी, यू नो, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट टैक्स रिलेटेड रिफॉर्म्स, इट्स नॉट जस्ट द एग्जेम्पशन, यू नो, दैट द एग्जेम्पशन लिमिट हैज, यू नो, इन फैक्ट चेंज फोर टाइम्स, इट इज इंक्रीज फोर टाइम्स सिंस 2014, बट इट्स ऑल्सो द प्रोसेस ऑफ फाइलिंग इनकम टैक्स, इट्स द प्रोसेस ऑफ, यू नो, द ट्रांसपेरेंसी दैट हैज बीन ब्रॉट इन दिस होल प्रोसेस. सो वट वुड यू से टू दैट, हाउ हैज इट मेड द लाइव ऑफ द मिडिल क्लास, यू नो, मच इजियर, एंड नॉट मोर देन दैट, वुड यू से दैट, यू नो, द फैक्ट दैट द गवर्नमेंट हैज मेड द प्रोसेस सो इजी, एंड इफ यू लुक एट द नंबर of ITRs filed, in fact last year more than 8 crore ITRs were filed, that's also showing the government, the Modi government's trust in the people, in their honesty, and it's a salute to the middle class.
2: All right, we call that a sabka vishwas. A government has gained that vishwas where people come forward and file the, and I'll give you a very interesting, you know, dynamics of this whole tax, you know, number which you spoke of.
1: Jee.
2: About 9 crore returns were filed. And you know, the real taxpayers, the people who actually paid tax, they were about 3 crore or so. But then because it's mandatory to file the return, so people participated in that activity, people came forward, and they have now understood with 12,75,000 rupees of income for the first time in India is tax exempt. You know, we did a case study of a couple who were both earning, one was earning about 5 lakhs and the other was earning about 7 lakhs, about 12 lakhs of earnings. Now, they were not able to save for earlier for investments, for SIPs, for health insurance. Combined together, they saved tax about 1 lakh rupees. Now, this lakh of rupees is going into health insurance, is going into insurance, is going into their retirement planning as well. And you know, it'll be unfair, Anubha, if when we talk of tax and we don't talk of the tax savings made by GST. Somebody asked me that only 3 crore people in India pay tax. I said, no, every citizen of this country pays GST because that's indirect taxation. So this GST 2.0 has put money in the pockets of people. And because primarily we are a consumption-driven economy, 55 to 60% of our economy comprises of when me and you and Mr. Tandon goes and buy goods from the shopkeepers, from service providers. So I think that has taken a big boost. And in the current scenario, when global economy is facing challenges, it is the Indian consumption, Anubha, which is driving the growth of the country.
1: Let's move on to the next, you know, area which I think has impacted the lives of the middle class in a very significant manner, which is digitization. And we all know that Prime Minister Modi is a big votary of digitization. So what role has digitization played in the empowerment of middle class? Would you say that initiatives such as Aadhaar or even, you know, DigiLocker or even Umang, I'm just giving some few examples, that they have not only made public services mobile and paperless, but they've also in a way deepened the trust of the people in the government systems, Mr. Kohli?
2: I think it has brought the banking system, Anubha, in the pockets of people.
1: Financial and inclusion?
2: Absolutely. You know, Jan Dhan Yojana, more than 56 crore accounts. And these were the people who probably thought that banks are always a dream for us. Yeah. You know, they used to keep their money, you know, under the mattresses and so on. So today, all that money is in the bank and a very substantial deposit is there. I think 25 lakh crore rupees every month, 300 lakh crore rupees of transactions happening in a year.
1: Yes.
2: I think this has been transformational. And a lot of countries around the world now want to emulate that example. So many countries have borrowed this fintech innovation from us and they want to go for it, from buying a roadside nariyal to probably making big payments at the hotels. Just about, I have a feeling, Anubha, as an economic analyst, that to my mind, this has added about a percentage point to GDP, which means just the UPI has facilitated our GDP in stepping up by about 100 basis points, which is a very, very significant value for that matter.
1: Ashok ji, aap kuch kehna
0: chahte hain? Yeah, main ye kehna chahta hoon ki ye Janadhan, Aadhaar aur mobile, ye jo jam ki tikdi hai, isne bicholiyon ko khatam kar diya hai. Aur iske saath saath jo 1600 से अधिक पुराने और ऑब्सोलीट कानून जिनको हम कहते हैं उनको खत्म किया गया है. सरकारी नौकरियां हो, निचले स्तर में इंटरव्यूज को खत्म किया गया है. दस्तावेजों के सेल्फ अटेस्टेशन को शुरू किया है. ये सब भ्रष्टाचार को भी समाप्त करते हैं और सबसे ज्यादा इसका लाभ जो है वो मध्यम वर्ग को हुआ.
1: जी, हम क्योंकि डिजिटाइजेशन की बात कर रहे हैं और हम बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन की, तो इंटरनेट कनेक्टिविटी को भी बात करना बहुत जरूरी बन जाता है. पिछले 12 सालों में सरकार के विभिन्न प्रयासों के चलते लगभग 98% गांवों में 4G कनेक्टिविटी पहुंच चुकी है और तेज इंटरनेट के चलते ग्रामीण विकास में काफी तेजी आई है. उसे आप कैसे देखते हैं? और साथ ही साथ डेटा इतना सस्ता हुआ है पिछले 12 सालों में, और ये जो हमारी जिस तरह से तेज कनेक्टिविटी मिली है, इससे मध्यम वर्ग के विकास पर किस तरह का और कितना प्रभाव पड़ा है?
2: जबरदस्त प्रभाव पड़ा है अनुभव. आपने ऐसा लगता है जैसे इस मध्यम वर्ग की जो दुखती रक्त थी उस पे हाथ रख दिया, बिकॉज दुनिया का सबसे सस्ता डेटा हमारे देश में है. और क्या कमाल इसने किया है कि इसने जो गांव और शहर के बीच में जो एक खाई हुआ कर
1: डिजिटल डिवाइड, जिसको
2: डिजिटल डिवाइड क्या लाइफस्टाइल डिवाइड था, बिकॉज दीज पीपल इन द विलेज अनुभव, दे नेवर यूज used to know what's happening in the town. Today, when I go to a village, I find the things they use, the way they talk, what they wear, the lifestyle they lead. It's pretty much like a normal town citizen. And there are so many learnings which are happening. A prime minister recently made an appeal which said ki aap online classes lijiye. Kaise ye COVID mein hum karte, padhai ki likhai band ho jani thi. Agar ye connectivity nahi hoti, bachchon ka koi nuksan COVID mein nahi hua. Aaj bhi Pradhan Mantri ji, hum apne videshi mudra bachane ke liye, unhone kaha ki aap online classes lijiye. Kyun keh pa rahe hain? Kyunki unko pata hai ki uske peeche internet aur digital connectivity ki power aaj
1: hai. Sarkar ne jo pichle 12 saalon mein kaam
2: kiya hai, uske aadhar par unhone bola, unko pata hai ki isse koi nuksan nahi hoga aur log waise hi labh uthate rahenge. So I think this whole or work from home, work from anywhere for that matter, mujhe aise log milte hain Anubha, who used to live in say Delhi, Mumbai, Bangalore, aaj wo kahin pahadon par ja ke rehte hain aur bahut sukoon ki zindagi jeete hain aur shayad unke employer ko, unke clients ko ye malum bhi nahi hota ki wo kahan baith ke kaam kar rahe hain. That has been the magic of digitalization.
1: Ashok ji, aap kuch kehna
0: chahenge? Nahi, main isme social security ka angle zarur lana chahta hun, kyunki jo unorganized sector hai aur jo labor hai, shramik hai, unke liye jo प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना आई है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना आई है और अटल पेंशन योजना आई है, ये ऐसी योजनाओं के आने से और पीएम स्वनिधि योजना है, इसके जरिए स्ट्रीट वेंडर जो है, सड़क पर जो सामान लगाता है, रेड़ी खोमचा लगाता है, और उनको फिर से अपना काम करने के लिए कितनी आसान शर्तों पर जो है वो लोन दिया जा रहा है. तो इसी कड़ी में मैं एक चीज और ऐड करूंगा कि 12 सालों में ये जो गुड गवर्नेंस का मंत्र दिया गया, सुशासन, और भारत के जो प्रशासनिक, आर्थिक और सामाजिक ढांचे को पूरी तरह से बदल दिया गया है, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, ये जो सिद्धांत पर चलते हुए सरकार ने ट्रांसपेरेंसी लाई है, स्पीड लाए हैं और टेक्नोलॉजी पर जो जोर दिया है, ये गुड गवर्नेंस भी अल्टीमेटली हम देखें तो मिडिल क्लास को ही इसका लाभ हो रहा है.
1: We have seen in the last 12 years, since 2014, when NDA government under Prime Minister Modi, you know, came in power, we have seen that there's been a continuous focus on expanding and improving infrastructure. In fact, every year in budget, we've been seeing an increase in the allocation for infrastructure. So how has this improved the quality of life of the middle class and fast-tracked their economic prosperity?
2: Oh, it's done in a huge way, because we pick up anything. For example, highways. Any middle-class family traveling from one town to another, 8 to 9 hours, Anubha, for a 200-kilometer distance was a normal earlier. Now you cover that distance in 2 hours and 2.5 hours. Look at the time saved. And if you're using your own vehicle to travel, look at the wear and tear that you save. And why forget metros? The way metro has been expanded, Anubha, over the last few years, I have stories of somebody in Delhi or Mumbai, you know, who used to spend 2 hours to reach the workplace, 2 hours to come back. Today, that journey happens in 25 minutes. Look at the saving in fatigue which that commuter does. And Uran, Hawaii Chappal se Hawaii Yatra tak. Well, a plane journey used to be a dream for people. Ke hum sari umar mein sochta tha kab main hawai jahaz mein baithunga. Aaj mujhe lagta hai aap agar kisi bhi hawai yatra mein jaye, aapko ek aam aadmi usme dikhega. Ab wo aisi luxury nahi hai. Chote chote airports ko banakar unko connect kar dena aur chand minton mein ya ghante mein pahunch jana, jiske liye aap sari raat ki journey karte the. Aapko yaad hoga Rajdhani aur Shatabdi, akeli trains hua karti thi jo ki premium boli jati thi, jaldi pahunchna hai. Aaj Vande Bharat leke aap kuch ghanton mein ek jagah se dusri jagah aur aise comfort mein pahunch rahe hain, which is of international level. The things we used to watch internationally, ke is train mein TV bhi hota hai, isme reclining seats hoti hain, aaj wo mujhe lagta hai aam aadmi ke pahunch mein. So I think this government has brought luxury, which used to be called earlier, as a comfort and necessity to the people of the country.
1: And you know, that brings me to my next question, kyunki aap jise baat kar rahe ke infrastructure mein jo improvement hua hai, be it roads, be it railways, be it, you know, airports, jo expansion hua hai, to humne dekha hai ki हवाई यात्रा में, जैसे भी आपने कहा कि बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुई है, वंदे भारत जैसे हमारे पास वर्ल्ड क्लास ट्रेन्स हैं, जहां 2014 में सिर्फ 74 एयरपोर्ट थे, अब वो बढ़ के 160 हो चुके हैं, 225 तक. जो मेट्रो रेल का नेटवर्क है वो 26 शहरों में फैल चुका है. तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जैसे हम कार्यक्रम के शुरू में हम बात कर रहे थे कि मध्यम वर्ग की चिंता होती थी रोटी कपड़ा मकान पर, अब जब उनकी ये बेसिक नेसेसिटीज काफी हद तक वो आराम से उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं क्योंकि वो पूरी हो रही है, तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बढ़ा है, इसको जो फैल रहा है तेजी से, इससे मध्यम वर्ग की जो आकांक्षाएं हैं, जो एस्पिरेशंस हैं, उस पर कितना असर पड़ेगा, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? अशोक जी, पहले आपसे.
0: इसके लिए ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि ये जो कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर में बुनियादी ढांचे हो रहे हैं, उसके लिए एक पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान बनाया गया और इसीलिए एक सेक्टर में जो प्रगति हो रही है इंफ्रास्ट्रक्चर की वो सब एक दूसरे को जानते हैं, उनकी मॉनिटरिंग हो रही है और उससे जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है और उसमें स्टार्टअप भी लगे हुए हैं। ये सब काम कोई सरकार अकेले नहीं कर रही है, चाहे वो हम सड़कों की बात करें या रेलवे की बात करें, तो उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो हो रही है वो भी मिडिल क्लास को बहुत फायदा कर रही है। अब देखिए ना, जब रेलवे का एक्सपेंशन हो रहा है तो हम देखें लाखों मजदूर उसमें काम करते हैं, तो ये कुल मिलाकर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो जीडीपी

0: में केवल हाईवेज और रोड 1% तो जीडीपी में वही बढ़ोतरी करते हैं। अगर आप सोचिए रेलवे को अगर ले लें और हम एयर ट्रैफिक वगैरह की बात करें, तो इस मामले में अगर देखें तो जो एक डेवलपिंग कंट्री के नाते भारत रहा है अब तक, उसकी पहचान है, वो अब बड़ी तेजी से डेवलप्ड कंट्री की ओर जा रहा है। इसलिए जो लक्ष्य रखा गया है कि हम 2047 तक हम विकसित भारत बनेंगे, उसकी ओर देश तेजी से बढ़ रहा है।
1: शरद जी, आप क्या कहेंगे, हम जब बात कर रहे थे एस्पिरेशंस की, आकांक्षाओं की, अब मध्यम वर्ग का जो पिछले 12 सालों में हमने देश में विकास देखा है, आर्थिक विकास देखा है, टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन देखी है, हर तरह से जो हमारा देश प्रगति की राह पर एक बहुत तेजी से अग्रसर हो रहा है, उससे मध्यम वर्ग की आकांक्षाओं पर कितना असर पड़ रहा है और उनकी आकांक्षाएं जो पूरी हो रही हैं उससे देश की पूरी ओवरऑल डेवलपमेंट पर कैसा असर पड़ रहा है?
2: आई थिंक द पॉइंट यू हैव रेज्ड अनुभव रिलेट्स टू विकसित भारत 2047, और अभी आपने जब बुनियादी ढांचे की बात करी तो उसमें हर एक रुपया जो बुनियादी ढांचे पर खर्च किया जाता है, ये एक आर्थिक सिद्धांत है, उसका 8 गुना मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। आपने कहीं सड़क बनाई, उसके आसपास अस्पताल आ जाएंगे, होटल्स आ जाएंगे, अपार्टमेंट्स आ जाएंगे, मॉल्स आ जाएंगे, इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स आ जाएंगे। देखिए, एक सड़क बनने से, और ये ऐसे मेरे पास अनेकों उदाहरण है देश के, अगर मैं कोई भी एक सड़क उठा लूं, तो मुझे लगता है कि ये जो विकसित भारत की यात्रा है पूरी, ये जो आपने एस्पिरेशनल इंडिया की बात करी, ये विकसित भारत की यात्रा में बहुत बड़ा कदम है। क्योंकि मुझे याद है एक फिल्म आई थी रोटी कपड़ा मकान, और अगर आप उस फिल्म को याद करें और आज उसको इस परिपेक्ष में देखें, ऐसा लगता है उस फिल्म को हम 300-400 साल पहले छोड़ के आ चुके हैं। क्योंकि जब लोग देखते हो कहते हैं ये भी जमाना था क्या, रोटी कपड़े मकान के बारे में सोचना पड़ता था। क्योंकि आज आप सोचते हैं कि आप हवाई जहाज में बैठ रहे हैं, आज आप सोचते हैं कि आप वर्ल्ड क्लास हाईवे में ट्रैवल कर रहे हैं, आज आप सोचते हैं कि आप एक इनोवेटिव स्टार्टअप चला रहे हैं। तो मुझे लगता है वी हैव कम अ वेरी लॉन्ग वे अनुभव फ्रॉम वेयर वी वर।
1: यू नो, व्हेन वी टॉक अबाउट द मिडिल क्लास नाउ, वन सेगमेंट ऑफ द मिडिल क्लास दैट आई थिंक वी हैव टू टॉक अबाउट एंड वी शुड मेंशन इज द वुमेन। Women, you know, are the backbone of any middle-class family. What, in your opinion, in the last 12 years, the various schemes, the various initiatives that the Modi government has taken, how have they uplifted and empowered women, especially of the middle-class women, which in turn, you know, have made the middle class much more prosperous? Ashok ji, aap batana chahiye.
0: Dekhiye, humne jitni bhi jan kalyan yojanaon ki baat ki hai, agar hum dekhenge to fayda to usse हर वर्ग को हुआ है, लेकिन विशेष तौर से महिलाओं और किसानों और युवाओं से जुड़े हुए जो हैं। अब आप देखिए, अगर हम बात करें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की, तो जो गरीब परिवारों की महिलाओं को धुएं से जो मुक्ति मिली और उससे स्वच्छ ईंधन की उपलब्धि हुई और मुफ्त एलपीजी भी, ये तो सीधा सीधा मैं कहूंगा महिलाओं के ही कल्याण के लिए हुआ है। इसी तरह से हम जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की बात करें और सामाजिक सुरक्षा के लिए, तो मैंने पहले भी कहा है, तो महिलाओं के लिए आवास की योजना हमने बात की, टॉयलेट के बारे में बात की, तो ये सब योजनाएं, आयुष्मान भारत, ये योजना से भी जो 5 लाख का मुफ्त इलाज है, इसमें महिलाएं सबसे ज्यादा, इनको भी लाभ हो रहा है। और सबसे बड़ी यही है कि जिसको हम वेमेन एम्पावरमेंट कहते हैं, तो उसमें लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए गए हैं, स्टार्टअप में बहुत महिलाएं हैं, तो हर क्षेत्र में महिलाएं जब सामने आ रही हैं और उनकी अगर स्वास्थ्य सुरक्षा, जैसे वेमेन सिक्योरिटी है, तो ये चीजें जब आज तसल्ली होगी तो महिलाएं ज्यादा से ज्यादा बाहर आकर काम करेंगी और इन सब योजनाओं का लाभ उठाते हुए वो आज खुद भी सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू या अदरवाइज स्टार्टअप के थ्रू वो भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही हैं।
1: जी, अशरद जी, आप कुछ कहना चाहेंगे?
2: आई थिंक वुमेन एम्पावरमेंट हैज बीन द थीम ऑफ दिस गवर्नमेंट, एंड महिला सशक्तिकरण जिसको हम कहते हैं, और महिलाएं चाहे उनकी एजुकेशन की बात हो, बिटिया की पढ़ाई की बात हो, बिटिया की सुरक्षा की बात हो, मुझे लगता है यहां से सारा का सारा ये जो उत्थान हुआ है वहां से निकल कर आया। एंड टुडे वुमेन, एज आई सेड अर्लियर, दे आर इन द मेन स्ट्रीम, द परसेंटेज ऑफ वुमेन हु आर इन्वॉल्व्ड इन द मेन स्ट्रीम दैट इज इंक्रीजिंग, एंड दिस इज अनुभव नॉट जस्ट हैपनिंग इन द टाउन्स। आई फाइंड लॉट ऑफ वुमेन, एज मिस्टर टंडन सेड, दैट यू नो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, वहां पर महिलाएं इकट्ठी होकर कुछ बिजनेस शुरू कर रही हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव बन गई है, जहां से बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज के जरिए महिलाएं आगे आ रही हैं। और आप अगर देखें इसका रिजल्ट कहां दिख रहा है अनुभव, तो आप देखें कि जब भी रिजल्ट्स आते हैं किसी भी एग्जामिनेशन के, वहां महिला कैंडिडेट सबसे आगे होती हैं। ये इस बात को बताता है कि सरकार ने महिला एजुकेशन को और महिलाओं के सशक्तिकरण को कितना सीरियसली लिया है। और हमारी आधी आबादी है, तो मुझे लगता है कभी भी उनके साथ भेदभाव तो कभी भी जस्टिफाइड नहीं था, पर आज जो विभिन्न स्कीम्स की वजह जैसे महिलाओं के हम स्कीम्स गिनवाए तो बहुत लंबी लिस्ट है महिलाओं की स्कीम की, पर मुझे लगता है कि महिलाओं का मेन स्ट्रीम में आना, और अगर मैं एक जरूरी बात कहना चाहूंगा अनुभव, आई थिंक यू विल बी एबल टू रिलेट, अगर महिला काम नहीं भी कर रही है, मान लीजिए वो कहीं कमाई नहीं करती है, तो घर बैठे बैठे प्रधानमंत्री आवास योजना के जो घर हैं, महिलाएं इस बात को मानेंगे पहले उनके नाम किए गए हैं।
1: बिल्कुल,
2: आप देखिए कि घर में अगर पुरुष, वो खाली पुरुष है तो अलग बात है, पर अगर महिला है तो घर बैठे बैठे महिला सशक्तिकरण हो रहा है, महिला अपने पति

0: को कह सकती है, देखिए ये घर मेरे नाम है, मेरा भी इस घर में उतना ही योगदान है। और मैं समझता हूँ उसने महिला को एक कॉन्फिडेंस दिया है। सबसे बड़ा अचीवमेंट मैं महिलाओं के मामले में मानता हूँ ये उनका कमाई के जरिए बनना, इन्होंने उज्ज्वला की बात करी, वो सब तो है ही है, पर मुझे लगता है महिलाओं में एक जो कॉन्फिडेंस आया है, और ये कॉन्फिडेंस आपको बताऊं सबसे ज्यादा मुझे कहां दिखा, जब प्रधानमंत्री जी ने महिला का पार्लियामेंट में बिल लाने की सरकार ने मुहिम छिड़ी, किसी वजह से वो नहीं पास हो पाया, पर सरकार की इंटेंट बताती है कि महिलाएं आधी आबादी नहीं है, महिलाएं ज्यादा शक्तिशाली आबादी भी है, ये प्रधानमंत्री जी की मंशा रही है।
1: आप दोनों से मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी कि हम अब तक बात कर रहे थे कि मोदी सरकार के पिछले 12 साल में जो उन्होंने कदम उठाए उसका मध्यम वक्त में कितना फर्क पड़ा, कितना असर पड़ा, बट व्हेन वी लुक एट यू नो इन द फ्यूचर, लेट्स लुक एट द इन द फ्यूचर, इन द नेक्स्ट डेकेड वेयर डू यू सी द इंडियन मिडिल क्लास, वेयर इट इज गोइंग टू बी, एंड हाउ मच ऑफ अ मेजर फैक्टर विल इट बी इन इंडियाज डेवलपमेंट? अशोक जी,
2: देखिए जब हम बात कर रहे हैं ओवरऑल डेवलपमेंट की, तो मिडिल क्लास भी हम मान रहे हैं कि उसका सबसे ज्यादा उनको फायदा हो रहा है, तो यही मिडिल क्लास देश को प्रगति की ओर भी ले जा रहा है, और यही मिडिल क्लास ही देश को आज हम देखते हैं तो खेलों के मैदान में जो हो रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा खिलाड़ी हमारे मिडिल क्लास हैं। पहले हम सोचते थे कई खेल ऐसे हैं जो बहुत अमीर लोगों के खेल हैं, आज जो है स्मॉल टाउन से क्रिकेटर्स आ रहे हैं, हॉकी के प्लेयर्स आ रहे हैं, रेसलर्स आ रहे हैं, यहाँ तक कि टेनिस के प्लेयर्स भी आ रहे हैं, तो ये सब जो विकास हो रहा है तो खेलों में हमें दिखाई दे रहा है, ऐसे ओलंपिक वगैरह ये देखें तो ये सब मिडिल क्लास का ही आगे बढ़ना है, और इससे आगे चलकर मिडिल क्लास वो भी ये जो विकसित भारत का सपना है उसमें मुझे लगता है सबसे ज्यादा योगदान यही मिडिल क्लास देगा।
1: शरद जी, अशोक जी ने गरीब और अमीर का जो अंतर है वो बहुत कम होता जा रहा है।
0: देखिए जब भी कोई अर्थव्यवस्था विकास की ओर बढ़ती है, डेवलप की ओर बढ़ती है, तो वो खाई अपने आप भरती जाती है। मैं मिडिल क्लास को पर्सनली तीन हिस्सों में बांटता हूँ, लोअर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास, तो मुझे लगता है इन तीनों को अगर हम मिला दें, आपका क्योंकि सवाल था कि हम भारत के विकास में इनका क्या योगदान रहेगा, मुझे लगता है लोअर मिडिल क्लास में आएगी, मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास में आएगी, और अपर मिडिल क्लास शायद अमीर बन जाए। द बिगेस्ट सक्सेस स्टोरीज, if you take in the world of sports, you take in the world of innovation, you take in the world of space, you take in the world of anything, I think the biggest success stories are coming from middle class.
1: Mr. Ashok Tandon, Mr. Sharad Kohli, thank you so much for joining us in Akashvani's special series on 12 years of Modi government.
0: It was a pleasure.
2: Thank you.
3: विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मोदी सरकार के 12 साल, सुधार, सुशासन और जन कल्याण से सशक्त होता मध्यम वर्ग। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन और आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी अनुभा रोहतगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnstalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: In the special series, you were listening to a discussion on 12 years of the Modi government transforming middle-class lives through reform and welfare. Participants were Ashok Tandon, political analyst, and Sharad Kohli, economic analyst. Moderator was Anubha Rohatgi. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani. You can listen to it on our mobile app, News on Air. This program is also available on our YouTube channel, News on Air Official. You may share your feedback about this program through email at airnsdtalks@gmail.com or WhatsApp on 9289094044.

अभी आप सुन रहे थे विशेष श्रृंखला मोदी सरकार के 12 साल की तीसरी कड़ी। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम बैंड के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात के 8:35 हो चुके हैं और अब आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

आयुष्मान खुराना की आवाज़ में विकी डोनर इस फिल्म का ये गाना अभी आप सुन रहे थे। रोचक कोहली और आयुष्मान खुराना का लिखा गीत और रोचक कोहली का संगीत। श्रोताओं, इसके साथ ही फिल्म संगीत की प्रस्तुति से मुझे यानी विभा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। फिल्म संगीत का कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम बैंड के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात के 8:45 होने ही वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से समाचार संध्या। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के साथ बैठक की, देश की आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं की समीक्षा की। केंद्र ने खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग साइज लागू किए, इसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और एक समान पैकेजिंग को बढ़ावा देना है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत की, कहा दोनों देश खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए निकट सहयोग कर रहे हैं। कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। जापान में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जापान को हराकर अंडर 18 एशिया कप जीता, भारतीय महिला टीम ने कांस्य पदक हासिल किया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। सभी सदस्यों ने सुधार यात्रा को और गति देने तथा जीवन यापन और व्यापार में सुगमता सुनिश्चित करने के लिए अपने विचार साझा किए। आर्थिक सलाहकार परिषद एक स्वतंत्र निकाय है जो भारत सरकार विशेष रूप से प्रधानमंत्री को आर्थिक और संबंधित मुद्दों पर सलाह देती है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति है और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है।
1: देश का 65 पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि देश युवा देश है। ये देश की युवा की शक्ति को विकसित भारत के राह पर ले जाने के लिए संयोजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं और दोनों देश संकट के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध जीवंत, जनसंबंध, सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर बना है।
2: Collaborate closely to maintain security along and uniquely open border.
3: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
0: श्री खनाल ने कहा कि भारत नेपाल का सबसे महत्वपूर्ण साझेदार है और नेपाल ने भारत को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रतिबंधों की धमकी देकर भारत की संप्रभुता को कमजोर करने का कोई भी प्रयास उल्टा पड़ेगा। सेंट पीटर्सबर्ग में श्री पुतिन ने स्वतंत्र निर्णय लेने और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने बाहरी दबाव की परवाह किए बिना हमेशा अपने हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिए हैं। श्री पुतिन ने कहा कि रूस और भारत के संबंध आपसी विश्वास पर आधारित हैं और व्यापार से कहीं आगे तक हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम सहित संयुक्त अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में सक्रिय रूप से शामिल हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: में विभिन्न पैकेज आकारों की बढ़ती संख्या कम करना है। इससे उपभोक्ताओं के लिए कीमतों की तुलना और सोच समझकर खरीदारी करना आसान हो जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। कोलकाता के नबन्ना में श्री वैष्णव ने बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्षों में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की भी घोषणा की।
1: मेट्रो के लिए इसकी न्यू ट्रेन्स, नई जनरेशन की ट्रेन्स अगले 5 वर्षों में इंडक्ट करेंगे। नई जनरेशन की ट्रेन्स आने से कोलकाता के निवासियों को बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, वो भी एक बहुत बड़ा आगे स्टेप लिया जाएगा।
0: संचार और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री पेम्मा सानी चंद्रशेखर ने आज आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के नारकोदुरु गांव में समृद्धि केंद्र का लोकार्पण किया। ये गांव को डिजिटल व्यवस्था में परिवर्तित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नारकोदुरु एकीकृत ग्रामीण विकास मॉडल अपनाने वाला भारत का तीसरा और तेलुगु भाषी राज्यों का पहला गांव बन गया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में 4th लेवेंडर महोत्सव का शुभारंभ किया। महोत्सव की थीम है लेवेंडर गोज ग्लोबल। 2 दिन के इस महोत्सव में बैगनी क्रांति की उपलब्धियों और क्षेत्र में बढ़ते लेवेंडर उद्योग को प्रदर्शित किया गया है। इससे लेवेंडर की खेती और उद्यमिता की बढ़ती सफलता का पता चलता है। राज्य के किसानों और युवा उद्यमियों के लिए लेवेंडर की खेती ने आजीविका के नए अवसर सृजित किए हैं। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ और रजनीश अग्रवाल ने आज नामांकन पत्र भोपाल में भरा। कांग्रेस ने पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन को उम्मीदवार बनाया है। उधर आंध्र प्रदेश में जन सेना पार्टी के लिंग मनेनी रमेश ने अमरावती में नामांकन दाखिल किया। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन झारखंड के 2 दिन के दौरे पर आज रांची पहुंचे। उन्होंने कहा कि झारखंड उनकी जन्मस्थली और दूसरा घर है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और पार्टी के अन्य पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं ने श्री नवीन की यात्रा को संगठन के लिए महत्वपूर्ण बताया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
2: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के मिसाइल हमलों से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
3: खाड़ी देशों और अमरीका के एयर डिफेंस सिस्टम ने ज्यादातर मिसाइलों को हवा में ही नाकाम कर दिया। इससे जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ। होर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरानी ड्रोन की गतिविधियों की खबरों के बाद अमरीकी सेना ने केशम द्वीप और गोरुक में ईरान के राडार और निगरानी ठिकानों को निशाना बनाया था, जिसके कुछ ही घंटों बाद ईरान ने ये हमले किए। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि लगातार जारी अभियानों से ईरान की मिसाइल क्षमता काफी कम हो गई है। हालांकि ईरान ने इस दावे को खारिज कर दिया है। संघर्ष विराम पर बातचीत रुकी हुई है और क्षेत्र में तनाव लगातार बढ़ रहा है। दुबई से विनोद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए।
4: I'd like to remind Pakistan that being a member of the...
5: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। यह पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
4: Claims by Pakistan would not change this fundamental reality.
0: जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि मादक पदार्थ मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान एक सशक्त जन आंदोलन के रूप में उभरा है। किश्तवाड़ में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि 19 जिलों में 56 दिनों से जारी इस अभियान ने बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित किया है। उपराज्यपाल ने कहा कि प्रशासन मादक पदार्थों के कारोबार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रहा है।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के फिरोजपुर जिले में हुई दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका सड़क पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई और 22 लोग घायल हो गए। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज का 353वां राज्याभिषेक समारोह आज पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। मुख्य कार्यक्रम रायगढ़ जिले के महाड तालुका में स्थित रायगढ़ किले में आयोजित किया गया। 6 जून 1674 को शिवाजी का ऐतिहासिक राज्याभिषेक हुआ था। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। CBSE ने बताया कि विद्यार्थी अब कल मध्यरात्रि तक अपनी आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि आज तक ही निर्धारित थी। मौसम विभाग ने कल तटीय कर्नाटक, केरलम और माही में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश हिस्सों, आंतरिक कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मानसून आज महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर में आगे बढ़ गया है। जापान में भारतीय अंडर 18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में भारत ने जापान को 4-1 से हराया। आशीष तानीपूर्ति ने 3 और कप्तान केतन कुशवाहा ने 1 गोल किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय हॉकी टीम को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि टीम ने पूरे टूर्नामेंट में असाधारण कौशल और टीम वर्क का प्रदर्शन किया। उन्होंने अंडर 18 एशिया कप में कांस्य पदक जीतने पर भारतीय महिला हॉकी टीम को भी बधाई दी है। गोवा में भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 3-0 से हराया। भारत ने 6ठी बार ये खिताब अपने नाम किया है। अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप में रोहन ताइडे ने सब जूनियर आर्टिस्टिक सिंगल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। भारत अब तक 6 स्वर्ण पदक सहित कुल 7 पदक जीत चुका है। पदक तालिका में भारत शीर्ष पर बरकरार है। न्यू चंडीगढ़ में भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 3 विकेट पर 368 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल 103 और ऋषभ पंत 50 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। केएल राहुल ने 100 रन और साई सुदर्शन ने 81 रन की पारी खेली। ये टेस्ट मैच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा नहीं है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के साथ बैठक की। देश के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं की समीक्षा की। केंद्र ने खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग साइज लागू किया। इसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और एक समान पैकेजिंग को बढ़ावा देना है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत की। कहा दोनों देश खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए निकट सहयोग कर रहे हैं। कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। जापान में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जापान को हराकर अंडर 18 एशिया कप जीता। भारतीय महिला टीम ने कांस्य पदक हासिल किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds meeting with the Economic Advisory Council, reviews country's economic transformation and long-term development priorities. Centre introduces standard edible oil pack sizes to enhance transparency and promote uniform packaging practices. External Affairs Minister S. Jayashankar holds talks with his Nepalese counterpart Shishir Khanal in New Delhi. Says India and Nepal collaborate closely to maintain security along their open border. Tensions across West Asia escalate as Iran launches ballistic missiles towards

0: नमस्कार, आकाशवाणी की अखिल भारतीय साहित्य पत्रिका साहित्य भारती में आपका स्वागत है। मैं हूं नवोदिता। हिंदी पत्रकारिता अपने 200 वर्ष पूरे कर रही है। उन महिला पत्रकारों को याद करना जरूरी है जिन्होंने पर्दे के पीछे नहीं बल्कि मोर्चे पर खड़े होकर कलम उठाया। रोशनी गुलाबी रोशनाई की आज का हमारा संपादकीय इसी यात्रा को सलाम करता है। आज से लगभग 200 साल पहले 30 मई 1826 को कलकत्ता की एक तंग गली में पंडित जुगल किशोर शुक्ल के संपादन में उदंत मार्तंड का पहला अंक प्रकाशित हुआ था। लेकिन इस सूर्योदय की कहानी तब तक अधूरी है जब तक हम उन महिलाओं के योगदान को स्वीकार नहीं करते जिन्होंने पितृसत्तात्मक समाज की बेड़ियों को तोड़कर कलम उठाया, पत्रिकाएं निकाली और हिंदी पत्रकारिता को एक नया आयाम दिया। भारत की पहली महिला पत्रकार के रूप में हेमंत कुमारी देवी चौधरानी का नाम अंकित है। 19वीं सदी के आखिर में जब भारतेंदु हरिश्चंद्र के कलम का चर्चा चारों ओर था, हेमंत कुमारी देवी उनकी समकालीन लेखिका और संपादिका के रूप में सक्रिय थी। सन 1888 में उन्होंने सुगृहिणी पत्रिका का संपादन किया। सन 1909 में प्रयाग से स्त्री दर्पण पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ। इसकी संपादिका थी रामेश्वरी देवी नेहरू और प्रबंधक थी कमला देवी नेहरू। ये महज एक पत्रिका नहीं थी, भारतीय नारी की सामूहिक चेतना का प्रथम मुद्रित स्वर था। इस पत्रिका ने बाल विवाह, विधवाओं की दयनीय स्थिति, स्त्री शिक्षा के अभाव और पर्दा प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों को अपने पैने कलम का निशाना बनाया। आधुनिक हिंदी साहित्य में महादेवी वर्मा का नाम यदि केवल कविता तक सीमित रखा जाए तो ये उनके साथ अन्याय होगा। फ्रांसीसी लेखिका सिमोन दी बोवार की प्रसिद्ध पुस्तक द सेकंड सेक्स आने से कई वर्ष पहले ही महादेवी वर्मा ने 1930 के दशक में चांद जैसी पत्रिकाओं के लिए महिलाओं के उत्पीड़न पर शक्तिशाली निबंधों की एक श्रृंखला लिखी थी। ये निबंध केवल साहित्यिक अभिव्यक्ति नहीं थे, सामाजिक पत्रकारिता के उत्कृष्ट उदाहरण भी थे। स्वाधीनता आंदोलन के दौर में हिंदी पत्रकारिता ने राष्ट्रीय चेतना की मशाल थामी। इस मशाल को थामने में महिला पत्रकारों की मुट्ठियां भी लगी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान, जिनकी कविता झांसी की रानी आज भी रक्त में उबाल लाती है, उन्होंने पत्र पत्रिकाओं में अपनी लेखनी से स्वाधीनता की अग्नि को भड़काया। इसी श्रृंखला में प्रताप, अभ्युदय और हिंदुस्तान जैसे पत्रों में महिला लेखिकाओं की सक्रिय भागीदारी रही। स्वतंत्रता के बाद हिंदी पत्रकारिता के विस्तार के साथ महिला पत्रकारों की भूमिका भी बदली। प्रभा दत्त जैसी संपादक ने ये साबित किया कि हिंदी के बड़े समाचार पत्र का नेतृत्व एक महिला भी उतनी ही सक्षमता से कर सकती है या शायद बेहतर कर सकती है। तब से लेकर आज तक प्रखर पत्रकारिता के माध्यम से बढ़कर एक महिला पत्रकार स्वयं को मुख्य धारा की पत्रकारिता में स्थापित करती आ रही है, जनता के हक की लड़ाई लड़ती आ रही हैं। आज के डिजिटल युग में महिला पत्रकारों की एक नई पीढ़ी सामने आई है। वेब पोर्टल, यूट्यूब पत्रकारिता, पॉडकास्ट और सोशल मीडिया पर हजारों महिलाएं उन मुद्दों को उठा रही हैं, जिन्हें मुख्य धारा की पत्रकारिता अनदेखा करती है। ग्रामीण महिला पत्रकारिता में खबर लहरिया जैसे प्रयोग ये सिद्ध करते हैं कि नारी का कलम अब केवल शहर के संपादकीय कक्ष तक सीमित नहीं है। लेकिन श्रोताओं, ये संपादकीय केवल उपलब्धियों का गान नहीं है, ये एक ईमानदार आत्म परीक्षण भी है। 200 सालों के उत्सव के बीच संख्याओं का उपलब्ध आंकड़ा असहज करता है। क्या ये उन महिलाओं की विरासत के साथ न्याय है जिन्होंने लगभग 200 साल पहले समाज की परवाह किए बिना कलम उठाया था? आकाशवाणी, जिसकी आवाज ने दशकों से इस देश के घर घर को जोड़ा है, गांव की चौपाल से लेकर शहर के दफ्तर तक रेडियो सिर्फ एक माध्यम नहीं, एक रिश्ता रहा है। आकाशवाणी के 90 वर्षों की इस अनूठी यात्रा पर आज अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार कुर्बान अली।
1: मैं पिछले 40 वर्षों से पत्रकारिता कर रहा हूं, ऑल इंडिया रेडियो में भी काफी आता रहा हूं। जो पिछले 90 वर्षों का ब्रॉडकास्टिंग का इतिहास है, खास करके जो हिंदी, उर्दू और इलाकाई जबानें हैं उनमें ब्रॉडकास्टिंग का, उसका बड़ा एक गौरवशाली इतिहास रहा है। और आज़ादी के वक्त से लेकर और

0: अब तक, क्योंकि ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत देश की आजादी से पहले हो गई थी, देश के नवनिर्माण से लेकर के आज तक 80 बरस हो गए हैं देश की आजादी को भी, तो उसमें ऑल इंडिया रेडियो का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं समझता हूँ कि बहुत ही कारगर योगदान है। न सिर्फ ये कि उसने लोगों को खबरें पहुंचाने का काम किया है, बल्कि उन्हें एजुकेट करने का और उनका एंटरटेनमेंट करने का भी काम किया है। ये एक बहुत बड़ा रोल है। और चूंकि एक जमाना था कि जब सिर्फ ऑल इंडिया रेडियो ही हुआ करता था, 90 तक मैं समझता हूँ कि ऑल इंडिया रेडियो का बहुत बड़ा योगदान इस देश के लिए रहा है और उसे कभी भुलाया नहीं जा सकेगा।
1: वरिष्ठ पत्रकार कुर्बान अली, उनके अनुभव, उनकी स्मृतियाँ और उनका विश्लेषण निश्चित ही हमें रेडियो की उस आत्मा तक ले जाएगा जो आज भी धड़क रही है। सच में जिस माध्यम ने आजादी की आवाज को सहेजा, देश की भावनाओं को बोली दी, वो आकाशवाणी कोई यंत्र नहीं, एक जीवंत परंपरा है।

0: साहित्य जब समाज से कट जाता है तो केवल शब्दों का खेल बन जाता है, लेकिन जब साहित्य की जड़ें जमीन से जुड़ी हों तो वो एक नया अर्थ पा लेता है। आज की हमारी अगली प्रस्तुति में हम एक ऐसी ही जरूरी बातचीत लेकर आए हैं वरिष्ठ साहित्यकार पंकज बिष्ट के साथ। उनसे बातचीत कर रहे हैं प्राध्यापक और साहित्यकर्मी विशाल पांडे। तो सुनते हैं हमारी अगली प्रस्तुति, साहित्य समाज और सरोकार।
1: पंकज बिष्ट अपनी कहानियों और संपादन के लिए हिंदी साहित्य में जाने जाते हैं। उनकी कहानियां 15x25, बच्चे गवाह नहीं हो सकते, उपन्यास लेकिन दरवाजा, उस चिड़िया का नाम, पंख वाली नाव, गोलू और भोलू से हिंदी साहित्य हम सभी समृद्ध हुए। मैं जानना चाहूंगा पंकज जी कि लेखन की ओर आपका पहला झुकाव कब और कैसे उत्पन्न हुआ?
2: देखिए, ये कहना तो थोड़ा मुश्किल है कि मैं ये नहीं मान के चलता था कि मैं कहानीकार बनूंगा या उपन्यासकार बनूंगा, लेकिन मैं ये चाहता था कि मैं लिखने पढ़ने का काम चुनूं और करूं। बहुत संभव है कि अगर मैं पत्रकारिता वगैरह में नहीं आता तो हो सकता था मैं टीचिंग के काम में चला जाता, अध्यापन में जाता, तो जो कि उतना ही बहुत बड़ा होता। क्योंकि मैं लिखने के प्रति मेरा जो अनुराग था वो ज्यादा था, तो मैंने जब लिखना शुरू किया और वो इधर उधर उसके लिए कोशिश करी तो मुझको ये रास्ते ज्यादा बेहतर दिखाई देने लगा। तो उसमें ये हुआ कि जैसे मैंने ग्रेजुएशन करने के बाद यहाँ एक जर्नलिज्म का स्कूल खुला तो उसमें एडमिशन लिया, उसमें मैंने पढ़ा। वो यहाँ के जर्नलिज्म के भारत में स्कूलों में शुरुआती था, वो बाद में खत्म हो गया। उससे मुझे मेरा एक्सपोजर हुआ और मैं डेली वगैरह में जाने लगा। और जैसे मैं हिंदी में लिखना नोवेल टाइम्स विशेषकर, उस दौरान के एडिटर उनके, इनका नाम अक्षय कुमार जैन था, वो भी जुड़े हुए थे, तो वहाँ मुझको एंट्री मिल गई। यानी कि मेरे लेख उन्होंने कहा, वो एडिटर वगैरह देख लेते थे। वह फिर वहाँ दो एडिटर रहते थे, उनमें एक महिला थी, रविवारी संस्करण देखती थी, तो वो बेचारी भली भली औरत थी, तो वो मुझसे फिर धीरे धीरे जब काम करवाने लगी तो मैं अभी अच्छा काम कर, रिलेटिवली उनको ठीक लगने लगा। तो उससे मैं मुझे लिखने की और चीज़ों को समझने की और विषय कैसे चुनना चाहिए इस बात की मेरी समझ थोड़ी बनी, तो ये मुझको फायदा हुआ कि बाद में अपने कैरियर को उसी तरफ बढ़ाने में मुझे उसका मदद मिली।
1: पंकज जी, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, आपकी पहली कहानी 1967 में साप्ताहिक हिंदुस्तान में छपी। क्या आपको याद है कि पहली बार अपनी किसी रचना को प्रकाशित देखकर आपने क्या अनुभव किया था?
2: वो जो एक कहानी छपी उसका अनुभव जो है बड़ा बहुत मजेदार है। हुआ ये था कि मैंने उन दिनों एक लेखिका होती थी शची रानी गुड्डू, उन्होंने मेरे ख्याल से आर्ट वर्ल्ड पर बहुत लिखा है, उनका बेटा वो साप्ताहिक हिंदुस्तान में काम करता था, उससे कहीं मेरी मुलाकात हो गई, बातचीत। यंग था वो मेरी जैसा, तो मैं थोड़ा छोटा था, तो उसने बातचीत में कहा तुम क्या करते हो? मैंने कहा लिखते कर। उसने कहा यार तुम लिखते हमारे यहाँ दिखाओ, तुम क्या कहानी लिखते हो, मैं देखूँ तुम्हारी कहानी। तो मैं डर के मारे में दिखा लिया, तो बड़ा बड़ा मैगजीन है, कौन छापेगा क्या करेगा। तो मैंने वो लिखा हुआ था उसको देखने को दे दी। उसने दी, उसने कहा तुम्हारी कहानी ठीक ठाक है, तुम ऐसा करो हमारे एडिटर को दो, मैं देता हूँ। तो उन दोनों एडिटर कोई सज्जन थे, अब वो याद नहीं आ रहा, पहले भटनागर जी हुआ करते थे, उनके बाद कोई थे, तो वो उन्होंने वो देखी और उन्होंने मुझे पत्र लिखा। जिंदगी में पहली बार आप हैं और कोई संपादक आपको पत्र लिख रहा है कि आप आगे मिलिए और मैं आपसे चर्चा करता हूँ। तो मैं बड़ा उत्साहित और रोमांचित कि भैया क्या कहने वाले। मैं वहां गया, उन्होंने कहानी की बड़ी तारीफ करी और उसके बाद मुझसे कहा कि देखिए आपकी कहानी इतनी अच्छी है कि हम अपने पत्रिका में हमारे पाठकों के जिससे ऊपर की है, तो इसलिए हम नहीं छापेंगे। तो मैं खैर कहानी लेकर वापस आ गया। सौभाग्य से वो एडिटर जो है बदल गए और वहां मनोहर श्याम जोशी आए। हाँ, उसने मुझसे कहा अब दे दो, फिर से देते हैं। तो मैंने उसको दिया, वही फॉरवर्ड कर देता था, तो फिर मुझे वहां से लेटर आया मिलने आओ। गया, फिर ये क्या तमाशा। पहली बार तो मैंने सोचा कि उन्होंने मुझे बुलाया और कहानी छापी नहीं और अब ये फिर कुछ ऐसे ही होगा। फिर मैं मरे मन से वहां पहुंचा, पहली बार मैं मनोहर श्याम जोशी से मिला। तो जोशी बोले तुम यार ये क्या कहानी लिखते हो, थोड़ा सा और जो जिंदगी चीजें हैं उसको देखो, ये क्या रोमांटिक कहानी वानी लिख रहे हो तुम। अब मैं समझ गया कि कहानी छापेंगे नहीं। जाते हुए बोले मैं ये तुम्हारी कहानी तो छाप रहा हूं, लेकिन तुम जो है ना और चीजें देखो। तो एक तरह से मेरे लिए प्रोत्साहन भी हुआ और कहानी छप भी गई। हाँ, मतलब एक चीज ये थी उसमें एक फोटो भी छपता था, तो फोटो छपने से जो अतिरिक्त आनंद आया तो वो अतिरिक्त था।
1: मैं जानना चाहता हूँ कि आपके लिए साहित्य केवल अभिव्यक्ति है या सामाजिक हस्तक्षेप का माध्यम भी है।
2: असल में मेरे लिए वो दोनों एक से जुड़े हुए हैं, समाज और रचनात्मकता। क्योंकि मैं व्यक्ति हूँ, एक मनुष्य हूँ, एक खास समाज में रहता हूँ, उसकी संस्कृति को रिप्रेजेंट करता हूँ, तो मैं जिस तरह से उसको देखता हूँ, उसकी अच्छाइयों को बुराइयों को अपनी निकटता से, वो मेरी रचनाओं में आएंगी आएंगी, वो आती है। और अगर कोई चीज ज्यादा चुनौतीपूर्ण है, जो लगता है कि समाज को पिछड़े करने में या किसी एक सेक्शन के साथ अन्याय करने में अगर वो दिखाई दे रही है, तो ऐसा है कि एक लेखक के रूप में आप उद्वेलित होते हैं, क्योंकि आप अपने लेखन से आपको चीजों को जो देखने का आपकी जो दृष्टि होती है वो ये बनती है कि वो समझे कि आखिर ये जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है, एक खास तरह का व्यवहार कुछ से साथ हो रहा है, कुछ के साथ नहीं हो रहा, तो ये सारी चीजें क्यों हो रही है ये आपको देख। तो लेखक के रूप में ये सब कुछ आप देखते हैं, तभी अगर आप उपन्यास लिखना चाहते हैं और समाज से जुड़ा हुआ लिखना चाहते हैं, या आप वास्तविक समस्या को किसी को लेकर लिखना चाहते हैं, तो आपको समाज को समझने का दृष्टि तो होनी चाहिए, बिना उसके तो आप नहीं कभी भी ढंग के उससे नहीं लिख पाएंगे। तो अब मैं अपनी रचनाओं में जो कुछ भी वो आ रहा है तो एक तरह से वो रचनात्मकता का हिस्सा है, वो अतिरिक्त तो कुछ नहीं।
1: पंकज जी, आपकी कहानियों को पढ़ते हुए लगता है कि उसमें आम आदमी की पीड़ा और व्यवस्था के प्रति एक तीखा असंतोष है, ये दृष्टि आपके भीतर कैसे विकसित होती है?
2: देखिए, कारण वही है, जब मैंने चीजों को देखने का और जो स्थितियां हैं उनको समझने का कि आखिर क्यों जो इस असमानता है, जो अन्याय है, जो कुछ लोगों के साथ जो भेदभाव है वो क्यों और है, तो वो क्यों नहीं बदल रहा है अब तक, क्यों इसमें कोई प्रयत्न नहीं दिखाई दे रहा, वो सारी चीजें मुझे प्रेरित करते रहे, देखते रहे। तो मैंने कोशिश करी कि अब एक तरह से, चूंकि मैं जिन स्थितियों में शुरुआत में कुछ दिनों रहने के हुआ पड़ा हमको, तो जो चीजों का ना होना, आपके पास पैसे की कमी होना, आपको एक बेहतर स्थिति में नहीं रहने देने का ना, जो अभाव जिसको कहते हैं, अभाव की जो स्थिति है आपने सहा है, तो आप उससे औरों के साथ आइडेंटिफाई करने में आप मदद मिली। तो मतलब एक लेखक के रूप और एक लेखक के रूप में मेरे ख्याल से एक रचनाकार के रूप में या कलाकार के रूप में ये भी होता है कि जो उसकी संवेदनशीलता है वो उसकी अपनी जो अनुभव है उनके परे भी जाते, वो औरों से भी सीखते हैं, औरों को भी समझने की कोशिश करते हैं। तो जो भी मैंने जिस तरह से मैं जिंदगी को देखा है, जो अभिव्यक्त करने की कोशिश करी है, उसमें यही तरीका वही यही है। जो
1: पंकज जी, आपकी रचनाओं में संवेदना और प्रतिरोध दोनों साथ साथ चलते हैं, क्या यह आपके लेखन की सचेत रणनीति है?
2: ऐसा कुछ नहीं है, होता क्या है कि आप चीजों को देखते हैं, जब आप किसी मान लीजिए कोई खास स्थिति को देख रहे हो, कोई अपंग है मान लीजिए, वो नहीं चल सक रहा है, उसको चलने में मदद नहीं मिल रही है और लोग उसकी मदद नहीं कर, ये जब आप देख रहे हैं तो इससे आप जो अर्थ निकाल रहे हैं और जो जिस तरह से उसको आप अभिव्यक्त करना चाहते हैं या जिस तरह से आप उसको बदलना चाहते हैं, ये सारी प्रतिक्रियाओं को आप एक लेखक के रूप में लिखना चाहते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर आपकी दृष्टि संवेदनशील है, आप अगर मानवीय हैं, तो आपको जो भी तकलीफ दूसरे आदमी की होगी आप उससे जरूर अपने को आइडेंटिफाई करेंगे, ऐसा नहीं होगा। वैसे मेरे ख्याल से लेखक होना एक अतिरिक्त जिम्मेदारी हो सकती है, मतलब एक आदमी होने के कारण, ह्यूमन बीइंग होने के कारण हमारी यह जिम्मेदारी है कि हम जो भी हमसे कमजोर हो, जिसको जरूरत हो, उसकी मदद करें।
1: पंकज जी, आज के समय में कहानी और उपन्यास के स्वरूप में आप क्या परिवर्तन महसूस करते हैं इस बदलते हुए समय में?
2: देखिए, हो क्या रहा है कि कहानी का जो महत्व है, वो कहानी चूंकि बहुत छोटे दायरे में चीजों को देखने की कोशिश करती है, तो मेरे ख्याल से ये कहानी की जगह टेलीविजन, रेडियो, जो और जो एंटरटेनमेंट के माध्यम है उन्होंने ले लिए है। अब जो माध्यम बचता है वो बड़े नरेटिव में बचता है, वो उपन्यास है। अब उपन्यास इसलिए शायद मेरे ख्याल से कहानियों में अब उतना लेखन नहीं हो नजर आता है मुझको, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन एक और बात भी है, जो श्रव्य या दृश्य माध्यम है उनकी अपनी सीमा है, उनमें आपको ध्यान से देखना पड़ेगा और वो जो कह रहा है वो आप पे यथावत, क्योंकि वो दृश्य आपके सामने एक तरह से साकार है, तो वो पूरी तरह आप पे छाए रहे, जो भी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर जो भी वो बना रहा है उसको, या एक्टर मेरा मतलब जो एक्ट कर, लेकिन जो रचनात्मकता है, जो लिखना है, उसमें यह है कि लेखक जो लेखन के साथ यह है कि आपको जो लिखने में कहा जा रहा है उसको अपने दिमाग में, अपने चेतना में, अपनी संवेदना में एकाकार करना है, उससे तालमेल बैठाना है और उसको उस तरह से दुनिया को समझने की कोशिश करनी है। तो वो जो है, जो इन्वॉल्वमेंट का लेवल है, सेंसिटिविटी का लेवल है, वो डिफरेंट है। तो वो ज्यादा सक्रिय है, वो एक तरफा नहीं है। जी, इसका वही महत्व तो है।
1: बहुत सारी खट्टी मीठी यादों के साथ आकाशवाणी का आपका सफर रहा है पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।
2: बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आकाशवाणी का धन्यवाद।
0: पंकज बिष्ट और विशाल पांडे का ये संवाद हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम जो पढ़ते हैं, जो लिखते हैं, क्या वो उस जिंदगी से जुड़ा है जो हमारे आसपास सांस ले रही है। हर दौर में साहित्य को एक नई पीढ़ी, एक नई ऊर्जा की जरूरत होती है और ये काम आकाशवाणी और साहित्य अकादमी जैसे संस्थान लगातार करते चले आ रहे हैं। हमारी अगली प्रस्तुति सृजन की अगली पंक्ति में सुनते हैं विकास दवे, निदेशक मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी से चंद्रशेखर शर्मा की बातचीत।
3: हमारे साथ हैं लब्ध प्रतिष्ठ बाल साहित्यकार, मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य अकादमी के निदेशक डॉक्टर विकास दुबे। सर, सर
4: आज बहुत अच्छा लग रहा है और आकाशवाणी के इस पटल पर विशेष करके मुझे इस बात को लेकर के बड़ा गर्व की अनुभूति हो रही है कि चूंकि आकाशवाणी और साहित्य समाज ये एक ही परिवार के दो हिस्से हैं।
3: सर, रेडियो को हम बोलते हैं एक दृष्टिहीन कला, ब्लाइंड आर्ट, और अज्ञेय जी ने कहा है कि रेडियो ने साहित्य में श्रव्य बिंबों की नई दुनिया रची है। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या विचार श्रृंखला इस बारे में कहती है।
4: अज्ञेय और मुक्तिबोध दोनों को हमको स्मरण करना चाहिए।
3: बिल्कुल।
4: और लगभग दोनों ने समान धर्मी विचार व्यक्त किए थे, विशेष करके आकाशवाणी के इस माध्यम को लेकर के।
3: जी।
4: उससे पहले तक रंग कर्म और नाटक विधा, ये चूंकि दृश्य विधा के अंतर्गत आया करते थे। जब आकाशवाणी का प्रणयन हुआ उसके पश्चात रेडियो रूपक जैसे शब्द समाज ने सुने।
3: जी।
4: और रेडियो रूपक ने दरअसल साहित्य क्षेत्र में इन मान्यताओं को एक प्रकार से आश्वस्ति दी कि यदि आप आंखों के सामने दृश्य उपस्थित न भी करें तो भी केवल स्वरों के उतार चढ़ाव से, स्वरों का जो पूरा भाव भंगिमाएं अभिव्यक्त करने का जो सौष्ठव है, उसके माध्यम से भी एक पूरे के पूरे नाट्य विधा को आप स्थापित कर सकते हैं।
3: शब्द चित्र
4: अद्भुत, वो शब्द चित्र के ही माध्यम से एक प्रकार से। और सबसे बड़ी बात ये कि आकाशवाणी ने जिस ढंग से भाषा को अपने साथ सहेजने का प्रयत्न किया, भारतीय समाज में जो आक्रांताओं का जो युग था, उस औपनिवेशिक मानसिकता से बाहर आने के लिए और विशेष करके हम सब पर पड़ा हुआ जो भाषाई प्रभाव था, किसी शब्द की, वाक्य विन्यास की, व्याकरणगत वाक्य विन्यास की, उसमें निश्चित तौर पर एक वैक्सीन का काम किया है आकाशवाणी ने।
3: साहित्यिक शुचिता

0: जो साहित्य की जो भिन्न भिन्न विधाएं हैं जिनसे सामान्य जन को परिचित कराने का काम किया, इसके साथ साथ मुझे लगता है कि साहित्यकारों को भी परिचय दिलाने का काम आकाशवाणी ने बड़ी मात्रा में किया है। तो ये जो साहित्य जगत को लोक से जोड़ना, लोक को साहित्य से जोड़ना और उन सबके बीच में सेतु का काम करना, और ये सब करते हुए व्याकरण भी सिखा रही है आकाशवाणी, भाव पक्ष भी समझा रही है। आप देखिए, चाहे हम लोगों को कई बार लगता होगा कि वे जब सी रामचंद्र की बात करते हैं, हमारे जो उद्घोषक होते हैं, वो जब कहते हैं कि भरत व्यास ने कैसे कैसे शब्दों का उपयोग किया है, इंदिवर ने इस गीत में ऐसा ऐसा हुआ, या किशोर दा ने गाते समय इस शब्द को इस तरह से गाने की कोशिश की, लेकिन फिर गीतकार वहां उपस्थित थे, उन्होंने कहा नहीं, इस शब्द का उच्चारण भोजपुरी में ऐसा होता है, अवधी में ऐसा होता है, इसलिए आपको इस ढंग से करना है। तो ये जो सिखाने का क्रम था, ये मुझे लगता है कि आकाशवाणी एक प्रशिक्षक की भूमिका में रही है समाज में साहित्य और व्याकरण और भाषा की दृष्टि से।
1: जी, अमृतलाल नागर जी का सर एक कोटेशन है कि रेडियो जनमानस तक साहित्य की पहुंच का सबसे सशक्त माध्यम है। क्या आप मानते हैं सर कि रेडियो ने साहित्य को लोकधारा से जोड़ा?
0: तकनीकी रूप से इस बात को हम इस दृष्टि से भी स्वीकार कर सकते हैं कि रेडियो अभिजात्य वर्ग की पहचान तो था ही। आज यदि हम अनुभव करते हैं कि आज हमारे ड्राइंग रूम में बड़े बड़े थिएटर्स बना करके लोग बैठे हैं और एक दीवार के आकार के टेलीविजन सेट लगे हुए हैं, कमरे के चारों कोने में स्पीकर लगे हुए हैं, उस स्थिति से निकलने वाले लोगों को शायद ये कल्पना भी नहीं होगी कि आकाशवाणी या रेडियो को सुनने के लिए एक जमाने में लाइसेंस लेना पड़ता था। मैंने आकाशवाणी के 50 वर्ष जब हुए थे तब एक लेख लिखा था, और उस लेख में मैंने इस बात का उल्लेख किया था कि आकाशवाणी की भले ही वह यात्रा इतिहास रही हो, लेकिन आकाशवाणी का आज हमको क्या दिखाता है? आज हमको दिखाता है कि खेत में हल जोतता हुआ किसान जो है, वह दोनों बेलों की घंटियों की आवाज के बीच में वो जो दोनों बेलों के कंधे पर जुआ रखा है, उस जुए के सेंटर में रस्सी से बांध करके एक रेडियो लटका करके रखता है, और खेत में अनाज बोते हुए भी, बीज बोते हुए भी वो आकाशवाणी के माध्यम से सुरीले गीत सुन रहा है, देश भर की खबरों से अपने आप को जोड़ रहा है। और इतना ही नहीं, तो मुझे ऐसा लगता है कि कृषि के क्षेत्र में जिस तरह से जानकारियों का प्रदाय का काम आकाशवाणी ने किया है, वो तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल अंत्योदय की पराकाष्ठा मानता हूं मैं इसको। अब कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा इतने सारे जो शोध कार्य संपन्न होते हैं, उन्हें एक अनपढ़ किसान तक पहुंचाने का काम भी अगर कोई कर पाता है तो वो निश्चित तौर पर आकाशवाणी कर रही है।
1: हम आपसे सर जानना चाहेंगे कि आकाशवाणी के मंच ने किस प्रकार से साहित्यकारों की पहचान और लोकप्रियता में श्रीवृद्धि करने में अपना योगदान दिया है।
0: सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हों, महादेवी वर्मा जी हों या सुभद्रा कुमारी चौहान हों, हम देखते हैं कि इन सब रचनाकारों ने जिस ढंग से आकाशवाणी को अत्यंत श्रद्धा के साथ अपनाया और उनकी उन कालजयी रचनाओं को अगर जनसामान्य ने कंठस्थ किया, मुखाग्र किया, तो उसमें निश्चित तौर पर आकाशवाणी का एक बड़ा हाथ था। अमिताभ बच्चन जी चूंकि सदी के महानायक कहलाते हैं और उन्होंने जब पहली बार मधुशाला को अपने स्वर देकर के और एक कंपनी के माध्यम से एक एल्बम तैयार किया था, तब एक पत्रकार ने उनसे पूछा था, तो उन्होंने यही कहा था कि भाई इस काम को आकाशवाणी बहुत पहले कर चुकी है और विशेष करके इसमें मैं आंचलिक साहित्यकारों को पहचान दिलाने के काम में आकाशवाणी का जो अवदान है वो तो अद्भुत है।
1: इसी बात को हम आगे बढ़ाते हुए आपसे जानना चाहेंगे कि आकाशवाणी ने साहित्य की नई विधाओं को भी जन्म दिया है, जैसे रेडियो रूपक हुआ, रेडियो नाटक हुआ, और आकाशवाणी का एक गर्विला सफर रहा है जिसमें भारत भूषण अग्रवाल, अमृतलाल नागर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और पीएल देशपांडे जैसे ये साहित्यकारों ने काम किया है यहाँ पर और इन नई विधाओं के उन्नयन में अपना योगदान दिया है।
0: चाहे वो कृषि जगत में नंदाजी भेरा जी के माध्यम से कृष्णकांत जी दुबे, नरहरी पटेल जी, स्वतंत्र कुमार जी ओझा को मैं इस समय स्मरण करना चाहता हूँ, ये एक पूरी की पूरी जो पीढ़ियां थी उन पीढ़ियों ने अपने आप को एक प्रकार से होम किया। उन्होंने अपने जीवन का कण कण और क्षण क्षण लगा करके इस आकाशवाणी की विधा को इतना उदात्त स्तर पर पहुंचाया कि लगता है कि सचमुच इन लोगों ने एक तप की तरह इस काम को किया था। और जिन नई विधाओं के संदर्भ में आप कह रहे हैं, मुझे लगता है कि आकाशवाणी के माध्यम से नाटक से इतर भी अगर हम चलें तो जिसे कथा कथन की शैली को विकसित करना, कहानी लेखन भले ही साहित्य का विषय होगा लेकिन कथा कथन साहित्य का विषय नहीं है, वो एक प्रकार से कला का विषय है। लेकिन साहित्य और कला को सेतु बना करके उन्होंने जिस ढंग से कहानियां पढ़ना प्रारंभ की, मैं इस दिशा में कई बार इस बात का उल्लेख भी करता हूं कि सुबह का जो चिंतन आता है, चिंतन का प्रत्येक एपिसोड जो होता है वो अपने आप में ललित निबंध होता है एक प्रकार का, और इस ललित निबंध को सुनना यानी केवल वो कानों को सुख देता है, मानस को सुख देता है, ऐसा नहीं, बिल्कुल आत्मा भी उसमें तृप्त हो जाती है
1: जी।
0: मुझे लगता है कि ये इतनी बड़ी उपलब्धि है कि इसको लेकर के आकाशवाणी के इस अवदान को लेकर के जितना कहा जाए उतना कम होगा। आकाशवाणी के जो संग्रहालय है, आर्काइव्स है, उनमें इतनी अभूतपूर्व सामग्रियां हैं। अगर मैं चाहूं कि

0: किसी युग में लता जी मुंबई के आकाशवाणी स्टूडियो में बैठ करके केवल अभ्यास कर रही थी और मशीन पर बैठे हुए उस समय के तकनीशियन ने रिकॉर्ड कर लिया उनको, केवल अभ्यास की वाणियों को या आपस की बातचीत को रिकॉर्ड कर लिया, और वो सब के सब आज चाहे वो शुभा मुद्गल हों, चाहे हरिप्रसाद चौरसिया जी हों, चाहे छन्नू मिश्रा जी हों, उन सब की सामान्य बातचीत जो कि ऑफिशियली आकाशवाणी पर कभी प्रसारित नहीं हुई, लेकिन वो सब चीजें आज भी हमारे पास उस मैग्नेटिक टेप पर रिकॉर्डेड हैं। और मुझे कहते हुए गर्व है कि वर्तमान में प्रसार भारती ने अपने ऐसे सारे संग्रहालयों को एक प्रकार से, चूंकि जो क्लाउड है वो क्लाउड को मैं आधुनिक युग का कालपात्र ही मानता हूँ, वो अब अक्षय भंडार हो गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबके लिए जो ओपन फॉर ऑल कर दिया है, मैं तो कई बार उस आर्काइव पर जाता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं घंटों उससे बाहर ना आऊं। तो मुझे लगता है कि उसका लाभ हम सब लोगों को लेना चाहिए, और विशेष करके साहित्य क्षेत्र के साहित्यकारों से मैं आग्रह करूंगा, केवल नवोदित पीढ़ी से नहीं, पुरानी पीढ़ी के साहित्यकारों से भी, कि वे कभी माखन दादा को, वीरेंद्र मिश्र जी को, महादेवी वर्मा जी को, इन सबको उनके मूल स्वर में सुने, तो हमारे ध्यान में आता है कि उनकी सोच कितनी उदात्त थी, कितने उदार हृदय से वो साहित्य की समीक्षाएं किया करते थे। आज जिस ढंग से एक दूसरे को प्रशंसित करने का काम हम लोग कर रहे हैं, उस युग में आकाशवाणी हमारे लिए एक अच्छा प्रशिक्षक इस मामले में भी हो सकता है।
1: सृजन की अगली पंक्ति मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी के निदेशक विकास दवे से चंद्रशेखर शर्मा की ये बातचीत आपने अभी सुनी, सौजन्य आकाशवाणी भोपाल। और अब स्मृति नमन, वो जो चले गए लेकिन अपने शब्दों से, अपनी कृतियों से हमेशा के लिए जी गए। आज हम याद कर रहे हैं ऐसे ही तीन महान विभूतियों को, जन कवि नागार्जुन, जिनकी कविता धरती की तरह थी, ठोस, उर्वर और सच्ची, जो हाशिए के इंसान की आवाज बने। काजी नजरुल इस्लाम, जो बांग्लादेश के राष्ट्र कवि भी हैं, जिनकी विद्रोही कविता ने एक पूरी पीढ़ी को जगाया। मुद्रा राक्षस, हिंदी के वो फक्कड़ रचनाकार जिनके कलम ने कभी सत्ता से समझौता नहीं किया, नाटक, उपन्यास, आलोचना, हर विधा में उन्होंने अपनी अलग छाप छोड़ी। नागार्जुन, काजी नजरुल इस्लाम और मुद्रा राक्षस की ये त्रयी हमें याद दिलाती है कि साहित्यकार मरता नहीं, वो अपनी रचनाओं में बार बार जन्म लेता है। इस त्रयी को साहित्य भारती का विनम्र स्मृति नमन। इसी के साथ साहित्य भारती का आज का ये अंक यही संपन्न होता है। अगली बार फिर मिलेंगे नए शब्दों के साथ, नई संवेदनाओं के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सुनते रहिए, सोचते रहिए। नवोदिता को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: ऋषिकेश गांगुर्डे जी का शास्त्रीय गायन।
1: दिस इज आकाशवाणी। इन टुनाइट्स ब्रॉडकास्ट ऑफ द नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी ब्रिंग टू यू अ वोकल रिसाइटल बाय ऋषिकेश गांगुर्डे।
0: पुणे के एक संगीत प्रेमी परिवार में जन्मे ऋषिकेश जी को 5 वर्ष की अल्पायु में ही अपने पिता श्री पुरुषोत्तम गांगुर्डे से संगीत की प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त हुई। इसके पश्चात उन्होंने डॉक्टर विकास कशालकर और पंडित यशवंत बुआ जोशी से 8 वर्षों तक ग्वालियर घराने के गायकी को बारीकियों से सीखा। इसके बाद ऋषिकेश जी ने ITC संगीत रिसर्च अकादमी की प्रतिष्ठित छात्रवृत्ति प्राप्त की और कलकत्ता में ग्वालियर, जयपुर, आगरा घराने के दिग्गज पंडित उल्लास कशालकर के सानिध्य में गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत 6 वर्षों तक गहन प्रशिक्षण लिया। उन्हें बनारस घराने की विदुषी गिरिजा देवी जी से ठुमरी, दादरा और कजरी जैसे उपशास्त्रीय रूपों को सीखने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ।
1: Born into a music loving family in Pune, Rishikesh was initiated into vocal music at the tender age of 5 by his father, Shri Purushottam Gangurde. He later received extensive training for

0: 8 years from Dr. Vikas Kashagar and Pandit Yashwant Bua Joshi, learning the intricacies of the Gwalior Gharana. Thereafter, Rishikesh received the prestigious ITC Sangeet Research Academy Scholarship, coming under the tutelage of the stalwart Pandit Ullas Kashagar. For 6 years, he underwent intense training in the pure Gharana Gayaki of the Gwalior, Jaipur and Agra traditions. He was also fortunate to learn semi-classical forms like Thumri and Dadra from the legendary Vidushi Girija Devi of the Banaras Gharana.
1: Rishikesh Gangurde, Akashwani ke A Shreni ke Gayak Kalakar hai. Unki Gayaki mein Sangeet ka Saundarya, Bhavyata aur Madhurya jhalakta hai, jo seedhe shrotaon ke man ko chhu leta hai. Aur yahi unke Gayaki ki visheshta hai. Gayan ke saath saath वे एक कुशल तबला वादक भी है और उन्होंने कई कार्यक्रमों में अपने गुरु पंडित उल्लास कशाळकर के साथ तबले पर संगत की है. वर्तमान में वे भारतीय विद्यापीठ पुणे के स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में सहायक प्राध्यापक के रूप में कार्यरत है.
0: ऋषिकेश गांगुर्डे इज एन ए ग्रेड आर्टिस्ट ऑफ आकाशवाणी एंड इज स्टेडली कार्विंग अ निश फॉर हिमसेल्फ एज अ घरानेदार वोकलिस्ट who tries to give expression to the beauty, grandeur and sweetness of music so as to touch the human heart, and this is the hallmark of his singing. Beyond his vocal prowess, he is an accomplished tabla player and has even accompanied his guru Pandit Ullas Kashagar in various concerts. Currently, he serves as an assistant professor in the School of Performing Arts at Bharati Vidyapit Pune.
1: आज के कार्यक्रम में ऋषिकेश गांगुर्डे जी को तबले पर संगत कर रहे हैं आशय कुलकर्णी और हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं मकरंद खरवंडीकर. अपने गायन का आरंभ वे कर रहे हैं राग बिहागड़ा से. विलंबित रचना तीन ताल में निबद्ध है. बोल है प्यारी पग होले होले. इसके पश्चात वे तीन ताल में ही दो द्रुत बंदिशें प्रस्तुत करेंगे, निरख छब देखत और रैन दिन कैसे कटेरी.
0: इन टुनाइट्स प्रोग्राम ही इज अकंपनीड ऑन द तबला बाय श्री आशय कुलकर्णी एंड ऑन द हारमोनियम बाय श्री मकरंद खरवंडीकर. ऋषिकेश बिगिन्स हिज वोकल रिसाइटल विथ राग बिहागड़ा. द विलंबित कॉम्पोजिशन इज सेट टू तीन ताल. दिस विल बी फॉलोड बाय द्रुत कॉम्पोजिशन

0: ये था राग बिहागड़ा।
1: That was राग बिहागड़ा।
0: ऋषिकेश गांगुड़े अपने गायन का समापन राग बागेश्री से कर रहे हैं। विलंबित ख्याल तिलवाड़ा ताल में निबद्ध है, जिसके बोल है लाल मनावे। गायन का समापन वे तीन ताल की द्रुत बंदिश पहरवा घर आओ से करेंगे।
1: नेक्स्ट ऋषिकेश गांगुड़े विल प्रेजेंट राग बागेश्री। द विलंबित ख्याल इज सेट टू तिलवाड़ा ताल। ही कंक्लूड्स द रागा विथ द्रुत कंपोजिशन इन

0: राग बागेश्री अभी आपने सुना।
1: That was राग बागेश्री।
0: संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज आप ऋषिकेश गांगुड़े जी का शास्त्रीय गायन सुन रहे थे। उन्हें तबले पर श्री आशय कुलकर्णी और हारमोनियम पर श्री मकरंद खरवंडेकर जी ने संगत की। इस कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण आकाशवाणी पुणे केंद्र के स्टूडियो में किया गया और यह कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: You are listening to a classical vocal recital by Rishikesh Gangurde in the National Program of Music. He was accompanied on the tabla by Ashay Kulkarni and on the harmonium by Makaranda Kharvandikar. This program was recorded at the studios of Akashwani Pune and this program was broadcast from Akashwani Delhi.

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से होने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है।
1: देश का 65 पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि देश युवा देश है। ये देश की युवा की शक्ति को विकसित भारत के राह पर ले जाने के लिए संयोजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं और दोनों देश संकट के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध जीवंत जनसंबंध, सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर बना है।
2: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
0: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रतिबंधों की धमकी देकर भारत की संप्रभुता को कमजोर करने का कोई भी प्रयास उल्टा पड़ेगा। सेंट पीटर्सबर्ग में श्री पुतिन ने स्वतंत्र निर्णय लेने और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर बल दिया। श्री पुतिन ने कहा कि रूस और भारत के संबंध आपसी विश्वास पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम सहित संयुक्त अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में सक्रिय रूप से शामिल हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। कोलकाता के नबन्ना में श्री वैष्णव ने बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्षों में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की है। इससे बाजार में अधिक पारदर्शिता और एकरूपता आएगी। उपभोक्ता कार्य विभाग ने खाद्य तेलों और घी की शुद्ध मात्रा तथा मानक पैक आकार निर्धारित करने संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन किया है। स्वीकृत पैक आकार 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 से 5 किलो, 15 और 20 किलो हैं। इस पहल का उद्देश्य बाजार में विभिन्न पैकेज आकारों की बढ़ती संख्या कम करना है। जापान में भारतीय अंडर 18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में भारत ने जापान को 4-1 से हराया। आशीष तानीपूर्ति ने 3 और कप्तान केतन कुशवाहा ने 1 गोल किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय हॉकी टीम को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय रेणुका। Prime Minister Narendra Modi today chaired a meeting with members of the PM Economic Advisory Council. The Prime Minister and the EAC discussed various ideas and measures to further boost India's economic growth in times of global turmoil. In a social media post, the Prime Minister said they deliberated on a wide range of issues relating to India's economic transformation and long-term development priorities. They also shared perspectives on adding more momentum to the reforms journey and ensuring ease of living as well as ease of doing business. The Economic Advisory Council is an independent body that gives advice to the Government of India, specifically to the Prime Minister, on economic and related issues. Besides the EAC members, two principal secretaries to the Prime Minister, Dr. P.K. Mishra and Shaktikant Das, also attended the meeting. The centre has introduced standard pack sizes for edible oils under the legal metrology framework, bringing greater transparency and uniformity to the marketplace. The Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution said that under the revised rules, standard pack sizes have been prescribed for major edible oils, including palm oil, palm olein, soybean oil, sunflower oil, mustard oil, groundnut oil, sesame oil and rice bran oil. The approved pack sizes are 200 gram, 500 gram, 1 to 5 kilograms, 15 kilograms and 20 kilograms. The ministry said this will also help consumers make more informed and transparent purchasing decisions. It added that the initiative will benefit the edible oil industry by bringing greater uniformity in packaging practices. Railway Minister Ashwini Vaishnaw has said that resolving long-pending railway projects in West Bengal will usher in a new era of railway infrastructure development in the state. Addressing a joint press conference with Chief Minister Suvendu Adhikari at Nabarna in Kolkata, Mr. Vaishnaw said that 14,205 crore rupees have been allocated to West Bengal in the railway project for 2026-27. He said 10 Amrit Bharat stations have already been completed in the state, while 9 Vande Bharat Express trains and several Amrit Bharat trains are currently in operation.
4: 60 new generation trains we are planning. In coming 4 to 5 years, these trains will be inducted and Kolkata Metro will get a totally new generation of trains. As the work gets completed on Chingrighatta area, other sections, a lot of improvement will happen in the mobility in Kolkata.
3: External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has said India and Nepal collaborate closely to maintain security along their long and uniquely open border, and the two countries have always stood by each other in times of need. In his opening remarks during a meeting with his Nepalese counterpart Shishir Khanal in New Delhi this evening, Dr. Jaishankar said India and Nepal share a very special relationship. The External Affairs Minister said the bilateral ties have steadily developed in areas like trade, commerce, investments, energy, development, cooperation, education, disaster response and culture. Mr. Khanal said India is Nepal's most important partner and Nepal has placed highest priority to India. He said Nepal and India are not merely two countries but stakeholders of a proud ancient civilization. He thanked India for fuel and fertilizer supply amid the West Asia crisis. Tensions across West Asia escalated sharply on Saturday after Iran launched ballistic missiles toward United States military facilities in Kuwait and Bahrain, prompting a coordinated air defense response by Gulf states and American forces. According to the U.S. Central Command, Iran fired 7 ballistic missiles following U.S. strikes on Iranian coastal surveillance and radar installations at Keshm Island and Goruk near the Strait of Hormuz. Initial assessments indicated that 6 missiles were intercepted while a 7th failed to reach its target. There were no immediate reports of casualties among U.S. personnel. In tennis, Russian eight seeded Mira Andreeva won her maiden Grand Slam title after getting the better of Maya Szwalanski of Poland in straight sets in the women's singles final of the French Open. And that is the end of this news bulletin.
5: समाचारों का प्रसारण आप सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली से। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम बैंड के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय रात के 11:10 हो चुके हैं। आज का ये प्रसारण अब यहीं समाप्त होता है। कल इसी आवृत्ति पर हम 5:55 पर पुनः उपस्थित होंगे कल के प्रसारण के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। शुभरात्रि। जय हिंद।